देखे कि तापना कर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है कि वो सही मनुसारी है। आपन हाथी आपना

चाक लगे चाकरी जे चले खस में पाए, अगले जो पे धुना खाए, खस में करे बराबरी फिर गैत अंदर पाए, वो जो गवाए अगला मुहे मो पाना खाए, जिस ता खामना तिसके ये सबास, नाल घुटना चले नाल खसम चले।

एक नहीं चाकरी तो फसना जाए नानक सेवकांडी है जैसे तिखसम समाए पौड़ी ना।

धन कंकना जाप निया ताके पारावार आप कराए साक्ति फिर आप कराए माँ इक ना गली जंजीरे तुरे करी बिस्या आप कराए करे आप कैसे करी पुकार नानक ना जिनकिया फिर किसी कर।

0: ये आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्स. इन खां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप एन डी डी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो. प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे. प्रोग्राम जा डिटेल्स कुझु नथा आहिनि. थोरी देरि में तव्हां भगत कराम साहिब जन जे सदाबहार आवाज़ में कलाम ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसरो पेश कंदो, तंहिंखां पोइ कुझु फिल्मी नगमा, ख़ासि ख़ासि ख़बरूं प्रोग्राम जे आख़िर में नशर कयूं वेंदियूं. यादि प्रोग्राम जी तफ़सील तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया. हींअर छो त भगत कराम साहिब जन जे मिठड़े आवाज़ में ई कलाम ॿुधूं.
1: जागो मग भेनर भाणे

نظر يلي نهاية ودعنا عزنين نظر يلي نهاية ودعنا عزنين

तव्हां भगत कौराम साहब जन जी मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधी रहिया, तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया। हींअर पेश आहे तबसरो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पंहिंजे पंजनि मुल्कनि जी यात्रा दौरान सूमर ॾिहारे ओस्लो में पहुता। भारतीय प्रधानमंत्री जी गुज़िरियल चइनि ॾहाकनि खां बि वधीक अरसे में ओस्लो जी इहा पहिरीं यात्रा आहे। हिकु ख़ासि कार्रवाई तहत भारत ऐं नॉर्वे मंझि वेझनि लाॻापनि जे हिसे तौरु ओस्लो हवाई अॾे ते पहुचण शर्त श्री मोदी जी ओस्लो जे प्रधानमंत्री स्टोर पुरजोश अजा कई ऐं खेसि गार्ड ऑफ ऑनर पिणु पेश कयो। उते नॉर्वे ऐं भारतीय क़ौम प्रधानमंत्री जी भारतीय संगीत ऐं नाच सां आजियां कई। यूएई, नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे ऐं इटली सां पंहिंजे रिश्तनि खे अञा वसीअ करण लाइ प्रधानमंत्री जी मदभरी यात्रा आहे, जंहिंजो मक़सदु आहे इन्हनि मुल्कनि सां भारत जे आलमी हिकमत अमली भाईवारी खे वधीक पुख़्तो बणाइण ऐं गॾोगॾु माली मशगूली खे पिणु वधीक बहितर बणाइण। भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे जे प्रधानमंत्री सां श्री जोनस गेहर स्टोर सां ओस्लो में ॿितरफियूं ॻाल्हियूं कयूं। ॿिन्ही अॻवाननि भारत नॉर्वे लाॻापनि जे रिश्तनि जो जाइज़ो वरितो, तंहिंमें वापारु ऐं सीड़प अची थो वञे। इन खां अलावा टेपा यानी कि इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप करार पिणु अची थो वञे। तंहिंखां सवाइ माहौल में ईंदड़ तब्दीली, एनर्जी ट्रांज़ेक्शन, ब्लू इकोनॉमी, सामूंडी हुकूमत, खोजना ऐं ऊची तइलीम, आर्कटिक ऐं पोलार तावन, स्पेस, टैलेंट मोबिलिटी। ॿिन्ही अॻवाननि मञियो त ग्रीन स्ट्रैटेजिक हिकमत अमली खे यानी ग्रीन हिकमत अमली भाईवारी खे अञा वधीक वधायो वेंदो। तंहिंमें हुननि बरक़रारत ऐं ग्रीन ग्रोथ ते पंहिंजी वचनबद्धता वंडी आहे। ॿिन्ही अॻवाननि मञियो त माशी ऐं तिजारती भाईवारी में झझी क़ौत आहे। भारत में नॉर्वे कंपनियुनि खे प्रधानमंत्री वधीक सीड़प करण जी आछ करे ॾिनी। ॿिन्ही अॻवाननि भारत ऐं नॉर्वे मंझि मौजूदु वापार जे मक़दार खे साल 2030 ताईं ॿीणो करण जो निशान मुक़ररु कयो आहे ऐं वापारी एजेंट खे हिमथायो आहे त घणनि ई खेत्रनि में टाइप्स कया वञनि, जंहिंसां टेपा तहत सीड़प 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर खां अॻिते वधी वेंदी ऐं भारत में 1 मिलियन रोज़गार जा वजह मैसर थींदा। माहौल ऐं वरी खां कतब ईंदड़ तवानाई में तावन ते ज़ोर ॾींदे ॿिन्ही अॻवाननि वधीक सहकार जो सॾु ॾिनो। तंहिंमें अची थो वञे कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, इन खां अलावा ऑफशोर विंड। तंहिंखां सवाइ भारत में साफ़ तवानाई जे कमनि में नॉर्वे जी झझी सीड़प। ॿिन्ही अॻवाननि बहुतरफ़ी फोरमनि में तावन ते बहस बहसो कयो। इन खां अलावा घणनि ई इलाक़ाई ऐं आलमी मुदनि ते वीचारनि जी मटसटा कई। नॉर्वे जे प्रधानमंत्री भारत जे UN सलामती काउंसिल में सुधारा आंदड़ दाइमा मेंबरशिप लाइ भारत जे दाइमा मेंबरशिप खे नॉर्वे जी हिमायत ॿीहर दोहराई आहे। ॿिन्ही अॻवाननि सख़्तु लफ़्ज़नि में दहशत अंगेज़ी जी निंदा कई, तंहिंमें अची थो वञे सरहद पार दहशत अंगेज़ी ऐं इन ख़िलाफ़ आलमी कार्रवाई जो सॾु ॾिनो। भारतीय प्रधानमंत्री राजा हैरल्ड वी सां नॉर्वे जो जेको राजा आहे तंहिंसां शाही महिलात में गॾिजाणी कई। प्रधानमंत्री भारतीय अवाम पारां खे शुभकामना ॾिनियूं। प्रधानमंत्री ऐं राजा हैरल्ड फाई भारत ऐं नॉर्वे कंपनियुनि पारां घणनि खेत्रनि में कयल तरक़ी जी जाइज़ो वरितो, ख़ासि करे

टेक्नोलॉजी में। बिनियोगानन ब्लू इकोनॉमी तह में ताउन के बधाने तो जोड़नों तह में अची तो वे मरीन इकोसिस्टम के बचाव में असर करें बेड़न के अडन ग्रीन शिपिंग ए ह्यूमन काइंड। प्रधानमंत्री भारत नॉर्वे बिजनेस ए रिसर्च समिट में हिस्सो वरतो जेका ओस्लो में थी। नॉर्वे जे क्राउन प्रिंस हाकुन प्रधानमंत्री नॉर्वे जे मिस्टर जॉन गेहर स्टोर पिण इन समिट में हिस्सो वरतो। प्रधानमंत्री बाहमी वापार ए सीड़प में थियल वात ते दिल जाय जाहिर कई। ट्री इंडिया नॉर्डिक समिट ओस्लो में थी जिते प्रधानमंत्री पंजन नॉर्डिक मुल्कन जे अगवानन सां मुलाकात कई से ए नॉर्वे डेनमार्क फिनलैंड आइसलैंड ए स्वीडन। तव्हां तफ़सीरो ॿुधी रहिया हुआ।

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। 9870 किलोहर्ट्ज़ ते तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। हींअर पेश आहे फिल्म संगीत जो प्रोग्राम, आगाज़ करे रहिया आहियूं झूलेलाल जो सतना आवाज़ मास्टर चंद्र जो।

तुझा रंग वाह वाहड़े रंगी तुझा रंग रंग वाह वाहड़े रंगी तुझा रंग तो खल क्या के मत जा मूढ़ा तो खल क्या के मत जा मूढ़ा आई के मस्त मलंग वाह वाहड़े रंगी तुझा रंग वाह वाहड़े रंगी तुझा रंग रंग वाह वाहड़े रंगी तुझा रंग वाह

पब्लिक जा कन था खीसा खाली के ढोंगी मीठा आहिन के ढोंगी मीठा आहिन चाहे टंग ते टंग टंग वाह वाड़ रंगी तुंजा रंग।

प्रोग्राम जे आख़िर में अवां फिल्म शलधीरण जे मंझो हिकु गीत ॿुधरिया। या आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस सां हींअर पेश आहिनि ख़ासि ख़ासि ख़बरूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चयो आहे त नॉर्डिक मुल्कनि मां भारत में सीड़प गुज़िरियल हिकु ॾहाके दौरान 200% वधी आहे। हुन नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड ऐं डेनमार्क जे पंहिंजे साननि सां टी इंडिया नॉर्डिक समिट में हिसो वरितो। हिन साल सेप्टेंबर में नई दिल्ली में थींदड़ ब्रिक्स समिट में रशिया जो सदर व्लैडिमिर पुटिन हिसो वठंदो। नमकस में सैरिया जे बचाव वज़रात ॿाहिरां थियल हिकु बम धमाके में हिकु माण्हू मारिजी वियो आहे ऐं डज़न खनि ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। WHO डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गैब्रेस इबोला आउटब्रेक ते ॻणती ज़ाहिर कई आहे, जंहिंमें मर्दनि जो तादादु 131 खे पार करे वियो आहे ऐं मनोज कुमार शर्मा खे नेपाल जे सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस करे मुक़ररु कयो वियो आहे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा समाप्त कर इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया।
1: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: रोम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में समझौता होने की संभावना है। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के AI संचालित होलोबॉक्स स्थापित किए जा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ी डोपिंग जांच में विफल रहे थे। अंकित ने 69वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान और पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। आरोपों को स्वीकार करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के प्रतिबंध की अवधि में 1 साल की कमी कर दी गई है। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में

0: had 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur last night, keeping the playoff hopes alive. Rajasthan Royals overhauled the massive target of 221 runs with 5 balls to spare and 7 wickets in hand. As the league stage nears its end, 5 teams remain in contention for the lone remaining playoff spot. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका में अंसा प्रभात दयाल का भजन गायन। आपके साथ तबले पर हैं सलीम अहमद, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना और हारमोनियम पर हैं दामोदर लाल घोष।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका में अंसा प्रभात दयाल के भजन। इनके साथ तबले पर थे सलीम अहमद, विनय प्रसन्ना थे बांसुरी पर और हारमोनियम पर संगत दे रहे थे दामोदर लाल घोष। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर, DRM 800।

दोस्तों, सुबह का दिन वो हिस्सा जहाँ ज़िंदगी सबसे अच्छी लगती है, जब खिड़की से आती हल्की धूप, चाय की पहली भाप और दूर कहीं चिड़ियों की आवाज़ मन को धीरे धीरे जगाती है। और ऐसे ही किसी शांत पल में अगर साथ हो कुछ प्यारे गीतों का, कुछ हल्की फुल्की बातों का, तो सुबह शुरू ही नहीं होती बल्कि महसूस होती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम की तो भरी गुड मॉर्निंग अपनी दोस्त दुर्गेश के साथ। आज की इस मुलायम मुस्कुराती और थोड़ी सी शरारती सुबह के साथ, तो चलिए आज की भागती दौड़ती दुनिया से कुछ पल चुराते हैं और इस सुबह को थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा खूबसूरत और थोड़ा संगीत भरा बनाते हैं। कभी आपने गौर किया है, सुबह बिल्कुल लोगों जैसी होती है। कुछ सुबह शांत होती हैं, कुछ पुराने दोस्त जैसी, कुछ सुबह तो बेहद उत्साहित जैसे छुट्टी का दिन हो, और कुछ सुबह ऐसी ही जो बिना कुछ कहे बस मन के पास बैठ जाती हैं। और शायद इसीलिए सुबह के गीत भी हमेशा खास होते हैं, इनमें शोर नहीं होता, बस एहसास होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो सुबह की हवा की तरह हल्का है और चेहरे पर बिना वजह मुस्कान ले आती।

वाह, कुछ गीत सच में हवा जैसे होते हैं दोस्तों, आते हैं, छूते हैं और मन को हल्का करके चले जाते हैं। सुबह के समय दिल भी कितना दिलचस्प होता है ना, उसे बीते कल की पूरी चिंता होती है ना आने वाले कल का हिसाब, बस उसे चाहिए एक प्यारी सी शुरुआत और कभी कभी एक अच्छी सुबह पूरे दिन का मिजाज बदल देती है। देखो, किसी की रसोई में चाय चढ़ रही होगी, कहीं बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे होंगे, आई थिंक शायद अब तो बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, कहीं कोई ऑफिस जाने के लिए जल्दी में होगा और कहीं कोई बस बालकनी में बैठकर अपने लिए दो पल निकाल रहा होगा। इन सब के बीच रेडियो हमेशा एक दोस्त की तरह साथ रहता है, बिना दिखे बिना जताए बस साथ निभाता हुआ। तो चलिए अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसे सुबह की ताजगी भी है और सुबह की प्यारी सी मुस्कुराहट भी, और जिसे कहते हैं ना बस दिन बना देने वाली ख्वाहिश।

दोस्तों, कितनी नरमी है इस गीत में, एक खूबसूरत सा एहसास है इस गीत में। कुछ धुनें जैसे सिर्फ कानों में ही नहीं बल्कि सीधे दिल में उतरती हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलता रहता है, लोग, रास्ते, मौसम, वक्त, लेकिन कुछ चीज़ें ना हमेशा वहीं रहती हैं, जैसे सुबह की धूप और अच्छे गीतों का असर। आजकल की तेज़ ज़िंदगी में हम सब कहीं ना कहीं थोड़ा थक जाते हैं, लेकिन संगीत एक ऐसी जगह है जहाँ मन आकर आराम करता है, और सच कहें कभी कभी कोई गीत हमें हमसे ही मिला देता है। तो चलिए अब इस सुहानी सुबह में थोड़ा और रंग खोलते हैं एक ऐसे गीत के साथ जो बिल्कुल सुबह की खुली सड़क की तरह चलने लगता है।

जी हाँ बिल्कुल, सुबह भी ऐसे ही होती है, संगे मरमर की तरह, बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल प्यारी, बिल्कुल शांत सी। सुबह के समय पुरानी यादें भी बड़ी शरारती हो जाती हैं। कभी कभी किसी स्कूल की घंटी याद आ जाती है, कभी गर्मियों की छुट्टियाँ, तो कभी वो दिन जब बिना किसी वजह के भी मन खुश कर रहा करता था। दोस्तों, इसलिए जो 90s और 20s के जो गीत हैं आज भी इतने करीब लगते हैं कि उनमें इस सादगी थी, धुनों में अपनापन था और शब्दों में दिल की गर्माहट थी। सुबह और सफ़र दोनों में एक बात तो समान होती है, दोनों हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं। और कितना अच्छा लगता है जब सफ़र में साथ हो अच्छे गीतों का, बिल्कुल इस गीत की तरह।

दोस्तों आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग अपनी रेडियो साथी दुर्गेश के साथ। कुछ गीत सुनकर लगता है जैसे जिंदगी अब भी उतनी ही खूबसूरत है। हर सुबह हमें एक नया मौका देती है, पुरानी थकान छोड़ने का, नई उम्मीदें जुड़ने का और खुद को थोड़ा और मुस्कुराने देने का। तो अगर आज का दिन थोड़ा मुश्किल लगे तो बस एक काम कीजिएगा, अपने पसंदीदा गीत को सुन लीजिएगा या उनकी एक प्लेलिस्ट बनाइएगा और कानों में हेडफोन लगा के बस चाय के साथ सुनने लग जाइएगा प्यारे प्यारे से गीत। यकीन मानिए मेरा, खुद ब खुद आपका मन हल्का लगने लगेगा। और अब इस खूबसूरत सुबह में थोड़ा सा नया रंग जोड़ देते हैं पॉजिटिव और दिल को सुकून देने वाले ऐसे ही एक और गीत के साथ।

दोस्तों, ये गीत सचमुच बहुत प्यारा है और कितनी ही प्यारी बातें हैं इस गीत में। कुछ गीत हमें जीना याद दिला देते हैं। तो दोस्तों, इसी मुस्कुराती सुबह और प्यारे संगीत के साथ अब मुझे दीजिए अनुमति। उम्मीद है आज के दिन आपके लिए हमने सुकून, मुस्कुराहट और अच्छी खबरों के साथ प्यारे प्यारे गीत भी आपको सुनाए होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, थोड़ा मुस्कुराइए और ज़िंदगी को इतनी जल्दी जल्दी मत जिए, क्योंकि कुछ सुबह महसूस करने के लिए होती है। जैसे मैं हूँ आपकी साथी, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई सुबह नए गीतों और नई बातों के साथ। लेकिन रुकिए, अभी हम आपके लिए एक और तोहफा दे रहे हैं। ये एक छोटा सा प्यारा सा गीत चलते चलते सुनिए और आनंद लीजिए।

0: जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
2: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
4: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
2: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19

0: इसमें विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
1: India is accelerating towards universal health coverage.
2: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
1: Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
2: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
5: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
6: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
7: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
8: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
9: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोक सत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष हेल्थ डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
0: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honor of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, FAO, and strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. A correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
11: Prime Minister Narendra Modi will call on the President of Italy, Sergio Mattarella, at the Quirinal Palace today, where he will be accorded a guard of honor. The day's engagements include delegation-level talks, press statements, exchange of memoranda of understanding, bilateral meetings, and a visit to the Food and Agriculture Organization. Prime Minister Modi will also plant a Morus nigra black mulberry tree, a species that symbolically connects India and Italy through its culinary, medicinal, and agricultural significance. This is Suparna Bhatia from Rome.
10: Earlier yesterday, Indian Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in the Norwegian capital Oslo.
12: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
10: Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
12: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
10: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. A correspondent covering the Prime Minister's visit to Norway has filed this report from Oslo.
13: A joint statement released after the third India-Nordic summit outlines the areas of shared goals and vision of India and the five Nordic countries. They decided to elevate their relations to a green technology and innovation strategic partnership. This reflects their shared commitment to sustainability, innovation, and green growth. They encouraged collaboration in research, innovation, and talent mobility.

0: continue for the next 3 to 4 days. On Tuesday, Nogaon recorded 47 degrees Celsius and Khajuraho touched 46.4 degrees Celsius. This is the first time this season that the mercury has reached 47 degrees Celsius. In 22 cities across the state, the maximum temperature crossed 44 degrees Celsius. Abhinav Goyal, Akashwani, Bhopal.
1: Union Health Minister Jagat Prakash Nadda reaffirmed India's commitment to universal health coverage, digital health innovation and global health solidarity at the 79th World Health Assembly in Geneva. Addressing the assembly themed Reshaping Global Health, a Shared Responsibility, yesterday Mr. Nadda highlighted India's progress towards universal health coverage anchored in a whole of government and whole of society approach.
2: India is accelerating towards universal health coverage by expanding access to quality and affordable health care. For this, we have established 185,000 health and wellness centers, namely Ayushman Arogya Mandirs. In addition, we are committed to developing a robust and resilient public health infrastructure for pandemic preparedness and emergency responses.
1: Director General of Civil Aviation has directed the inspection of fuel control switches on Air India Boeing 787-8 aircraft at the original equipment manufacturer facility in the presence of DGCA officers. According to the DGCA, the Air India Boeing 787-8 aircraft VT-ANX was grounded on the 2nd of February this year after operating flight AIC-132 from London's Heathrow Airport to Bengaluru. In IPL cricket, riding on a brilliant knock of 93 runs by Vaibhav Suryavanshi, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at the Sawai Man Singh Stadium in Jaipur last night. Chasing a target of 221 runs set by Lucknow Super Giants, Rajasthan Royals scored 225 for 3 with 5 balls to spare. Dhruv Jurel scored an unbeaten 53 runs, while Yashasvi Jaiswal made 43 runs. And now for a look at today's newspapers is over to Shagun Chopra.
3: Thank you, Abhishek. In a joint article penned by PM Narendra Modi and Italy's PM Giorgia Meloni in The Pioneer, headlines Italy and India, a strategic partnership for the Indo-Mediterranean. The article says Made in Italy has always been synonymous with excellence worldwide, and today it finds a natural synergy with the high quality of goals of the Make in India initiative. US clears Apache how its support services for India, writes the Indian Express. Supreme Court upholds citizens' right to live free from fear of stray dog attacks, informs the Statesman. Top court nod for euthanasia of incurably ill rabid dogs, states the Hindu. The Economic Times in its editorial piece says the real question, OpenAI's win Musk's ethical AI development arguments remain. The paper says Elon Musk's case against OpenAI turning into a for-profit organization fell apart on a technicality, but the central question on how OpenAI should be governed remains unanswered. Sam Altman's argument is that its mission drift from non-profit to for-profit was necessitated by the financial reality of the tech's large investment requirements. And finally, tennis legend Billie Jean King, at the age of 82, earns a college degree, Bachelor of Arts in History, 65 years after starting at Cal State Los Angeles, reports the Times of India. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
4: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की अपनी हमनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा भारत मगरबी एशिया यूरोपीय इक्तिसादी कॉरिडोर के बारे में ताउन बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे और 2025 से 2029 तक के मुश्तरका कलीदी अमली मंसूबे का जायजा लेंगे। मगरबी बंगाल सरकार 1 जून से अन्नपूर्णा स्कीम शुरू करेगी, जिसके तहत 25 से लेकर 60 साल तक की खवातीन को 3,000 रुपए माहाना दिए जाएंगे। एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी ने कहा कि लोकसभा और असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाने से तकरीबन 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी और भारत की GDP की शरह तरक्की में 1.6% का इजाफा हो जाएगा। DGCA ने इस साल के अवाइल में एयर इंडिया के बोइंग 787-8 तैयारे में तकनीकी खराबी के तनाजुर में ईंधन कंट्रोल स्विच का मजीद मुआयना किए जाने का हुक्म दिया है। और IPL क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इटली के अपने पहले बाहमी दौरे पर कल रात रोम पहुंचे, जहां वो अहम शोबों में मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत करेंगे। इनमें तिजारत, दिफा, मोबिलिटी, बहरी सिक्योरिटी, बंदरगाहों से मुतालिक इश्तराक और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई शामिल हैं। इटली के वजीर खारजा एंटोनियो तजानी के हवाई अड्डे पर जनाब मोदी का इस्तकबाल किया। बाद में इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने जनाब मोदी के एजाज में एक ज़ियाफ़त का अहतमाम किया। इसके बाद जनाब मोदी अनंतारा प्लाजो नईदी होटल पहुंचे, जहां भारत निजाद अफराद ने खुशी का इजहार करते हुए गर्मजोशी और पुरतपाक अंदाज से जनाब मोदी का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी पुरजोश भारतीय बिरादरी के लोगों के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने इटली के एक आर्टिस्ट जियांपाओलो टोमा सेटी की एक पेंटिंग की नकाब कुशाई भी की, जो वाराणसी के घाटों और भारत के कदीम और दायमी शहर की सकाफती और रूहानी झलक पेश करने के लिए खास तौर पर बनाई गई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
5: जनाब मोदी आज क्यूरिनल पैलेस में इटली के सदर सर्जियो मेटरेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। जनाब नरेंद्र मोदी की आज की मसरूफियात में वफूद की सतह की बातचीत, प्रेस बयान, मुफाहमत नामों का तबादला, दो तरफा मीटिंगें और खुराक और ज़राअत की तंजीम का दौरा भी शामिल हैं। जनाब मोदी ब्लैक मलबरी का एक पौधा भी लगाएंगे, जो खाने, तिब्बी और उसकी सकाफती अहमियत के जरिए भारत और इटली को अलामती तौर पर मुनसलिक करता है। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
4: इससे पहले कल भारत और नॉर्डिक मुल्कों ने अपने बाहमी ताल्लुकात को ग्रीन टेक्नोलॉजी और इख्तराई कलीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचाने का ऐलान किया। इन मुल्कों में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक सरबराह इजलास में शिरकत के बाद नॉर्डिक मुल्कों के रहनुमाओं के साथ एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए ये ऐलान किया।
6: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
4: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि गुज़श्ता दहाई के दौरान भारत में नॉर्डिक मुल्कों की सरमायाकारी में 200% का इजाफा हुआ है।
6: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
4: वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान तालुकात हालिया तजारती समझौतों के साथ एक नए सुनहरे दौर में दाखिल होंगे, जिसमें तजारती और इक्तिसादी साझेदारी नीज भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तजारत का माहिदा भी शामिल है। दहशतगर्दी के मामले पर जनाब मोदी ने कहा कि इस मामले पर दोनों मुल्कों का वाज़ेह और मुश्तरका मौकफ है, कोई समझौता नहीं और कोई दोहरा मियार नहीं।
6: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
4: पेश है वज़ीर-ए-आज़म के नॉर्वे के दौरे के बारे में एक रिपोर्ट।
7: तीसरी भारत नॉर्डिक समिट के बाद जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में भारत और नॉर्डिक मुल्कों के मुश्तरका मकासद और तसव्वुर का खाका पेश किया गया है। दोनों फरीकों ने भारत नॉर्डिक ताल्लुकात को माहौल के लिए साजगार टेक्नोलॉजी और इख्तराई दिफाई शराकतदारी तक के ले जाने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने ओस्लो के अपने दौरे में कसीर मुल्की और दो तरफा सरगर्मियों के तहत माहौल के लिए साजगार राहदारी, समुद्री मईशत, जहाज़ों की तामीर, सेहत, दिफा जैसे मैदानों में नॉर्डिक सरमायाकारी को दावत दी है। भारत ईयू आज़ाद तजारती समझौते और टेपा मुआहिदे के रोशनी में उन्होंने नॉर्डिक खित्ते के साथ मजबूत तर इक्तसादी और तजारती ताल्लुकात की भारत की दिलचस्पी का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले समेत हर तरह की दहशतगर्दी की एक आवाज़ में सख्त मजम्मत की। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत नॉर्डिक तआवुन को मजीद गहरा करने के अज़्म को दोहराया। अब अगली भारत नॉर्डिक समिट फिनलैंड के शहर हेलसिंकी में मुनाक़िद होगी। ओस्लो से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
4: मगरबी बंगाल सरकार ने अन्नपूर्णा योजना का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका मकसद ख्वातीन को उनकी समाजी व इक्तिसादी बेहतरी के लिए 3,000 रुपये की यकीनी माहाना माली इमदाद फराहम करना है। ये स्कीम ख्वातीन और बच्चों की तरक्की और समाजी बहबूद के महकमे ने शुरू की है, जिस पर अगले महीने की पहली तारीख से अमल शुरू हो जाएगा। स्कीम के तहत ये माली इमदाद फायदे की रास्त मुंतकली के तहत अहल ख्वातीन के आधार से मरबूत बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल कर दी जाएगी। स्कीम के लिए अहल होने की शराइत ये है कि उनकी उम्र 25 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए, वो इनकम टैक्स अदा ना करते हों, वो किसी मुस्तकिल सरकारी मुलाजमत में ना हों, या उन्हें रियासत या मरकजी, कानूनी, पंचायती, बल्दियाती, मकामी इदारे या सरकार की मदद वाले तालीमी इदारे की तरफ से कोई लगातार तनख्वाह या पेंशन न मिलती हो। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासती सरकार के तहत खिदमात और ओहदों में रिजर्वेशन के लिए ओबीसी के 66 दर्जात की एक फेरिस्त जारी की है। ये फेरिस्त कोलकाता हाईकोर्ट के हुक्म के बाद जारी की गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने ओबीसी ए के लिए 10% और ओबीसी बी के लिए 7% रिजर्वेशन मंसूख कर दी है। मगरबी बंगाल सरकार के पसमानदा तबकों के बहबूद के महकमे की तरफ से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में 7% रिजर्वेशन के लिए ओबीसी के 66 तबकों की फेरिस्त शाई की है। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी, जिसे एक मुल्क एक चुनाव के मकसद से तश्कील दिया गया है, इसके अरकान कल से गुजरात के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। गांधीनगर के गिफ्ट सिटी सेंटर में पीपी चौधरी की क्यादत में जेपीसी के अरकान ने चीफ सेक्रेटरी एमके दास, डीजीपी डॉक्टर केएलएन राव और दीगर सीनियर अफसरान के साथ बातचीत की। गांधीनगर में कल शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने कहा कि हर एक ने इस नजरिए का इजहार किया कि सभी इंतखाबात एक साथ कराए जाने चाहिए। उन्होंने एक मुल्क एक चुनाव को कौमी मफाद के तहत एक अहम कदम करार दिया। जेपीसी में चेयरमैन के अलावा 39 अरकान हैं, जिनमें 27 अरकान पार्लियामेंट लोकसभा और 12 राज्यसभा के हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 69वीं عالمی صحت اسمبلی میں سب کے لیے صحت بیمہ، ڈیجیٹل صحت اختراع اور عالمی صحت یگانگت کے تئیں بھارت کے عزم کو ایک بار پھر دہرایا ہے۔ اتر پردیش شدید گرمی کی گرفت میں ہے اور ہر گزرنے والے دن کے ساتھ

0: रिकॉर्ड तोड़ दर्जे हरारत देखने में आ रहा है। रियासत के बुंदेलखंड खित्ते में बांदा जिला लगातार तीसरे दिन मुल्क में सबसे गर्म मकाम रहा और वहां पारा 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: रियासत के दीगर हिस्सों में भी शदीद गर्मी से कोई राहत नहीं मिली है और दिन का टेम्परेचर कई मकामात पर 44 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के दरमियान चल रहा है। हत्ता के रात में भी मौसम गर्म है और कई शहरों में कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: मध्य प्रदेश में भी शदीद गर्मी का जोर जारी है। रियासत में पहली मर्तबा दर्जे हरारत 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कौमी राजधानी दिल्ली में इस महीने की 25 तारीख तक शदीद गर्मी और लू चलने के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने DGCA के अफसरान की मौजूदगी में असली कलपुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री में एयर इंडिया के एक बोइंग 787-8 तैयारे के ईंधन को कंट्रोल करने वाले स्विचेस के मुआयने की हिदायत दी है। DGCA के मुताबिक एयर इंडिया के इस तैयारे VTNX को इस साल 2 फरवरी को जमीन पर उतार लिया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC ने तालीमी साल 2026-27 के लिए उर्दू सहाफत में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। ऑनलाइन दाखिले का अमल शुरू हो चुका है और ख्वाहिशमंद तलबा इदारे की वेबसाइट के जरिए 26 मई तक दरख्वास्त दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट के मुताबिक दाखिला इम्तहान 1 जून को नई दिल्ली में IIMC हेडक्वार्टर्स में होगा। तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री हासिल कर चुके ग्रेजुएट तलबा इस कोर्स के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। फाइनल ईयर या सेमेस्टर इम्तिहान देने वाले तलबा भी दाखिले के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। IPL क्रिकेट में कल रात जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह राजस्थान की टीम ने प्लेऑफ मरहले में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का बड़ा निशाना महज 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया, जबकि 5 गेंदों का खेल बाकी था। उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 38 गेंदों पर तेज रफ्तार 93 रन बनाए, उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं असलम बेग।
1: शुक्रिया फैसल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वज़ीर आज़म के 2 रोज़ा नॉर्वे दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, भारत नॉर्वे तिजारती और तहकीकी सरबराह इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि नॉर्वे और भारत के दरमियान मुतअद्दिद शोबों में तआवुन के वसी इम्कानात और हमारे मुल्क में ग़िज़ाई सिक्योरिटी, माही परवरी जैसे शोबों में पार्टनरशिप के मौके मौजूद हैं। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के वियतनाम दौरे की खबर को नुमाया तौर पर शाया करते हुए सुर्खी लगाई है, भारत और वियतनाम के रहनुमाओं ने हिंद बहरुल काहिल खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, सलामती और समंदरी रास्तों की आज़ादी बरकरार रखने के अजम का इरादा किया। इसी अखबार ने एक और अहम खबर को सुर्खी बनाया है, भारत और नॉर्डिक ममालिक ने दहशतगर्दी पर नो कॉम्प्रोमाइज नो डील स्टैंडर्ड का पैगाम दिया।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की अपनी हमनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा भारत मगरबी एशिया यूरोपीय इक्तिसादी कॉरिडोर के बारे में ताउन बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल करेंगे और 2025 से 2029 तक के मुश्तरक कलीदी अमली मनसूबे का जायजा लेंगे। मगरबी बंगाल सरकार 1 जून से अन्नपूर्णा स्कीम शुरू करेगी, जिसके तहत 25 से लेकर 60 साल तक की खवातीन को 3,000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी ने कहा कि लोकसभा और असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाने से तकरीबन 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी और भारत की GDP की शरह तरक्की में 1.6% तक का इजाफा हो जाएगा। और IPL क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 8:45 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में स्वर गंगा का। इस कार्यक्रम में

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत स्वरगंगा के कार्यक्रम में उज्जवल नागर का गाया राग गुजरी तोड़ी। तराना राग मियाँ की तोड़ी में था। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।

9:35 पर सुबह ही प्रोग्राम पेश किया जाएगा और 9:45 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम आज सवेरे। सुबह 9:50 पर खबरें नशे की जाएंगी और सुबह 10 बजे आप सुनेंगे अकवाले सर्रे पर मबनी शम फरोजा। हुस्न गजल प्रोग्राम में आज के फनकार हैं एमएल नकरा और प्रकाश पारनेरकर। आप पेश करेंगे चंद गैर फिल्मी गजलें। कलाम है सबा जयपुरी, नैया रासमी, अश्क अम्बालवी और राहत इंदौरी का। हुस्न गजल प्रोग्राम का वक्त रहेगा सुबह 10:05 और 10:30 पर जनाब हरी कृष्ण कौल का तहरीर करदा ड्रामा नक्कारा का पहला हिस्सा आप सुनेंगे। हम अपने सामने को बता दें इस ड्रामे का दूसरा और आखिरी हिस्सा आप सुन सकते हैं दिन में 11:30 पर। 11 बजे मेरी पसंद प्रोग्राम पेश किया जाएगा और 12 बजे आप सुनेंगे खबरें।

12:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी दो गानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। आज का ये प्रोग्राम जारी रहेगा दिन में 1 बजे तक। दौरान प्रोग्राम 12:40 पर तारीख साज प्रोग्राम पेश किया जाएगा, मौजू है क्रिस्टोफर कोलंबस। दिन में 1 बजे आलमी खबरें नशर की जाएंगी और 1:15 पर उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात हो जाएंगी इख्तिताम पसीर। ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत है प्रोग्राम सुबगाही। सुबगाही प्रोग्राम में आज समाप्त कीजिए नाते रसूल करीम।
1: देख कर साये दामाने रसूल अरबी

गर्दिश वक्त भी कतरा के गुजर जाती है, गर्दिश वक्त भी कतरा के गुजर जाती है, जब से हाँ

आके करीने में आ गया। ऐसी पिलाई साफ दिए बैतुल हरम ने आज

0: वाराणसी में फ्रांस के पॉश्चर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक शोध प्रकाशित किया जिसमें एड्स पैदा करने वाले वायरसों की पहचान की गई, जिसे बाद में HIV नाम दिया गया। और आइए अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। मुझे छोड़ अनगढ़ जग में तुम हुई अगोचर, भाव देह धर लौटी माँ की ममता से भर, वीड़ा लेकर मी शोभित प्रेरणा हंस पर, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम।
1: How beautiful.
0: सुमित्रा नंदन पंत जो है उनकी जयंती है, उन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी जाना जाता था।
1: True.
0: हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार स्तंभों में से एक हैं वो, और सुमित्रा नंदन पंत नए युग के प्रवर्तक के रूप में आधुनिक हिंदी साहित्य में उदित हुए। वे ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिनका प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन था। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में दूरदर्शन को दिया गया एक साक्षात्कार।
2: खुल गए छंद के बंद, प्रास के रजत पाश, अब गीत मुख और युग वाणी बहती अयास, बन गए कलात्मक भाव जगत के रूप नाम, जीवन संघर्ष देता सुख लगता ललाम, सुंदर शिव सत कला के कल्पित मापमान, बन गए स्थूल जग जीवन से हो एक प्राण, मानव स्वभाव ही बन मानव आदर्श सुकर, करता अपूर्ण को पूर्ण और सुंदर को सुंदर। इसमें भी वही भावी जीवन की मेरी कल्पना है कि जिसको कला अपने कल्पना में जिसका आह्वान करती थी अब जीवन में मूर्त होने जा रहा है।
0: उन्होंने प्रयाग में उच्च शिक्षा के दौरान 1921 के असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के बहिष्कार के आह्वान पर महाविद्यालय छोड़ दिया था और हिंदी, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी भाषा साहित्य के स्वाध्याय में लग गए। उनकी मुख्य रचनाएं रहीं वीड़ा, पल्लव, चिदंबरा, युगवाणी आदि। उन्हें ज्ञानपीठ, पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है।
1: Yes, we are telling you about Sumitranandan Pant, one of the most celebrated 20th century poets of the Hindi language. He authored 28 published works, including poetry, verse plays, and essays, and his poems, which were inspired by, Akashita was telling us, nature, people, and beauty within. Today it's also Anjum Chopra's birthday. Well, passionate about cricket, Anjum decided to follow her dream instead of pursuing a corporate career and went on to become the captain of the Indian women's cricket team. So determined, passionate and a go-getter, Anjum. Well, she always talks about managing a team of diverse individuals, the importance of self-belief and how to push oneself to become a winner. Well, Anjum is a Padma Shri recipient and an Arjun Award winner. And she was appointed as a technical assistant to the South African women's cricket team as well, making her the first woman cricketer to receive an international appointment. Well, today we are also remembering Robin Hugh Gibb, the singer-songwriter. He gained global fame as a member of the Bee's Gees. We have a song by him. Let's listen in.

आज तेलुगु सिनेमा की अभिनेता जूनियर एनटीआर का जन्मदिन है। उनका असली नाम नंदामुरी तारक रामा राव जूनियर है। उन्हें उनके फैंस यंग टाइगर के नाम से भी पुकारते हैं। उनके दमदार अभिनय, जबरदस्त डांस और बिना किसी रीटेक के सिंगल टेक डायलॉग डिलीवरी के लिए वे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जाने जाते हैं। तो आइए सुनते हैं SS राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म RRR से उनका ये फेमस गाना।

0: इस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने ऑस्कर जीतकर उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया।
1: राइट
0: और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए आकर्षिता और शगुन को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर समाप्त करने की।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
3: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप फैसल खान से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की अपनी हम मनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ

बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा भारत मगरबी एशिया यूरोपीय इकतसादी कॉरिडोर के बारे में ताउन बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे और 2025 से 2029 तक के मुश्तरक कलीदी अमली मंसूबे का जायजा लेंगे। मगरबी बंगाल सरकार 1 जून से अन्नपूर्णा स्कीम शुरू करेगी, जिसके तहत 25 से लेकर 60 साल तक की खवातीन को 3,000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी ने कहा कि लोकसभा और असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाने से तकरीबन 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी और भारत की जीडीपी की शरह तरक्की में 1.6% तक का इजाफा हो जाएगा। डीजीसीए ने इस साल के अवाइल में एयर इंडिया के बोइंग 787-8 तैयारे में तकनीकी खराबी के तनाजुर में ईंधन कंट्रोल स्विच का मजीद मुआयना किए जाने का हुक्म दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इटली के अपने पहले बाहमी दौरे पर कल रात रोम पहुंचे, जहां वो अहम शोबों में मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत करेंगे। इनमें तिजारत, दिफा, मोबिलिटी, बहरी सिक्योरिटी, बंदरगाहों से मुतल्लिक इश्तराक और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई शामिल हैं। इटली के वजीर खारजा एंटोनियो तजानी ने हवाई अड्डे पर जनाब मोदी का इस्तकबाल किया। बाद में इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने जनाब मोदी के एजाज में एक जियाफत का एहतमाम किया। इसके बाद जनाब मोदी अनंतारा प्लाजो नई दी होटल पहुंचे, जहां भारत निजाद अफराद ने खुशी का इजहार करते हुए गर्मजोशी और पुरतपाक अंदाज से जनाब मोदी का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी पुरजोश भारतीय बिरादरी के लोगों के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने इटली के एक आर्टिस्ट जियांपाओलो टोमासेटी की एक पेंटिंग की नकाब कुशाई भी की, जो वाराणसी के घाटों और भारत के कदीम और दायमी शहर की सकाफती और रूहानी झलक पेश करने के लिए खासतौर पर बनाई गई है। इससे पहले कल भारत और नॉर्डिक मुल्कों ने अपने बाहमी ताल्लुकात को ग्रीन टेक्नोलॉजी और इख्तराई कलीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचाने का ऐलान किया। इन मुल्कों में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक सरबराह इजलास में शिरकत के बाद नॉर्डिक मुल्कों के रहनुमाओं के साथ एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग से खिताब किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि गुज़श्ता दहाई के दौरान भारत में नॉर्डिक मुल्कों की सरमायाकारी में 200% का इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान तलाकात हालिया तजारती समझौतों के साथ एक नए सुनहरे दौर में दाखिल होंगे, जिससे तजारती और इकतसादी साझेदारी नीज भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तजारत का माहिदा भी शामिल है। दहशतगर्दी के मामले पर जनाब मोदी ने कहा कि इस मामले पर दोनों मुल्कों का वाज़े और मुश्तरक मौकफ है, कोई समझौता नहीं और कोई दोहरा मेयार नहीं। मगरबी बंगाल सरकार ने अन्नपूर्णा योजना का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका मकसद खवातीन को उनकी समाजी व इकतसादी बेहतरी के लिए 3,000 रुपये की यकीनी माहाना माली इमदाद फराहम करना है। यह स्कीम खवातीन और बच्चों की तरक्की और समाजी बहबूद के महकमे ने शुरू की है, जिस पर अगले महीने की 1 तारीख से अमल शुरू हो जाएगा। स्कीम के तहत ये माली इमदाद फायदे की रास्त मुंतकली के तहत अहल खवातीन के आधार से मरबूत बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल कर दी जाएगी। स्कीम के लिए अहल होने की शराइत यह है कि उनकी उम्र 25 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए और वो इनकम टैक्स अदा ना करते हो, वो किसी मुस्तकिल सरकारी मुलाजमत में ना हो या उन्हें रियासत या मरकजी कानूनी पंचायती बल्दियाती मकामी इदारे या सरकार की मदद वाले तालीमी इदारे की तरफ से कोई लगातार तनख्वाह या पेंशन न मिलती हो। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासती सरकार के तहत खिदमात और ओहदों में रिजर्वेशन के लिए ओबीसी को ओबीसी के 66 दर्जात के एक फहरिस्त जारी की है। ये फहरिस्त कोलकाता हाई कोर्ट के हुक्म के बाद जारी की गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने ओबीसी ए के लिए 10% और ओबीसी बी के लिए 7% रिजर्वेशन मनसूख कर दी है। मगरबी बंगाल सरकार के पसमानदा तबकों की बहबूद के महकमे की तरफ से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में 7% रिजर्वेशन के लिए ओबीसी के 66 तबकों की फहरिस्त शाई की है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी जिसे एक

0: वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने जेनेवा में 69वीं आलमी सेहत असम्बली में सबके लिए सेहत बीमा डिजिटल सेहत इख्तरा और आलमी सेहत यगानगत के तई भारत के आज़म को एक बार फिर दोहराया है। उत्तर प्रदेश शदीद गर्मी की गिरफ्त में है और हर गुजरने वाले दिन के साथ वहां रिकॉर्ड तोड़ दर्जे हरारत देखने में आ रहा है। रियासत के बुंदेलखंड खित्ते में बांदा जिला लगातार तीसरे दिन मुल्क में सबसे गर्म मकाम रहा और वहां पारा 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश में भी शदीद गर्मी का जोर जारी है। रियासत में पहली मरतबा दर्ज हरारत 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कौमी राजधानी दिल्ली में इस महीने की 25 तारीख तक शदीद गर्मी और लू चलने के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। शहर में कहीं कहीं दिन का पारा 44 डिग्री से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस तक रहने का इम्कान है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने DGCA के अफसरान की मौजूदगी में असली कलपुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री में एयर इंडिया के एक बोइंग 787-8 तैयारे के ईंधन को कंट्रोल करने वाले स्विचेस के मुआयने की हिदायत दी है। DGCA के मुताबिक एयर इंडिया के इस तैयारे VT-NX को इस साल 2 फरवरी को जमीन पर उतार लिया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC ने तालीमी साल 2026-27 के लिए उर्दू सहाफत में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए दरखास्तें तलब की हैं। ऑनलाइन दाखिले का अमल शुरू हो चुका है और ख्वाहिशमंद तलबा इदारे की वेबसाइट के जरिए 26 मई तक दरखास्त दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट के मुताबिक दाखिला इम्तिहान 1 जून को नई दिल्ली में IIMC हेडक्वार्टर्स में होगा। तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री हासिल कर चुके ग्रेजुएट तलबा इस कोर्स के लिए दरखास्त दे सकते हैं। फाइनल ईयर या सेमेस्टर इम्तिहान देने वाले तलबा भी दाखिले के लिए दरखास्त दे सकते हैं। IPL क्रिकेट में कल रात जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह राजस्थान की टीम ने प्लेऑफ मरहले में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का बड़ा निशाना महज 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया, जबकि 5 गेंदों का खेल बाकी था। आज कोलकाता के ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की अपनी हमनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा भारत मगरबी एशिया यूरोपीय इकतसादी कॉरिडोर के बारे में ताउन बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल करेंगे और 2025 से 2029 तक के मुश्तरका कलीदी अमली मंसूबे का जायजा लेंगे। मगरबी बंगाल सरकार 1 जून से अन्नपूर्णा स्कीम शुरू करेगी, जिसके तहत 25 से लेकर 60 साल तक की खवातीन को 3,000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी ने कहा कि लोकसभा और असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाने से तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपये की बचत हो सकेगी और भारत की GDP की शरह तरक्की में 1.6% तक का इजाफा हो जाएगा। DGCA ने इस साल के अवाइल में एयर इंडिया के बोइंग 787-8 तैयारे में तकनीकी खराबी के तनाजुर में ईंधन कंट्रोल स्विच का मजीद मुआयना किए जाने का हुक्म दिया है। और IPL क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रेडिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है अकवालें सर्री पर मबनी शम्मे फरोजा।
2: इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात यानी सारी मखलूकात का सरदार बनाया है। इंसान को यह फजीलत और बरतरी उसकी जसामत और डील डॉल की वजह से नहीं दी गई है, बल्कि इसके इल्म और हुनर और समझदारी और दानिशमंदी की वजह से दी गई है। ये समझदारी और दानिशमंदी खुदा की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत है और खुदा जिसको चाहता है उसको इल्म हुनर में बरतरी और कमाल अता करता है। दानिशमंदी का इजहार शाइस्तगी और तहजीब की शक्ल में होता है। जो इंसान जितना बाकमाल होता है वो उतना ही महज़ब और शाइस्ता हुआ करता है। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि दानिशमंदी और इल्म हुनर में ज़ाहिरी निखार और ख़ूबसूरती तहजीब और शाइस्तगी से पैदा होती है। یعنی خدا کی دی ہوئی دانش مندی کی

हुस्न गज़ल प्रोग्राम में आज आप महसूस हो रहे थे एम एल नकरा और प्रकाश पारनेकर की गई चंद गैर फिल्मी गज़लों से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। ओली जब सुनिए जनाब हरी कृष्ण कौल का तहरीर करदा ड्रामा नकारा का पहला हिस्सा।

0: कॉरिडोर की तरफ।
1: जब से आर्किटेक्ट से ये नक्शा ले आए हो ना, तब से सारा कामकाज भूल गए हो।
0: ओहो नजमा, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूं। घर, अपना एक छोटा सा घर, एक तखलीक, गजल के शेर की तरह मुख्तसर होने के बावजूद अपने में मुकम्मल, एक ख्वाब या फिर ख्वाब की ताबीर।
1: हजरत, अभी तो ये कागज पर खिंची चंद लकीरें हैं। इन कागजी लकीरों को ठोस शक्ल देने के लिए शायरी की नहीं, बल्कि ईंट, पत्थर, लोहा, सीमेंट जैसी गैर शायराना चीजों की जरूरत है।
0: बस यही तो यूसुफ मियां मात खा गए। तुम्हारे अब्बा ने हम पर एहसान तो किया ही था। अरे एक आध किलो एहसान अगर और कर देते तो क्या कोई फर्क पड़ जाता?
1: क्या मतलब, मैं समझी नहीं।
0: भाई देखो, एक प्लॉट की जगह अगर उन्होंने हमें दो प्लॉट दिए होते तो हमारा तो मसला ही हल हो जाता। हम दूसरा प्लॉट बेच देते और उसी रकम से पहले वाले प्लॉट पर मकान खड़ा करते।
1: वाह वाह वाह, क्या बात कही है। तुम्हारी अपनी जायदाद तुम्हारे भाइयों ने धोखे में तुमसे छीन ली और खुद तुमने जिंदगी में कलम घसीटने के सिवा कुछ नहीं किया।
0: नजमा,
1: अब्बू ने मेरा हक समझने से ज्यादा मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे 200 गज का प्लॉट दे दिया, और तुम चाहते हो कि वही तुम्हें मकान भी बनवा कर दे दे।
0: खैर कोई बात नहीं, आजकल बहुत से सरकारी और गैर सरकारी इदारे मकान बनाने के लिए आसान शर्तों पर कर्जे देते हैं।
1: हाँ, हमारे स्कूल की एक टीचर भी यही कह रही थी। अच्छा मुझे ये बताओ कि कर्ज लेकर मकान बनाना अच्छी बात है या बुरी?
0: किसमें बुरा क्या है? कर्जा चुकाने के लिए हमें हर महीने बस 2-2 हजार रुपए की किस्तें अदा करनी होंगी।
1: हर महीने 2-2 हजार?
0: अरे सुनती जाओ, ये किस्तें हमें सिर्फ 20 साल तक अदा करनी होंगी।
1: 20 साल? कर्ज कितना मिलेगा?
0: यही कोई 1-1.5 लाख, और कितना?
1: 1-1.5 लाख, 20-2 हजार रुपए में, यानी 1-1.5 लाख के बदले हमें 4-5 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। जनाब यूसुफ साहब, ये सौदा मुझसे नहीं होगा। 8 बज गए, मुझे तो स्कूल जाने में देर हो गई।
0: अरे सुनो तो सही। चली गई बेचारी को कर्जा लेने की हिम्मत नहीं हो रही है, मगर एक दिन हिम्मत हो ही जाएगी। ये तो प्रिंस की मेहरबानी है कि हमें यह कोठी मुफ्त में रहने को दे रखी है, मगर यह मेहरबानी हमेशा तो नहीं रहेगी। अगर उसने खुद इसी शहर में मुस्तकिल तौर पर रहने का फैसला कर लिया तो हमें तो ये मकान खाली करना ही पड़ेगा, और जब महीने का 1-1.5 हजार रुपए मकान का किराया देना पड़ेगा तो नजमा साहिबा खुद ब खुद समझ जाएंगी कि कर्जा लेकर अपना मकान बनाना और हर महीने 2-2 हजार की किस्त अदा करना कहीं बेहतर है।
2: आदाब हजरत यूसुफ साहब, आदाब हजरत।
0: अरे मनोहर साहब, आदाब आदाब। तशरीफ रखिए ना।
2: अरे क्यों नहीं भाई,
0: कहिए। आज कोई नई खबर है, कोई नया स्कैंडल?
2: भाई पहले ये बताइए, आप पुराने स्कैंडल के बारे में रिपोर्ट कब छाप रहे हैं?
0: छापेंगे, कभी कभी ना चाहते हुए भी ताखीर हो ही जाती है। खैर ये बताएं, आपको पूरा यकीन है कि 100 के बदले सिर्फ 60 क्विंटल ही तोले गए?
2: भाई मुझसे खुद ठेकेदार ने कहा।
0: ओ, आप उसे जानते हैं?
2: अरे साहब, इस साल पहली बार हमारा साहब खुद माल तुलवाने गया, नहीं तो ये काम बंदा ही करता था।
0: आप पूरा माल तुलवाते थे?
2: अरे साहब, पूरा माल कौन तोलता है और कौन तुलवाता है? आप ही ईश्वर को आखिर जवाब देना है। हाँ, हम फिर भी 75 क्विंटल तुलवाते थे जब हम इंचार्ज थे, तब इस साल जैसा अंधेर नहीं था।
0: और बिल पूरे 100 क्विंटल के लिए ही पास होता था।
2: भाई वो तो होना ही था, ऑर्डर भी तो 100 क्विंटल का ही होता था।
0: मनोहर साहब, आप भी सीधे नहीं है।
2: अरे साहब, जब दुनिया की हर चाल टेढ़ी हो तब हमने सीधी चाल चलकर अपने को पिटवाना है क्या?
0: ठीक है ठीक है, मगर ये बताइए कि आपके नए साहब ने आपसे ये चार्ज छीन क्यों लिया?
2: भाई इसके पीछे एक लंबी दास्तान है, लेकिन लगता है आप जल्दी में हैं।
0: हाँ दिलगीर साहब मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
2: भाई माफ कीजिएगा, ये दिलगीर साहब कौन है?

0: अरे भूल गए, जिस अखबार में मैं काम करता हूँ उसके एडिटर और मालिक।
1: याद आया, याद आया। चलिए मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ।
0: तो फिर चलिए।
1: हाँ भाई, वो देखिए नए अफसर ने मुझसे स्टोर का चार्ज क्यों छीन लिया, अगर सुनेंगे तो शायद यकीन नहीं करेंगे। कभी कभी मन करता है कि नए अफसर की नई चाल के बारे में इश्तहार छपवा कर हर एक दीवार और हर एक खंबे पर चिपका दूं, मगर क्या करूं, मुझे उर्दू लिखनी ही नहीं आती है।

0: सात बज गए, आज मुझे इतनी देर हो गई।
1: हाँ नजबा, सुबह 8 बजे घर से चली थी और शाम के 7 बजे लौटी हो। मैं कहता हूँ छोड़ दो ये एग्जामिनेशन ड्यूटी।
0: कैसे छोड़ दूँ? तुम्हारे 2000 और मेरे 2500 से घर कैसे चलेगा? और नया घर बनाने के लिए बचत कहाँ से होगी? अरे सिर बहुत दुख रहा है आज, देखना शायद बुखार भी है।
1: तो पहले डॉक्टर के पास चलो।
0: नहीं, मैंने एक टेबलेट खा लिया है, दूसरा सोने से पहले ले लूंगी, सुबह तक ठीक हो जाऊंगी।
1: ठीक है, तुम जाकर आराम करो।
0: सुनो, तुम कुछ देर के लिए कागज स्याह करना छोड़ दो, एक जरूरी बात करनी है।
1: कहो ना।
0: वो ऐसा है कि एग्जामिनेशन सेंटर में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने मुझसे कहा कि अगर सोसाइटी अच्छी और भरोसे वाली हो तो लोन लेने में कोई हर्ज नहीं है।
1: मैं भी तो यही कहता हूँ।
0: तो फिर ठीक है ना, फिर कर लो कहीं से लोन का इंतजाम।
1: देखो, जमीन तुम्हारे नाम है इसलिए लोन तुम्हें ही मिल सकता है, मुझे नहीं।
0: ठीक है, तुम कागजात तैयार कर लो, मैं दस्तखत कर दूंगी। उफ़ो, फिर लगे कलम घसीटने, ये कलम कलम ना हुई, मेरी सौतन हो गई।
1: तुम्हारी सौतन है या नहीं, मगर मेरी रोटी यही है।
0: रोटी? आजकल 2000 में 30 दिन के लिए सूखी रोटियां भी नहीं आ सकती।
1: नजमा,
0: लाओ मत, तुम मेरा सर पटा जा रहा है, मैं अंदर जाकर लेटती हूँ, तुम कलम के बेलन से कागज के चकले पर रोटियां बेलते जाओ।
2: सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है और क्या बात से बात पैदा की है यूसुफ मियां।
1: शुक्रिया।
2: कोयले की दलाली किसने की, मुंह काला किसका हुआ, वाह भला क्या बात है।
1: आखिर आप ही का शागिर्द हूं दिलगीर साहब।
2: मगर मुझे एक बात खटकती है, तुम कहते हो 40 क्विंटल कोयले का घपला हुआ है
1: जी।
2: अगर क्विंटल की कीमत 200-250 भी लगाएं तब भी रकम कुल 8-10 हजार बनती है। अरे 8-10 हजार की चोरी भी कोई चोरी होती है? अमा आजकल तो लाखों करोड़ों रुपए पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं।
1: तो क्या मेरी ये रिपोर्ट छप नहीं सकती?
2: छपेगी, जरूर छपेगी। रकम मामूली जरूर है मगर तुम्हारी कलम, मतलब कलम चलाने का अंदाज, मतलब अंदाज़े बयां गैर मामूली है। मालूम नहीं गालिब ने क्या सोचकर कहा था, भाई मैं तो यही कहूंगा, जिक्र उस या रुख का और फिर बयां तेरा। आसलमिया,
3: अभी हाजिर होता हूं मालिक।
2: जिक्र उस या रुख का और फिर बयां तेरा, बन गया रकीब आखिर जो था शागिर्द मेरा। असलमिया, देखो पहला सफा मुकम्मल होने पर दूसरे और तीसरे सफे पर यूसुफ साहब का ये मजमून लिखना है, और अगर कुछ बाकी बचे तो उसे सफा नंबर 7 पर ले जाना, समझ गए? और हाँ, नसीर अहमद से कहना कि 8वें सफे का इश्तहार लिखने के बाद 4थे और 5वें सफे पर इस डाइजेस्ट से ये मजमून नकल कर ले। अतालवी हसीना जो 35 साल की उम्र में ही 40 शोहर बदल चुकी थी।
1: ये क्या दिलगीर साहब?
2: अरे यूसुफ मियां, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है मेरे अजीज।
1: विटामिन बी कॉम्प्लेक्स?
2: हाँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारा मजमून एक जबरदस्त एंटीबायोटिक है, और ये एंटीबायोटिक ही हमारे समाज की क्रॉनिक बीमारी की दवा है।

0: मगर दवा चूंकि तेज होने के सबब कुछ जरर भी पहुंचा सकती है, इसलिए इस जरर को कम करने के लिए 35 साल की उम्र में ही 40 शौहर बदलने वाली अतालवी हसीना जैसी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली भी साथ रखनी पड़ती है।
1: दिलवीर साहब, आपके ख्याल में क्या हमारे समाज की क्रॉनिक बीमारी का इलाज हो सकता है?
0: हाँ, जरूर हो सकता है, मगर इसके लिए सब्र और एक लंबी जद्दोजहद की जरूरत है।
1: हम जद्दोजहद जारी रखेंगे, जो कहना होगा बगैर किसी खौफ या मसलहत के कहेंगे। मगर दिलगीर साहब, हमारी बात कोई सुनेगा भी कि नहीं?
0: हाँ, तुम्हारा अंदेशा भी अपनी जगह दुरुस्त है। नकार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है? मगर बरखुरदार, हमारा अखबार तूती की आवाज नहीं है, मैंने इसका नाम ही नकारा रखा है। खैर, मजाक छोड़ो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस अखबार की खातिर कम कुर्बानियां नहीं दी हैं। मेरे दोनों भाई मुझसे कम तालीम याफ्ता हैं, मगर दोनों की माली हालत मुझसे कई गुना बेहतर है। मेरे बड़े भाई की जूतों की दुकान है, 100 रुपए के जूते पर 400 का ठप्पा लगाता है और 300 में बेचता है। ग्राहक समझता है कि उसने बाजी मार ली। छोटा भाई कंपाउंडर है, एक गांव में दवाइयों की दुकान चलाता है और आसपास के देहात में बगैर किसी ट्रेनिंग या लाइसेंस के डॉक्टरी प्रैक्टिस भी करता है। महीने में कम से कम 10,000 कमाता है।
1: अच्छा,
0: अब मुझे देखो, सारे खर्च काट कर बतौर नफा मेरे पास कितना बचता होगा? महीने में 3 या 3,500 बस। लेकिन मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारता। मुझे पूरा यकीन है कि लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। तुम कहो, तुम्हारे भाई क्या काम करते हैं?
1: वो तिजारत करते हैं, मतलब जो कुछ भी करते हैं उसे तिजारत समझकर ही करते हैं। तीनों ने मेरे साथ धोखा किया और पुश्तैनी जायदाद का मेरा हिस्सा हड़प लिया।
0: यूसुफ नाम है ना, इसीलिए। तो भी शुक्र करो, तुम्हें किसी कुएं में नहीं धकेल दिया। अच्छा, एक बात पूछूं?
1: जी,
0: सच सच बताना। सुना है तुम्हें भी किसी जुलेखा ने खरीद लिया है?
1: जी, मैं समझा नहीं।
0: अरे बुरा नहीं मानना, कहते हैं तुम्हें अपनी बेगम और उसके बाप से काफी दौलत, जमीन और जायदाद मिली है।
1: कहने वाले बकवास करते हैं। अलबत्ता मेरे ससुर के पास काफी जमीन थी, उन्होंने मुझे एक छोटा सा प्लॉट दिया। मुझे भी कहां दिया साहब, अपनी बेटी के नाम लिख दिया है।
0: भाई ये तो कुछ नहीं है, और मैं तो यही कहूंगा, समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है ये, रज़ाकी नहीं है।

0: अरे क्या होगा मुझे
1: इन्फेक्शन हो गया है और कुछ नहीं।
0: भाई, 4 दिन हो गए दवाई खाते हुए मुझे, मगर बुखार तो अब भी है।
1: इन्फेक्शन बहुत ज्यादा था, इसलिए अभी एक और हफ्ते तुम्हें ये दवाई जारी रखनी होगी।
0: हाँ, मगर डॉक्टर ने तो आज दवाई बदल दी है।
1: हाँ बदली, ये वही दवाई है। हाँ नाम दूसरा है, कंपनी दूसरी है। बाकी डॉक्टर जाने कि उसने एक कंपनी की दवा रद्द करके दूसरी कंपनी की दवा क्यों तजवीज की।
0: अरे मेरे तो गला सूख रहा है।
1: ये लो पानी पियो।
0: तो मैं ऑफिस नहीं जाना आज?
1: नहीं, आज नकारे का नया शुमारा निकला होगा, अगले शुमारे के लिए परसों से काम शुरू होगा।
2: किसने की मुंह काला किसका हुआ? पढ़िए पढ़िए, हफ्ते बाद नकारे का नया शुमारा, पढ़िए पढ़िए। ये लीजिए। हाँ लीजिए, बड़े स्कैंडल का पता फाश, एक संतनी नकारे का नया शुमारा सिर्फ 3 रुपए में।
3: असलम भाई, असलम भाई गजब हो गया।
4: क्यों, क्या हुआ नसीर अहमद?
3: असलम भाई, मैं इस किताब से ये मजमून नकल कर रहा था, लेसर बीम्स यानी साइंस की दुनिया में इनकलाब, मगर बीच में 10-15 सतरे मुझसे छूट गईं।
4: अरे 10-15 सतरे छूट गई तो कौन सी कयामत आ गई? 15 सतरे छूटने से जो जगह बचेगी वहां जली हुरूफ में लिखो, नकारा आपकी आवाज है और इसकी खरीदारी बढ़ाना आपका मुकद्दस फर्ज है।
5: भाई माफ कीजिएगा, ये एडिटर साहब कहाँ मिलेंगे?
4: प्रेस गए हैं, आप काम बताएं।
3: और नाम भी?
5: भाई मुझे तो मनोहर कहते हैं। ये बताइए, ये कोयलों की दलाली वाला आर्टिकल किसने लिखा है?
4: हमारे खसूसी नामा निगार ने।
5: भाई मगर ये सारी बातें तो मैंने यूसुफ साहब को बताई थी, ये खसूसी नामा निगार बीच में कहां से आ गया?
3: अरे भाई यूसुफ साहब ही तो खसूसी नामा निगार हैं।
5: अच्छा, तो फिर ये यूसुफ साहब कहां मिल सकते हैं?
3: घर पर ही होंगे, उनकी बेगम की तबीयत कुछ ठीक नहीं।
5: भाई मैं उनकी हिम्मत पर उन्हें मरहबा कहना चाहता हूँ, उनके कलम को चूमना चाहता हूँ। वैसे ये सारी बातें मैंने ही उन्हें बताई हैं, मैंने और भी बहुत कुछ कहा था जो उन्होंने नहीं लिखा है। मैं खुद भी एक सनसनी खेज और वलवला अंगेज आर्टिकल लिख सकता था, मगर क्या करूं, मुझे उर्दू लिखने नहीं आती है। अच्छा मैं चला।
4: उर्दू लिखनी नहीं आती है?
3: मेरे ख्याल में उसके नसीब अच्छे हैं असलम भाई, जो उसे उर्दू लिखनी नहीं आती है। उर्दू हम बदनसीबों को लिखनी आती है ना, इसीलिए किताबत करते करते कमर झुक गई है, आंखें अंधी हो गई हैं।

0: यूसुफिया भाई, तुम्हारा मजमून पूरा पढ़कर ही मैं प्रेस गया था।
1: कैसा लगा आपको?
0: मुझे बेहद पसंद आया। साइन बोर्डों पर टंगी सनती तरक्की, अब बात बनी है।
1: सर, ये नई रिपोर्ट सिर्फ एक जिले के बारे में है, मगर हर जिले में कमोबेश यही हालत है। लेने वालों ने लाखों रुपए सब्सिडी और आसान शर्तों पर कर्जे के तौर पर लिए, मगर ना तो कहीं कोई फैक्ट्री बनी है और ना ही कहीं कोई एंटरप्राइज शुरू हुआ है। बस जगह जगह साइन बोर्ड नजर आते हैं, फला मिल, फला इंडस्ट्री।
0: मुझे अब पक्का यकीन है कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में तुम जल्द ही अपने लिए एक मकाम हासिल करोगे।
1: शुक्रिया।
0: हाँ, याद आया, कल ही एक लोकल रोजनामे में खबर छपी थी कि शहर के पाई इलाकों में आंतों की बीमारी से दर्जनों लोग मर गए। बीमारी के लिए जो आजमूदा दवाइयां हैं वो कारगर साबित नहीं हो रही हैं। डॉक्टर भी हैरान हैं कि माजरा क्या है, वगैरह वगैरह।
1: मैं तो खुद ही भुगत चुका हूं दिलगीर साहब। डॉक्टर ने पहले जो एंटीबायोटिक मेरी मिसिस के लिए तजवीज किया था वो बिल्कुल बेअसर रहा।
0: कहीं ऐसा तो नहीं है कि नकली दवाइयों के मुल्क गीर रैकेट ने अपने खूंखार पंजे यहां तक फैला दिए हों? इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट तैयार कर सकते हो?
1: कर तो सकता हूं, मगर अभी थोड़ा परेशान हूं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हम मकान की तामीर शुरू नहीं कर पा रहे हैं। सोचता हूं अगर मेरे दोस्त ने हमें अपने मकान में मुफ्त रहने नहीं दिया होता तो हम मकान का किराया कहां से लाते?
0: क्या ये वही शख्स तो नहीं जिसे तुम प्रिंस कहते हो?
1: जी हाँ, आपने ठीक ही समझा।
0: बड़ा हातमताई है तुम्हारा ये शहजादा। वैसे करता क्या है?
1: बंबई में कंसल्टेंसी चलाता है, कई कंपनियों में उसके शेयर्स हैं, कई शहरों में कोठियां भी हैं। और हम हैं कि हमारी तकदीर में अपना एक छोटा सा मकान भी नहीं है।
0: तकदीर तकदीर, मैं कहता हूं ज्यादा बकवास मत करो, मेहनत करो, मेहनत से ही मकान भी बनेगा और तकदीर भी बनेगी। हमें अगर तकदीर ही सब कुछ होती तो अल्लाह मियां ने हमें हाथ पांव क्यों दिए होते? हाथ पांव दिए हैं इसका मतलब यही है कि उसने हमें मेहनत करने का हुक्म दिया है। वैसे तुम भी अब मेहनत करने लगे हो। अखबार की माली हालत तो अच्छी नहीं है, पर फिर भी इस महीने से मैं तुम्हारी तनख्वाह 500 रुपए बढ़ाता हूं।
1: क्या 500 रुपए? दिलगीर साहब, आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिलगीर साहब।
0: हेलो, जी हाँ, बोल रहा हूं। आदावर्ष करता हूं, कहिए मिजाज कैसे हैं? नहीं साहब, आप इसे बदतमीजी नहीं कह सकते। जी नहीं साहब, ये तेज कलामी भी नहीं है, ये सिर्फ हकीकत बयानी है। नहीं नहीं, मुझे आपसे तफाक नहीं। जब जमाना ही कड़वा हो तो मेरा अखबार मीठा कैसे हो सकता है? एक शेर अर्ज करता हूं, लब पे है तलखिए मय अयाम वरना फैज, हम तलखिए कलाम पर मायल जरा न थे। खुदा हाफिज।
1: दिलगीर साहब, मैं आपकी इस दिलेरी, दिलावरी और दिलदारी पर फिदा हूं। आजकल कौन ऐसा है जो इस तरह हक और इंसाफ के लिए लड़ता हो? अगर आप मेरी तनख्वाह में 500 रुपए बढ़ाने की बजाय 500 रुपए घटाएंगे तब भी मैं आपकी रहनुमाई में ही काम करूंगा।
0: असलम मियां।
2: जी हुजूर।
0: अरे भाई, जल्दी जाकर नीचे से दो चाय और खाने के लिए कुछ ले आओ, हमारे यूसुफ मियां बहुत जज्बाती हो गए हैं।

0: जज्बाती मत बनो यूसुफ, डोंट बी सेंटिमेंटल। अगर मेरा यहां आने का प्रोग्राम होता तो क्या तुम्हें इन्फॉर्म नहीं करता? अरे ये तो अचानक हो गया। असल में मेरा हांगकांग का प्रोग्राम था जो लास्ट मोमेंट पर पोस्टपोन हो गया। अब भाई मैंने सोचा कि बंबई में खाली बैठकर क्या करेंगे, देयर वॉज नो फन। अरे हाँ, अभी तक फोन क्यों नहीं लगा?
1: जनवरी तक की बुकिंग क्लियर हो गई है प्रिंस। हमारी बारी आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा।
0: थोड़ा नहीं, बहुत वक्त लगेगा। हमारी जनरल कैटेगरी में बुकिंग है ना। यू डू वन थिंग, टेक मनी और आज ही ड्राफ्ट बना लो। हाँ, चेंज इट इनटू ओआईटी स्पेशल कैटेगरी।
1: फिर तो कल परसों तक ही मिल जाएगा।
0: नहीं मिलेगा यूसुफ, यू आर ए सिंपलटन रियली। कल परसों तक ही मिले, इसके लिए कुछ और जोर लगाना पड़ेगा।
2: मैं भी हंसी की वजह जान सकती हूँ, या पहले मैं भी हंसी में शामिल हो जाऊँ और फिर पूछूं कि बात क्या है।
0: अरे नजमा, व्हाट इज ऑल दिस? कौन खाएगा ये सब?
2: बस एक मिनट।
1: अरे ये है ही कितना, तुम जितना खा सकते हो खाओ, बाकी जो बचेगा मैं खा लूंगा।
0: तुम खाओगे?
1: हाँ।
0: अरे खाने वाले तो और ही होते हैं, खाने और फिर खाकर हजम करने के लिए मुंह और मैदा ही नहीं, दिल और गुर्दा भी चाहिए।
1: हाँ प्रिंस, मुंह मैदा और दिल गुर्दा सही होने के बावजूद मैं वाकई इन खाने वालों में से नहीं हूं।
0: वो नजमा कहाँ गई?
1: चाय लाने गई है। अरे ये लो, आई गई।
2: अरे आपने तो कुछ खाया ही नहीं।
0: अरे खा रहा हूँ, धीरे धीरे खाऊंगा तो ज्यादा खा लूंगा।
2: चीनी ठीक है?
0: हाँ, तुमने अपने हाथों से चाय बनाई है नजमा, मेरा ख्याल से चीनी की जरूरत ही नहीं है।
1: तुमने बताया नहीं कि हांगकांग किस सिलसिले में जा रहे थे?
0: वो वैसा है कि मैं एक ट्रेवल एजेंसी खोलने की सोच रहा हूँ। इट विल मेनली कैटर टू साउथ ईस्ट एशियन टूरिस्ट।
1: बड़ा ही नेक ख्याल है।
0: मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और कश्मीर के लिए एजेंसी का जोनल ऑफिस यहीं रखूं।
1: ये भी बहुत नया ख्याल है।
0: है तो सही, मगर
2: मगर क्या?
0: जोनल ऑफिस के इंचार्ज, मेरा मतलब है कि जोनल मैनेजर के लिए मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है जो एफिशिएंट भी हो, एनर्जेटिक भी हो और डिपेंडेबल भी हो।
2: एफिशिएंट होने से ज्यादा उसका डिपेंडेबल होना जरूरी है।
0: यूसुफ, इसके लिए मुझे तुमसे बेहतर आदमी कहाँ मिल सकता है? मगर बदकिस्मती यही है कि तुम्हें रख ही नहीं सकता। अपनी खुदगर्जी के लिए मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता।
1: मैं समझा नहीं।
0: वो यार बात यह है कि शुरू शुरू में मैं 5-5.5 हजार से ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकता।
2: 5-5.5 हजार? आपको मालूम है दिलगीर साहब इन्हें कितना देते हैं?
0: नहीं तो हाउ डू आई नो?
2: 2,000।
1: 2,000 नहीं, 2,500। इस महीने से उन्होंने 500 बढ़ा दिए।
0: और 2,500 पाकर तुम खुश हो?
1: तुम्हें नहीं लग रहा है प्रिंस, दरअसल जॉब सेटिस्फेक्शन असल में सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है।
0: व्हाट जॉब सेटिस्फेक्शन यार। सुनो यूसुफ, तुम अभी इसी वक्त इस नौकरी को लात मारो और मेरे जोनल ऑफिस का काम संभालो।
2: आपके लिए तो ये बड़ी से बड़ी चीज को लात भी मार सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, मगर दिलगीर साहब को नहीं छोड़ सकते।
1: नजमा प्लीज।
0: शी इज राइट। दरअसल तुम्हें उस दिल फेंक साहब,
1: दिलगीर साहब, दिलगीर साहब,
0: वही दिलगीर।

0: घर में भी नहीं मिल सकता। मगर मकान तो आखिर बनवाना ही है ना। देखिए ना, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, इसलिए जितनी जल्दी पूरा हो जाए उतना ही अच्छा है।
1: यू आर राइट यूसुफ, बुरा नहीं मानना, तुम नजमा जैसी समझदार औरत के काबिल ही नहीं थे। भाई रुपए पैसे का कोई इंतजाम क्यों नहीं करते हो?
2: वो क्या है प्रिंस, के एक हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी से लोन मिल रहा है, मगर उसके लिए पहले अपने पैसों से प्लिंथ खड़ी करनी होगी। कुछ अजीब सी शर्त है उनकी।
1: नो प्रॉब्लम यार, नो प्रॉब्लम। मिसेस नजमा यूसुफ। नजमा, मेरे ख्याल से इससे काम चल जाएगा।
0: 30,000 का चेक?
1: भाई यूसुफ, बुरा नहीं मानना, मैंने चेक नजमा के नाम से लिखा है।
2: अरे नहीं नहीं, ये तो तुमने अच्छा ही किया। जमीन भी नजमा के ही नाम है, मकान भी उसके ही नाम से बनेगा।
0: मगर ये चेक आपने क्यों काटा? नहीं मतलब कि हमने तो आपसे नहीं कहा कि हमें रुपयों की जरूरत है।
1: अरे भाई ये भी लोन ही है, हमें भी एक फाइनेंस सोसाइटी ही समझो। हमारी सोसाइटी की शर्तें कुछ नरम हैं। इंटरेस्ट इज नॉमिनल, यानी कि अ ग्रैंड डिनर इन द न्यू हाउस।
0: क्यों नहीं।
1: और रहा सवाल रिपेमेंट का, उसके लिए कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, जब चाहो तब कर सकते हो। और हाँ, अगर यूसुफ मियां को मेरे जोनल ऑफिस का काम संभालना मंजूर हो तो ये रकम थोड़ी थोड़ी करके इनकी तनख्वाह और बोनस वगैरह में से कटती रहेगी।
0: मगर
1: कोई अगर मगर नहीं, अगर मगर नहीं। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड। मुझे उम्मीद है कि ये बातें समझाने के लिए मुझे उस कहानी का रीच नहीं बनना पड़ेगा जिसे तुम टीचर वगैरह वो बच्चों को अक्सर सुनाया करते हो।

0: एक बात कहूं दिलगीर साहब,
1: कहो।
0: कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे ख्वाबों, इरादों और जद्दोजहद के बावजूद ये दुनिया जैसी है बिल्कुल वैसी ही रहेगी, कहीं कुछ नहीं बदलेगा।
1: यूसुफ, ऐसी बातें वो लोग करते हैं जिनके मफादात और मुराद इसी निजाम में, इसी स्टेटस को में महफूज हों। वही ये भी कहते हैं कि पत्थर की दीवार के साथ सर टकराओगे तो दीवार में जरा सी जुम्बिश भी नहीं होगी, तुम्हारा सर जरूर फट जाएगा। मगर दिलगीर कहता है कि पत्थर की दीवार के साथ टकराने का अमल जारी रखो, सर लहू लुहान हो जाए तो होने दो।
0: दिलगीर साहब, मेरा सर भले ही लहूलुहान हो जाए मगर वो किसी के आगे नहीं झुकेगा, ना तो दुश्मन के आगे और ना ही दोस्त के आगे। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड जैसा घिसा पिटा फिकरा दोहराने वाले दोस्त के आगे भी नहीं।
1: शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, हम बेकरार हैं आवाज के असर के लिए।
2: Thank you.

माहौल नहीं था, लेकिन ख़ुद की दिलचस्पी मौसीकी में थी और यही वजह थी कि उनको इस फील्ड में कामयाबी भी मिली। बहुत ज़्यादा नगमे तो उन्होंने तरतीब नहीं दी अपनी मौसीकी में, लेकिन चंद नगमे बहुत मकबूल हुए, ख़ासतौर पर सिकंदर आज़म फिल्म का वो नगमा जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, हुब्बुल वतनी से लबरेज, जज्बे से लबरेज था ये नगमा, और उसके अलावा चंद कई नगमे बड़े मकबूल रहे। तो आइए वो नगमे हम आपकी नज़र करना चाहेंगे।

मेरी पसंद प्रोग्राम की अगली पेशकश राजधानी फिल्म का दुगाना लता मंगेशकर और तलत महमूद का गाया हुआ मौसीकी हंसराज बहल की।

0: ये थी मेरी पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमारे नशा जारी है मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। नक्कारा जनाब हरे कृष्ण कौल का तहरीर करदा ये ड्रामा सुनिए, इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा हम आपकी नज़र कर रहे हैं। तरतीब पेशकश प्रेम वोहरा की।
1: साहब आपकी तहरीर में कितना असर है ये मैंने अब देख लिया।
2: ये बताएं कि आपके अफसर पर भी इसका कुछ असर हुआ कि नहीं?
1: जी वही तो बता रहा हूँ, 2 दिन उसने ऐसे पोज किया जैसे उसने नकारा पढ़ा ही ना हो, हालांकि मैंने अखबार के निकलते ही एक पर्चा फोल्ड करके खुद उसके लेटर बॉक्स में डाल दिया था। तीसरे दिन उसने कहा कि सब बेबुनियाद और शरारत आमेज है। चौथे दिन स्टोर कीपर से रजिस्टर लेकर खुद स्टॉक दर्ज किया और नीचे अपने दस्तखत किए। पांचवें दिन अलग से अपने कमरे में बुलवाकर मुझसे मेरे बीवी बच्चों का हाल पूछा। छठे दिन मुझे टूर पर भेजने का वादा किया और सातवें दिन
2: बस कीजिए मनोहर साहब, बस कीजिए, मैंने सब सुन लिया।
1: जी अभी आपने पूरी बात कहाँ सुनी, 7वें और 8वें दिन जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ दिल करता है कि उस सब पर एक जबरदस्त जासूसी नॉवेल लिखूं, मगर क्या करूं मुझे उर्दू लिखनी ही नहीं आती।
2: जासूसी नॉवेल लिखने के बदले आप खुद थोड़ी सी जासूसी करके मेरी जरा सी मदद कर दीजिए।
1: मैं समझा नहीं।
2: मनोहर साहब मैं इस वक्त आपके यहाँ एक अहम काम के सिलसिले में आया हूँ।
1: हाँ?
2: वो आपने एक दिन कहा था ना कि आपके किसी दोस्त के पास कई दवासाज कंपनियों की एजेंसियां हैं।
1: क्यों साहब, मेरे अफसर के बाद अब दवा बेचने वालों की शामत आई है क्या?
2: नहीं, मेरा एक रिश्तेदार है, बहुत गरीब है बेचारा। आप मुझे अपने दोस्त से अगर मिला दें तो हो सकता है कि वो उसे कहीं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लगा सके।
1: अरे यूसुफ साहब, मनोहर इतना बेवकूफ नहीं जितना नजर आता है, मगर यकीन मानिए साहब, मेरा दोस्त इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो ईमानदार ना सही मगर डरपोक जरूर है, उसमें कोई ऐसा वैसा काम करने की हिम्मत नहीं है। हाँ मैं आपको एक काम के आदमी से जरूर मिला सकता हूँ।
2: वो कौन है, क्या है?
1: अरे साहब बड़ी ऊंची चीज है, तगड़ी आसामी है। कल तक चिथड़े पहनकर नंगे पांव फिरता था, आज सफारी सूट पहनकर मोटरसाइकिल पर घूमता है, और यकीन मानिए कल मोटर कार दौड़ाता नजर आएगा।
2: तो जनाब हमें भी उनके दर्शन करा दीजिए।
1: साहब भाई उसके दर्शन के लिए सूरज डूबने का इंतजार करना होगा, मैं आज शाम 6 बजे आपके दफ्तर के नीचे आपका इंतजार करूंगा और वहीं से हम सीधे उसके दर्शनों के लिए जाएंगे।
2: जी बेहतर।
1: क्यों यूसुफ साहब, क्या क्या बातें हुई? शुरू शुरू में आप उसकी बातें चटखारे ले लेकर सुन रहे थे, लेकिन बाद में यकायक संजीदा हो गए।
2: हाँ बात ही संजीदगी की थी।
1: वो तो थी मगर आप जाने किन ख्यालों में खो गए। मुझे लगा जैसे उसने आपकी कोई दुखती रग छेड़ी हो। यूसुफ साहब आप चुप क्यों है, बात क्या है?
2: क्या आपने मुझसे कुछ कहा?
1: जी नहीं, उस राजकुमार से कहा जिसका जिक्र मेरा दोस्त हर बैग खत्म करने के बाद करता था। क्यों यूसुफ साहब, ये राजकुमार आखिर

0: कौन है
1: जी? वो छोड़ो मनोहर भाई,
0: हाँ?
1: चलो यहां से चलते हैं।
0: मगर ठहरो, अभी लाल बत्ती जल रही।
2: हाँ, मेरी एक बात गिरा बांध कर रखें, अगर आप लाल बत्ती हरी बत्ती के चक्कर में रहेंगे तो कभी सड़क पार नहीं कर पाएंगे।
3: यूसुफ मियां, ये तुम्हें क्या हो गया है? कुछ बोलते क्यों नहीं है? आखिर बात क्या है? जुबान पर मोहर और मुंह पर ताला किसने लगाया है? अरे भाई, मैंने मुंह खोलने को कहा और तुमने अपना ब्रीफकेस खोल दिया। क्या है इसमें?
1: लीजिए, पढ़ लीजिए।
3: जो दवा के नाम पे जहर दे। अरे भाई, ये कोई फिल्मी कबाली है या अखबारी मजमून?
1: पढ़ते जाइए।
3: अच्छा। वाह, शाबाश, तो तुमने नकली दवाइयों के स्कैंडल का पर्दाफाश कर ही दिया। अब इन मौत के सौदागरों को लोगों के कहर से कोई भी बचा नहीं पाएगा, क्योंकि दिलगीर का नक्कारा ही आवाज खल्क है और आवाज खल्क को ही नक्कारे खुदा कहा गया है। अब अगर तुम मन महसूस कर क्यों बैठे हो? अगर किसी और ने ये रिपोर्ट तैयार की होती तो वो चहकता होता है, उसके पांव जमीन पर नहीं आसमान पर होते। क्या तुम्हारा कोई अपना इस कारोबार में तो नहीं है?
1: अफसोस तो यही है दिलगीर साहब के है।
3: याद रखो यूसुफ, जो आदमी इंसानियत का दुश्मन हो वो किसी का अपना नहीं हो सकता, ना मेरा और ना ही तुम्हारा, भले ही उसके साथ तुम्हारा दोस्ती का रिश्ता हो या खून का। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है? हा? इस ब्रीफकेस में और क्या है?
1: अब तो ये खाली है।
3: तो इधर लाओ, तुम्हारी ये रिपोर्ट एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। मैं नहीं चाहता कि इसकी किताबत इसी दफ्तर में हो। मैं इसी ब्रीफकेस में बंद करके इसे यहां से ले जाऊंगा और बाहर किसी मोतबिर कातिब से लिखवाऊंगा। ले जाऊं?
1: ले जाइए, यह भी कोई पूछने की बात है?
3: मालूम नहीं तुम्हारी बोलती आज बंद क्यों हो गई है, मगर तुम बोलो या ना बोलो, इस ब्रीफ केस में बंद तुम्हारी तहरीर जरूर बोलेगी। जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का।
1: आज आपने लहू पर ही दोनों शेर फरमाए। ऐसा क्यों?
3: क्योंकि तुम्हारी रिपोर्ट ने मेरा भी लहू गरमा दिया है।

0: क्या बकते हो यूसुफ, होश में हो?
1: तुम्हें कैसा लगता है?
2: मुझे तुम इडियट लगते हो, पहले भी लगते थे और आज भी लगते हो।
1: मगर प्रिंस, मैं नहीं जानता कि मैं आज इडियट बना हूं या पहले इडियट था, मगर इतना जरूर है कि अगर पहले था तो आज नहीं हूं, और अगर आज हूं तो पहले नहीं था।
2: फिर बकने लगे। भाई कम से कम तब तक यहां रहो जब तक इस शहर में हो। नजमा, तुम इसे समझाती क्यों नहीं?
3: भाईजान, आपका फरमाना दुरुस्त था, मगर आपकी मेहरबानी से हमारा इसी हफ्ते काम शुरू करने का इरादा है। बस एक दो दिन के अंदर अंदर मटेरियल भी साइट पर पहुंच जाएगा, इसलिए हमने पास ही दो कमरे किराए पर लिए हैं, और जितनी जल्दी हम शिफ्ट करेंगे उतना हमारा ही फायदा होगा।
2: फायदा तो यहां रहने में है, वहां किराया देना पड़ेगा।
1: उसकी भी कोई परेशानी नहीं होगी प्रिंस, मैं खाली वक्त में दवाइयां बेच लिया करूंगा, खासकर इन चार कंपनियों की दवाइयां।
2: व्हाट डू यू मीन?
1: आई मीन व्हाट यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड।
3: ओफो, लेकिन मैं कुछ नहीं समझी कि तुम लोग लड़ रहे हो या आपस में मजाक कर रहे हो।
2: यूसुफ,
1: प्रिंस, मेरी जहनी कैफियत को समझने की कोशिश करो। मुझे जो सदमा हुआ है उसने मुझे अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया है। मैं नहीं जानता था कि जिसका जहर दुनिया की रग रग में पैवस्त हो चुका है वो मेरा अपना ही फोड़ा था।
3: ओफो, मैं कुछ नहीं समझी, फोड़ा कहाँ निकला है, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम।

0: देखा तुम्हारी बीवी कितनी मासूम और सीधी है। कम से कम इसी का ख्याल करके फोड़े को मत छेड़ो। दुनिया को भाड़ में जाने दो, अपने फायदे की कोई बात सोचो।
1: अपने फायदे की बात इन्होंने कब सोची है जो अब सोचेंगे?
0: बोलो अब तुम्हारा क्या फैसला है?
2: मैंने फोड़े को नश्तर लगाने का फैसला कर लिया है।
0: नश्तर लगाओगे? नस्तर लगाओगे? मैंने 30,000 में तुम्हारा नस्तर खरीद लिया है। अच्छा मैं चलता हूं, सी यू बाय।
2: तो ये बात है?
1: ओफो, क्या बात है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
2: 30,000 में मेरा नश्तर खरीद लिया है।
1: मैं पूछती हूँ कि प्रिंस इस तरह क्यों चला गया?
2: सुनना चाहती हो कि क्यों चला गया? तो सुनो, मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है।
1: आग लगे तुम्हारी रिपोर्टों को। मुझे बताओ तो सही कि बात क्या है।
2: रिपोर्ट नकली दवाओं के रैकेट के बारे में थी, उन्हीं नकली दवाओं के बारे में जिनकी वजह से तुम मौत के मुंह में पहुंच गई थी।
1: ओफो,
2: काफी छानबीन करने के बाद मैं उस रैकेट के सरगने का पता लगाने में कामयाब हो गया था।
1: सुनो, मुझे ये फिजूल की बातें नहीं सुननी है। मैं पूछती
2: हूँ, जानना चाहोगी कि वह सरगना कौन है?
1: देखो, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि तुमने प्रिंस से क्या कहा जब वो उठकर चला गया।
2: वो सरगना और कोई नहीं बल्कि प्रिंस ही है।
1: क्या क्या कहा तुमने? और तुमने प्रिंस के खिलाफ ही अखबार में लिखा है?
2: लिखा है, मगर छपेगा अगले हफ्ते।
1: ओ, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने एहसान फरामोश हो। अगर प्रिंस ने अपने मकान में हमें पनाह नहीं दी होती तो हम कहीं फुटपाथ पर पड़े होते। और जानते हो ना, कुछ दिन पहले उसने तुम्हें 30,000 रुपए दिए थे।
2: इसीलिए तो कह रहा था ना कि उसने मुझे 30,000 रुपए में खरीद लिया है।
1: बिल्कुल खरीद लिया है। जानते हो 30,000 कितने होते हैं? तुम्हारी पूरे साल की तनख्वाह से भी बड़ी रकम है। जाओ उसे ढूंढो और जहां भी मिले उससे माफी मांगो।
2: माफी? हो हाँ हाँ, मुझे माफी मांगनी ही पड़ेगी, मगर उससे नहीं, तुमसे।
1: मुझसे?
2: हाँ, मैंने कुछ और ही सोचा था, मगर अब मेरा शक दूर हो गया है नजमा। मैं वाकई अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। मेरा शक था कि प्रिंस तुम्हारी वजह से मुझ पर इतने एहसान कर रहा है।
1: यूसुफ,
2: मेरा दोस्त वो बस नाम का ही है, असल में वो तुम्हारा यार है।
1: यूसुफ,
2: इसीलिए उसने 30,000 रुपए का चेक तुम्हारे ही नाम से काटा।
1: यूसुफ, यू डेविल।
2: नजमा, नजमा, ये तुम्हें क्या हो गया नजमा? अपने आप को संभालो नजमा।
1: ठीक हूँ, मुझे हाथ मत लगाओ। वो चेक मैंने अकाउंट में सिर्फ जमा कराया है, मगर अभी उसमें से एक पैसा भी नहीं निकाला। मैं अभी 30,000 का चेक काटती हूँ, तुम उसे वापस कर दो।
2: ठीक है, तुम चेक लिख लो, जब वो आएगा तो लौटा देंगे।
1: तुम समझते हो मैं अब यहाँ और रहूंगी? मैं अभी इसी वक्त ये घर खाली करूंगी।
2: एक दो दिन तक हम यहाँ से शिफ्ट करने ही वाले हैं।
1: मैं कहती हूँ, अगर अभी इसी वक्त मुझे यहाँ से नहीं ले चलोगे ना, तो मैं गले में फांसी का फंदा डालकर जान दे दूंगी।
2: अचमत, ठीक है, मैं अभी कोई ना कोई इंतजाम करता हूँ।
3: सलाम वालेकुम दिलगीर साहब, मैं यूसुफ बोल रहा हूँ। जी, ऐसा है कि हमारे दफ्तर के पिछवाड़े एक ट्रक वाला है ना, वही जो सामान ढोने का काम करता है। जी, मुझे नहीं मालूम, हाँ शायद यही नाम हो। हाँ हाँ, कबाड़ी के बिल्कुल साथ। जी, उससे एक ट्रक भेजने को कह दीजिए। जी जी हाँ, आज ही नहीं बल्कि अभी। नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं, नहीं हमने सोचा कि शिफ्ट करना ही है तो जितनी जल्दी करें उतना ही बेहतर होगा। सामान है ही कितना दिलगीर साहब। जी हाँ, छोटा ट्रक ही ठीक रहेगा। तो हम अपना सामान पैक करना शुरू करें? बहुत बहुत शुक्रिया। आओ नजमा, जब तक ट्रक आए तब तक हम अपना सामान बांध लें।
1: मैं कहती हूँ, मुझे हाथ मत लगाओ। मैं नहीं जानती तुम इतना गिर सकते हो।

0: तो आप ही हैं दिलगीर साहब, नकारे के मुदीर आला, निडर और बेबाक सहाफी।
1: आपकी जरा नवाजी है। वैसे लगता है यूसुफ साहब ने आपके सामने मेरी जरूरत से कुछ ज्यादा ही तारीफ की है। अब इत्तेफाक देखिए, मैं यूसुफ साहब से मिलने आया था, मगर मुलाकात हो गई उनके लैंडलॉर्ड, उनके दोस्त, उनके मोहसिन प्रिंस साहब से।
0: तो आपको हमारा ये नाम भी मालूम है।
1: अखबार नवीसों का काम ही बदनाम, गुमनाम और बेनाम लोगों को उनके सही नाम देना होता है। लेकिन अब तो माशाल्लाह पहले ही काफी नामवर हैं। खैर, ये बताइए कि यूसुफ साहब कहाँ हैं? मुझे उनसे एक जरूरी काम है।
0: वो यहाँ से चले गए हैं।
1: उनकी बेगम तो घर में होंगी?
0: नहीं, दोनों यहाँ से चले गए हमेशा के लिए।
1: मतलब उन्होंने शिफ्ट कर लिया है? मुझसे तो कहा था कि 3-4 दिन के बाद शिफ्ट करेंगे। खैर, मैं उन्हें उनका ब्रीफ केस वापस करने आया था। वो इसी ब्रीफ केस में एक रिपोर्ट लेकर आए थे जो नक्कारे के अगले शुमारे में छपेगी। अच्छा, इजाजत दीजिए, अब चलता हूँ।
0: खुदा हाफिज।
1: मगर हुजूर, आपने ये नहीं पूछा कि रिपोर्ट किस चीज के बारे में थी?
0: नकली दवाओं के रैकेट के बारे में।
1: वल्ला, इसे कहते हैं नजर। लिफाफा देख कर ही खत का मजमून, मेरा मतलब है ब्रीफ केस देख कर ही रिपोर्ट का मजमून भाप लिया।
0: रिपोर्ट कैसी बनी है?
1: अरे हुजूर, यूसुफ साहब की कलम के क्या कहने, वो शमशीर की धार से भी तेज है। दिल करता है कि उसके हाथ चूम लूं और अगर कुफ्र न गिना जाए तो उसके कदमों का सजदा करूं। उस नक्श पा के सजदे ने क्या क्या किया जलील, मैं कूचे रकीब में भी सर के बल गया।
0: ये शायरी है तो खूब है, मगर नसर में भी कोई बात कीजिए।
1: अगर आप नसर का कमाल देखना चाहते हैं तो यूसुफ साहब की रिपोर्ट पढ़िए। इसे ही कहेंगे नसर, जो नज्म से भी ज्यादा खूबसूरत है।
0: कीमत क्या है?
1: नक्कारे के एक पर्चे की कीमत वैसे तो 3 रुपए है, मगर यूसुफ साहब का मजमून वो तो पेश कीमत है। लेकिन आप तो खुद कदर शनास हैं। खैर, अब मैं चलता हूं। ये ब्रीफ केस वापिस ले जाऊं या यहीं आपके पास छोड़ जाऊं, ताकि आप ही यूसुफ साहब को वापस करें? मतलब है जब वो आपसे मिले।
0: छोड़ जाइए यहीं, या जैसा आप मुनासिब समझें।
1: अब आपसे क्या छुपाना, और मुझे बिना ब्रीफ केस हाथ में लिए चलना ही नहीं आता। ये एक तरह से मेरे लिबास का जुज बन गया है।
0: नो प्रॉब्लम। इस ब्रीफ केस के बदले हम आपको दूसरा ब्रीफ केस दे सकते हैं।
1: बखुदा, इसे कहते हैं नजर। नजर ही नहीं, नजर उकाब। तो लीजिए हुजूर, संभालिए यूसुफ साहब का ब्रीफ केस।
0: आप भी ठहरिए, मैं अंदर से दूसरा ब्रीफ केस लेकर आता हूं।
1: ले आइए, मुझे भी कौन सी जल्दी है। मेरे नामुराद जुनून का अब इलाज कोई तो मौत है, जो दवा के नाम पे जहर दे उस चारागर की तलाश है।
0: ये लीजिए, ये रहा आपका नया ब्रीफ केस।
1: शुक्रिया, अब मैं चलता हूं।
0: बैठिए, कोई चाय कॉफी?
1: ला हौले वला कुव्वत, आपने हमें बस चाय कॉफी के काबिल समझा है।
0: वो इसलिए दिलगीर साहब कि हम आपको परहेजगार समझते हैं।
1: हाँ, परहेजगार हम जरूर हैं, हमने बेशक तौबा की है, मगर बकौले गालिब, गर हमने की थी तौबा, साकी को क्या हुआ था। खैर, इस वक्त चलता हूं। आदाब,
0: खुदा हाफिज। और हाँ, अगर यूसुफ साहब या कोई और साहब कोई और वलवला अंगेज रिपोर्ट लिखें तो छापने से पहले हमें भी इससे लुत्फ अंदोज होने दीजिए।

0: भाई कहा ना, तुम्हारी रिपोर्ट भी छप जाएगी।
1: मगर कब दिलगीर साहब?
0: ये मैं कैसे कह सकता हूँ, इन मामलों में ताखीर तो होती ही रहती है।
1: ताखीर की वजह कोई खौफ तो नहीं, कोई मसलहत तो नहीं?
0: खौफ या मसलहत नहीं, जिम्मेदारी का एहसास ही ताखीर की वजह है। हम अखबार वालों को कोई सनसनी खेज मवाद छापने से पहले उसके हर पहलू पर हर जाविये से गौर करना चाहिए।
1: मेरे ख्याल में अखबार वालों को चाहिए कि वो जहर को जहर ही कहें, उसे गंद ना कहें, उससे चाहे अपने नाराज हो या पराए। मैं परवरदिगार से यही मांगता हूं कि वो मुझे आखिरी दम तक सच बोलने की तौफीक दे।
0: सच बोलने की तौफीक? ना बाबा ना, मैं खुदा से यही दुआ मांगूंगा कि हश्र के दिन सच कहने की तौफीक ना दे, कोई हंगामा बपा हो मुझे मंजूर नहीं।
1: ये शेरो शायरी मैं बहुत सुन चुका हूं दिलगीर साहब, मुझे ये बताइए कि मेरी रिपोर्ट आप कब छाप रहे हैं?
0: बहुत ताव खा रहे हो तो फिर सुन लो, तुम मेरे मुलाजिम हो और मैं तुम्हारा मालिक। मैं तुम्हें हर महीने तनख्वाह देता हूं जिसके इवज तुम मेरे अखबार के लिए रिपोर्ट तैयार करते हो। तुम इस महीने की तनख्वाह ले चुके हो, यानी मैंने तुम्हारी रिपोर्ट मुआवजा देकर खरीद ली है। अब ये मेरी मर्जी पर मुनसर है कि मैं उसे शाये करूं या जाये करूं, तुम्हें इससे कोई गरज नहीं। बाकी रहा तुम्हारा ब्रीफकेस, न जाने मैं उसे कहां भूल आया हूं, मगर मैं तुम्हें उसकी कीमत अदा करूंगा। ये लो
1: इतने सारे नोट, लेकिन मैंने उसे सिर्फ 250 में खरीदा था।
0: खोई हुई चीज के लिए उससे 10-20 गुना ज्यादा कीमत तो देनी ही होती है।
1: दिलगीर साहब, मुझे ना तो वो ब्रीफ केस चाहिए और ना ही आपका ये नोट।
0: कमाल है, तो फिर क्या चाहिए?
1: रुख्सत। मुझे रुख्सत दीजिए। खुदा हाफिज़।
2: अरे यूसुफ साहब, आइए आइए। क़िबला, पान खाएंगे आप?
1: जी नहीं शुक्रिया, ना तो मैं पान खाता हूँ और ना ही बीड़ी सिगरेट पीता हूँ।
2: हाँ भाई, आप तो अच्छे बच्चे हैं, आप झूठ भी नहीं बोलते हैं, हरी बत्ती जलने पर ही सड़क पार करते हैं, मगर फिर भी आप दुखी हैं।
1: क्यों, क्या मैं आपको दुखी लगता हूँ?
2: भाई कम से कम इस वक्त तो जरूर लगते हैं। यूसुफ साहब जरा गौर कीजिए, जब सभी रॉन्ग साइड पर चलते हो तब आप राइट साइड पर चलने की बेवकूफी क्यों करते हैं? चलिए चलिए, जल्दी कीजिए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए।
1: मनोहर भाई, आप बेशक मेरे दोस्त हैं, मगर मुझसे ये उम्मीद ना रखें कि मैं आपका हाथ थाम कर चलूंगा, और वो भी लाल बत्ती को ठेंगा दिखाकर सड़क पार करने के लिए। यकीन मानिए, मैं किसी का हाथ पकड़कर चलने में यकीन नहीं रखता हूँ।
2: यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग हैं यूसुफ साहब, मुझे उस स्टॉप से बस मिलेगी और आप शायद सीधे जाएंगे। अच्छा, आदाब साहब।
1: आदाब।
3: इतनी देर तक कहाँ रहे? मैं बहुत परेशान थी।
1: मैं मशकूर हूं कि तुम मेरे लिए परेशान थी।
3: मैं तुमसे माफी मांगती हूँ।
1: माफी किस बात के लिए?
3: तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया।
1: मतलब कि मैंने प्रिंस के खिलाफ लिखकर बहुत अच्छा किया?
3: वो मैं नहीं जानती कि रिपोर्ट लिखकर तुमने ठीक किया या गलत, मगर प्रिंस का घर छोड़कर, उसके रुपए लौटाकर, उसके गोरख धंधे से अपने को अलग करके हमने बहुत अच्छा किया।
1: नजमा, मैंने अपने आप को दिलगीर के चक्कर से भी आजाद करा लिया।
3: क्या क्या क्या तुमने नक्कारी की नौकरी छोड़ दी है?
1: यही समझो।
3: मगर क्यों?
1: और कोई रास्ता मेरे सामने नहीं था।
3: हमने हमेशा गलत आदमियों का सहारा लिया।
1: हाँ शायद।
4: यूसुफ साहब।
1: अरे नसीर अहमद भाई, आ जाओ आ जाओ।
4: अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब।
1: वालेकुम अस्सलाम। पहले ये बताइए, आपको मेरा ये नया पता कहां से मिला?

0: स्टेज पर रख दिया और मैं दिलगीर साहब और इनके बीच हुई तेज कलामी से वाकिफ था ही। मुझे लगा दिलगीर साहब जरूर लिफाफा खोलकर अंदर का खत पढ़ेंगे और मैं उनकी इस बुरी आदत से भी वाकिफ था, इसलिए मैंने मेज से यूसुफ साहब का खत उठाकर चुपके से अपनी जेब में रखा और ये रहा वो लिफाफा।
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: अच्छा मुझे इजाजत दीजिए।
2: क्या लिखा है खत में?
3: खोही साहब एक नया अखबार निकाल रहे हैं, ये खत उन्होंने ही लिखा है। वो चाहते हैं कि मैं उनके अखबार का काम संभाल लूं।
2: सच?
3: हाँ, पूछा है कि मैं कितनी तनख्वाह पर काम करूंगा और मेरी शर्तें क्या होंगी।
2: अल्लाह का लाख लाख शुक्र, किसी ने सच कहा है। अगर एक दरवाजा बंद हो जाता है तो 100 दरवाजे खुल भी जाते हैं।
3: अब तो खुश हो गई ना?
2: क्यों, तुम खुश नहीं हुए?
3: हुआ तो सही, मगर किसी दूसरी वजह से।
2: क्या मतलब?
3: नजमा, मैं इसलिए खुश हूं कि ये दुनिया मेरे सगे भाइयों या फिर प्रिंस दिलगीर और मनोहर तक ही महदूद नहीं है। ये दुनिया बहुत वसी है और यहां नसीर अहमद भी रहता है, जो कोई जाती गरज या मतलब ना होने पर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता है। वो नकारा नहीं पीटता है, दस्तक देता है। नजमा, मैं सचमुच बहुत खुश हूं, बहुत खुश, क्योंकि इस दुनिया में मैं अकेला नहीं हूं। नजमा, अकेला नहीं हूं।
4: नकारा, अभी आप सुन रहे थे जनाब हरी कृष्ण कौल के तहरीर करदा इस ड्रामे का दूसरा और आखिरी हिस्सा। तरतीब पेशकश प्रेम वोरा की थी। हिस्सा लेने वाले फनकार थे सतीश महाजन, प्रिंस अभय भार्गव। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी हैं। दिन के 12 बजे चाहते हैं अब खबरें नशर की जाएंगी।
5: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप फैसल खान से खबरें सुनी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की अपनी हमनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा भारत मगरबी एशिया यूरोपीय इकतसादी कॉरिडोर के बारे में ताउन बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे और 2025 से 2029 तक के मुश्तरका कलीदी अमली मनसूबे का जायजा लेंगे। भारत ने जिनेवा में 79वें आलमी सेहत असम्बली में सभी लोगों को हिफ्जान सेहत के दायरे में लाने, डिजिटल हेल्थ इख्तरा और आलमी सेहत यगानगत के तई अपने अहद का यादा किया है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो इस महीने की 23 तारीख से भारत का 4 दिन का दौरा करेंगे। और IPL क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह आज इटली की अपनी हमनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत के मुंतजिर हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस मीटिंग में भारत इटली ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि रोम में पहुंचने के बाद उन्हें डिनर पर वजीर आजम मेलोनी से मुलाकात करने और तारीखी कोलिजियम जाने का मौका मिला। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मौजूआत पर अपना अपना नुक्ते नज़र पेश किया। वजीर आजम ने मजीद कहा कि आज की बातचीत में भारत इटली दोस्ती को फरोग देने पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक और सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कल शाम रोम में गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल करने पर इटली में रहने वाले भारतीय बिरादरी के लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये भी कहा कि बैरून मुल्क आबाद भारतीय बिरादरी के लोग दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली के अपने पहले बाहमी दौरे पर कल रात रोम पहुंचे, जहां वो अहम शोबों में मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत करेंगे। इनमें तिजारत, दिफा, मोबिलिटी, बहरी सिक्योरिटी, बंदरगाहों से मुतालिक इश्तराक और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई शामिल हैं। इटली के वजीर खारजा एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर जनाब मोदी का इस्तकबाल किया। बाद में इटली की वजीर आजम मेलोनी ने जनाब मोदी के एजाज में एक जियाफत का एहतमाम किया। इसके बाद जनाब मोदी अंतारा प्लाजो नियादा होटल पहुंचे, जहां भारत निजाद अफराद ने खुशी का इजहार करते हुए गर्मजोशी और पुरतपाक अंदाज से जन...

प्रेम रतन धन पायो, इस फिल्म का नगमा सुन रहे थे मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुछाल की आवाज़ों में। नगमा निगार थे इरशाद कामिल, मौसीकी हिमेश रेशमिया की थी। और लीजिए सुनिए अंकित तिवारी का गाया हुआ ये नगमा।

लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल और जुबीन नौटियाल का गाया हुआ नगमा। फिल्म है किस किस को प्यार करूं। नगमा निगार अमजद नदीम, मौसीकी जावेद मोहसिन की।

0: मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। सामिन, ये प्रोग्राम अभी जारी है। आइए पहले सुनते हैं तारीख साज प्रोग्राम। मौजू है क्रिस्टोफर कोलंबस।
1: अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तारीख बहुत पुरानी है। हिंदुस्तान एशिया में जिस जगह वाकई है, जोग्राफियाई एतबार से उसकी बड़ी अहमियत है। उसके एक जानिब सरहद पर हिमालयाई पहाड़ हैं, तो दूसरी जानिब बहरे हिंद के नाम से मारूफ वसी और अरीज समुंदर है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में बेशुमार नदियां, पहाड़, मैदान और रेगिस्तानी इलाके हैं, जहां पर ज़रात के साथ साथ मादनियात का बहुत बड़ा ज़खीरा है। इन्हीं खसूसियात की वजह से सरजमीन हिंद को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हिंदुस्तान की शोहरत ने आलमी सतह पर कौमों को मुतासिर किया। नतीजे के तौर पर मुगल बादशाह हों या अंग्रेज हुक्मरान, बैरूनी ममालिक से काफले दर काफले यहां आते रहे और यहां के कुदरती वसायल से फैज हासिल करते रहे। क्रिस्टोफर कोलंबस के जरिए हिंदुस्तान की तलाश की कोशिश भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज हम जिस तारीख साज शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस है। क्रिस्टोफर कोलंबस एक बहरी मुहिमजू था जो 1451 ईस्वी में इटली की बंदरगाह जनेवा में पैदा हुआ। बचपन ही से जहाजरानी के किस्से और कहानियों ने उसके दिल में जहाज पर सफर करने और नए नए ममालिक देखने का शौक पैदा किया। इसी शौक में क्रिस्टोफर कोलंबस ने जहाज पर मुलाजमत अख्तियार कर ली। 20 बरस की उम्र में कोलंबस ने इटली को खैरबाद कहा और पुर्तगाल में सुकूनत अख्तियार कर ली। ये वो जमाना था जब हिंदुस्तान की दौलत और खुशहाली की शोहरत पूरी दुनिया में आम हो चुकी थी। हर कोई हिंदुस्तान जाने का ख्वाहिशमंद था, मगर हिंदुस्तान पहुंचने का समुद्री रास्ता किसी को मालूम नहीं था। कोलंबस को भी हिंदुस्तान की तलाश थी। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि हिंदुस्तान मशरिकी सिमत में है। कोलंबस ने हिंदुस्तान जाने का पुख्ता इरादा कर लिया, मगर इस तवील सफर के लिए मल्लाह, जहाज और जरूरी सामान हासिल करना कोलंबस के बस की बात न थी। पुर्तगाल का बादशाह उस जमाने में इस किस्म की मुहिमजोइयों की सरपरस्ती करता था। कोलंबस ने उससे मदद मांगी, मगर कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिला। मायूस होकर वो पुर्तगाल से स्पेन चला गया और वहां के हुक्मरान से मदद चाही। नतीजे के तौर पर हस्पानिया के बादशाह और उसकी मलिका इजाबेला क्रिस्टोफर कोलंबस की मदद के लिए आमादा हो गए। स्पेन की मलका ने कोलंबस को 3 छोटे जहाज और मल्लाह दिए। इसके अलावा रास्ते के अखराजात के लिए रकम भी फराहम की। क्रिस्टोफर कोलंबस अगस्त 1492 ईस्वी में हिंदुस्तान की तलाश का शौक लेकर स्पेन से रवाना हुआ। उसका ख्याल था कि बहरे उकियानूस में मगरिब की समत सफर करने से मशरकी एशिया तक बहरी रास्ता दरियाफ्त किया जा सकता है। दौरान सफर कोलंबस का पहला कयाम अफ्रीका के साहिली जजीरों पर हुआ। 6 सितंबर को कोलंबस जजीरों से मगरिब की तरफ रवाना हुआ। हालांकि मुहिमजुई का ये सफर बहुत तवील और दुश्वार था, जबकि क्रिस्टोफर कोलंबस की मंजिल हिंदुस्तान थी, मगर नामालूम रास्ते की जानिब रवा थी। सतह समुंदर पर चलते चलते कोलंबस और उसके कारवां को तवील अरसा गुजर गया था, मगर खुश्की का कहीं नामो निशान नहीं था। मौसम की खराबियों और जबरदस्त तूफानों ने बुरा हाल कर रखा था। काफले में शामिल अफराद और सारे मल्लाह मायूस हो चुके थे। इस मुश्किल घड़ी में कोलंबस अपने साथियों को तसल्ली देता रहा और उनके हौसले बुलंद करता रहा, यहाँ तक कि वो एक जजीरे पर पहुंच गए। इस कामयाबी को कोलंबस ने अपनी मंजिल तसव्वुर कर लिया और वो ये समझा कि शायद हम बर्रे सगीर के किसी मगरबी जजीरे में पहुंच गए हैं। इन जजीरों को उसने गरबुल हिंद का नाम दिया। जहाज से उतरकर कोलंबस ने खुशी से सरशार होकर वहां की जमीन को बोसा दिया और इस जगह का नाम सेंटियागो रखा। कोलंबस ने यहाँ के लोगों का नाम रेड इंडियन रखा, क्योंकि यहाँ के लोगों का रंग तांबे की तरह था और अपने ख्याल के मुताबिक वो इंडियन यानी हिंदी समझता था। कोलंबस अपने इस ख्याल पर मुसिर था कि उसने मशरकी एशिया का बहरी रास्ता खोज दिया है, जबकि तवील अरसे तक बेशतर लोगों ने इसका यकीन नहीं किया। फिर भी कोलंबस की फातिहाना दरियाफ्त पर स्पेन की मलिका और अवाम बहुत खुश थे। स्पेन की मलिका इजाबेला ने कोलंबस को बहरी सफर पर रवाना होने से पहले एक वादा ये भी किया था कि कोलंबस जिस जजीरे को भी दरियाफ्त करेगा, उसे उसका गवर्नर बना दिया जाएगा। चुनाचे मलिका ने अपने वादे के मुताबिक कोलंबस को गवर्नर के ओहदे से सरफराज किया, लेकिन कोलंबस बतौर मुंतजिम आला इस ओहदे का अहल न हो सका, जिसकी वजह से मलका इजाबेला ने कोलंबस को गवर्नर के ओहदे से सुबकदोश कर दिया। कोलंबस के बारे में ये अफवाह बेबुनियाद है कि जिंदगी के आखिरी दौर में वो कसमपुरसी की हालत में चल बसा, बल्कि सच्चाई तो ये है कि 1506 ईस्वी में अपनी मौत से कबल कोलंबस काफी दौलतमंद था। اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کولمبس کے پہلے سفر نے واضح طور پر یورپی تاریخ پر انقلاب انگیز اثرات مرتب کیے اور ان سے کہیں زیادہ امریکہ پر۔ شخصی اعتبار سے جب ہم کرسٹوفر کولمبس کی ذات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کولمبس کی ذات میں ایسی خوبیاں بہت کم تھیں جو قابل ستائش ہوں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غیر معمولی طور پر حریص تھا، اس لیے اسے آج کے اخلاقی معیار پر ناپنا درست نہ ہوگا۔ ایک اور سچائی یہ ہے کہ امریکہ کے باشندوں کے ساتھ اس کا رویہ نہایت صفاکانہ تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کولمبس اسپین سے نکلا تو تھا ہندوستان کی تلاش لے کر، مگر کولمبس نے یورپ سے مشرق کی طرف بحری راستہ تلاش کرتے ہوئے اتفاقی طور پر امریکہ کو دریافت کر لیا۔ کولمبس کی اس دریافت نے نئی دنیا میں سیاحت اور کالونیاں قائم کرنے کے دور کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں یہ واقعہ تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ اس نے بڑھتی آبادی کی کھپت کے لیے دو براعظموں کے دورے کیے اور انہیں بادنیاتی دولت اور خام مواد کے ذخائر مہیا کیے، جنہوں نے یورپ کی معاشیات کو بدل کر رکھ دیا۔ مجموعی طور پر اس نے مغربی کرۂ ارض پر اقوام کا ایک نیا مجموعہ تشکیل دیا، جس کے نتیجے میں دنیا قدیم کی قوموں پر اس کے بڑے جامع اثرات مرتب ہوئے۔ کولمبس کے آخری سفر کے دو سال بعد 20 مئی 1506 کو کولمبس کا انتقال ہوا اور اسپین کے شہر میں دفنایا گیا۔ امریکہ اور یورپ میں آج بھی کولمبس کی یاد میں مجسمے آویزہ ہیں اور امریکہ میں یورپین کی آمد والے دن کو یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے۔
0: کرسٹوفر کولمبس، اس موضوع کے حوالے سے بھی آپ تاریخ ساز پروگرام سن رہے تھے، تحریر جناب اشرف کریم کی تھی اور راوی تھے ایس ایم نعمان۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، پروگرام جاری ہے ملے سر میرا تمہارا۔ اگلی پیشکش عشق کے پرندے فلم کا نغمہ، محمد عرفان اور سوانی راج کی آوازوں میں۔

0: बाजीराव मस्तानी फिल्म के इस नगमे के साथ ही मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप आसिया मेमुना से आलमी खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली के अपनी हम मनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा भारत मगरबी एशिया यूरोपीय इकतसादी कॉरिडोर के बारे में तआवुन बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल करेंगे और 2025 से 2029 तक के मुश्तरका कलीदी अमली मनसूबे का जायजा लेंगे। भारत ने जिनेवा में 79वीं आलमी सेहत असेंबली में सभी लोगों को हिफ्सान सेहत के दायरे में लाने, डिजिटल हेल्थ इख्तरा और आलमी सेहत यंगांगत के तई अपने अहद का इरादा किया है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो इस महीने की 23 तारीख से भारत का 4 दिन का दौरा करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो आज इटली की अपनी हम मनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत के मुंतजर हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की इस मीटिंग में भारत इटली ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि रोम में पहुंचने के बाद उन्हें डिनर पर वजीर आजम मेलोनी से मुलाकात करने और तारीखी कोलोसियम जाने का मौका मिला। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मौजूआत पर अपना अपना नुक्ता नजर पेश किया। वजीर आजम ने मजीद कहा कि आज की बातचीत में भारत इटली दोस्ती को फरोग देने पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक और सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कल शाम रोम में गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल करने पर इटली में रहने वाले भारतीय बिरादरी के लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये भी कहा कि बैरून मुल्क आबाद भारतीय बिरादरी के लोग दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली के अपने पहले बाहमी दौरे पर कल रात रोम पहुंचे, जहां वो अहम शोबों में मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत करेंगे। इनमें तिजारत, दिफा, मोबिलिटी, बहरी सिक्योरिटी, बंदरगाहों से मुतालिक इश्तराक और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई शामिल हैं। इटली के वजीर खारजा एंटोनियो तजानी ने हवाई अड्डे पर जनाब मोदी का इस्तकबाल किया। बाद में इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने जनाब मोदी के एजाज में एक जियाफत का एहतमाम किया। इसके बाद जनाब मोदी अनंतारा प्लाजो नियाडी होटल पहुंचे, जहां भारत निजाद अफराद ने खुशी का इजहार करते हुए गर्मजोशी और पुरतपाक अंदाज से जनाब मोदी का खैर मकदम किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी पुरजोश भारतीय बिरादरी के लोगों के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने इटली के एक आर्टिस्ट जीएम पाओलो टोमासेटी की एक पेंटिंग की नकाब कुशाई भी की, जो वाराणसी के घाटों और भारत

0: रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह राजस्थान की टीम ने प्लेऑफ मरहले में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का बड़ा निशाना महज 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया, जबकि 5 गेंदों का खेल बाकी था। उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 38 गेंदों पर तेज रफ्तार 93 रन बनाए। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की अपनी हम मनसब जॉर्जिया मिलोनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा भारत मगरबी एशिया यूरोपीय इकतसादी कॉरिडोर के बारे में तआवुन बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे और 2025 से 2029 तक के मुश्तरका कलीदी अमली मनसूबे का जायजा लेंगे। भारत ने जिनेवा में 79वीं आलमी सेहत असेंबली में सभी लोगों को हिफ्जान सेहत के दायरे में लाने, डिजिटल हेल्थ इख्तरा और आलमी सेहत यकांगत के तई अपने अहद का इरादा किया है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो इस महीने की 23 तारीख से भारत का 4 दिन का दौरा करेंगे और आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की अपनी हम मनसब जॉर्जिया मिलोनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा भारत मगरबी एशिया यूरोपीय इकतसादी कॉरिडोर के बारे में तआवुन बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल करेंगे और 2025 से 2029 तक के मुश्तरका कलीदी अमली मनसूबे का जायज़ा लेंगे। भारत ने जिनेवा में 79वीं आलमी सेहत असम्बली में सभी लोगों को हिफ्जान सेहत के दायरे में लाने, डिजिटल हेल्थ इख्तरा और आलमी सेहत यगानगत के तहत अपने अहद का अदा किया है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो इस महीने की 23 तारीख से भारत का 4 दिन का दौरा करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी पहली मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। सपहर 3 बजे आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।

दोस्तों, फिल्म इज्जत का निर्देशन किया था मशहूर निर्देशक टी प्रकाश राव ने। फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी धर्मेंद्र, तनुजा और जयललिता ने। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीतों की रचना की थी साहिर लुधियानवी साहब ने। यही वजह थी कि लक्ष्मी प्यारे और साहिर की जोड़ी से फिल्म का संगीत भी बेहद लोकप्रिय हुआ। आपको ये भी बता दें कि फिल्म दक्षिण भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री और राजनेता जयललिता की एकमात्र हिंदी फिल्म होने के लिए जानी जाती है। उन पर फिल्माया गीत भी काफ़ी प्रसिद्ध रहा था।

दोस्तों, फिल्म का सबसे मशहूर गीत था ये दिल तुम बिन लगता नहीं, जिसे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ दी। ये गीत आज भी रेडियो श्रोताओं की पसंद बना हुआ है। इसके अलावा फिल्म के गीतों में साहिर लुधियानवी की शायरी दिल को छू लेती है। गीतों में एक तरफ जहां शरारत, नोकझोंक और प्यार के एहसास हैं, वहीं दूसरी तरफ दर्द और संवेदना का एहसास भी मिलता है।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अर्चना गोयल, और हमारी आज की फिल्म है इज्जत। दोस्तों, फिल्म की कहानी समाज में ऊंच नीच और इंसान की असली इज्जत के अर्थ को समझाती है। धर्मेंद्र ने फिल्म में एक आदिवासी गरीब युवक का किरदार निभाया। वो सीधा साधा, ईमानदार और दिल का साफ इंसान होता है, लेकिन समाज उसे उसकी जाति और हैसियत की वजह से कमतर समझता है। दूसरी तरफ तनुजा का किरदार पढ़ा लिखा और सभ्य परिवार से जुड़ा होता है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपता है, लेकिन समाज इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करता। फिल्म यही एक बड़ा सवाल उठाती है कि क्या इंसान की पहचान उसकी जाति और हैसियत से होती है या उसके चरित्र और इंसानियत से। कहानी आगे बढ़ती है और कई भावनात्मक मोड़ आते हैं। गलतफहमियां, संघर्ष और समाज की कठोर सोच दोनों प्रेमियों की राह मुश्किल बना देती है, लेकिन अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्ची इज्जत इंसान के कर्मों से होती है।

इस खूबसूरत गीत के बाद अब बढ़ते हैं आपके मेल्स की तरफ। ये मेल हमें मिला है सुनील पाठक, कमल पाठक, गाव्या मल्होत्रा का अनारकली बाज़ार जगराओं से, और इनको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। और अब बढ़ते हैं दूसरे मैसेज की तरफ। ये मैसेज हमें मिला है गांव खाड़ी खेड़ा ज़िला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा ने। आप हैं मांगेराम सतौर चौधरी बास हरियाणा से, नागर कोहरा ज़िला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबीज आराध्या साहू, राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, प्रियांशी चौधरीवास हिसार से, और आप हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार। पंकज शर्मा जी हमें अपना मैसेज भेज रहे हैं मॉडल टाउन करनाल से। आपके साथ है सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, प्रजापति और प्रतिभा शर्मा। आप हैं पिरम गांव जंक्शन से अजीत भावसार, प्रमिला बेन भावसार, छत्तीसगढ़ पराली से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, और आप हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मंगवेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफ रीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलुफर फातिमा और उनके परिवार के सभी लोग। वर्किंग वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक। आप हैं कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा, रिमझिम गुप्ता पीपरिया से, और संदीप मक्कड़ जी हमें भेज रहे हैं अपना मैसेज जालंधर से। आपके साथ है ज्योति मक्कड़, मन्नत, भारत मक्कड़ और कमल साहनी पिंगा वाले चौक से, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। आप हैं फाजिलका पंजाब खेड़ा परिवार से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाडी खेड़ा, शालिनी देवांशी, वाणी खेड़ा, आरबीजे खेड़ा, जीवन सिंह बूक और उनके परिवार के सभी लोग। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी। आप हैं सुदर्शन मुखी जी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से। आप हैं जलालाबाद वैसे पूनम गगनेजा और सुरेश गगनेजा। बबलेश पवार जी गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से अपना मैसेज भेज रहे हैं, और नलेश्वर नगर नरवील महाराज से पीएन नवाटकर, निर्मला और विशाल। कबीर रेटो श्रोता संघ से देव शंकर तामुरिया, जयदेव तामुरिया, तुषार देव और मास्टर अल कबीर। भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा और दत्रेगी से। तो आप सबके मैसेज का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कहानी सुनने के साथ साथ मैसेज भी कर रहे हैं। और बढ़ते हैं अब कहानी की ओर। दोस्तों आपको बता दें कि धर्मेंद्र का आदिवासी किरदार उस समय काफ़ी अलग माना गया था। जयललिता बाद में दक्षिण भारत की बहुत बड़ी अभिनेत्री और फिर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। फिल्म की शूटिंग प्राकृतिक स्थानों में की गई थी जिससे पर्दे पर एक अलग ही सौंदर्य दिखाई देता था। उस दौर में सामाजिक भेदभाव पर आधारित फिल्मों की संख्या कम थी, इसलिए इज्जत को एक संवेदनशील फिल्म माना गया। धर्मेंद्र को अक्सर दर्शकों ने रोमांटिक और एक्शन हीरो के रूप में देखा था, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने आदिवासी युवक की मासूमियत और दर्द को बेहद शानदार तरीके से पर्दे पर निभाया। फिल्म देखने वाले दर्शकों ने उनके अभिनय की खूब तारीफ की।

तो दोस्तों, इज्जत सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इंसानियत और बराबरी का संदेश देने वाली कहानी है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि इंसान की पहचान उसके कपड़े, पैसे या जाति से नहीं बल्कि उसके दिल और व्यवहार से होती है। इसी खूबसूरत संदेश के साथ अब मुझे यानी अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे हिंदी सिनेमा की एक और यादगार कहानी के साथ। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर 1:40 होने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी नाल गलबात करनगे। रक्षा खोज ते विकास संगठन DRDO ने अनमैंड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रसीजन गाइडेड मिसाइल की सफलतापूर्वक अंतम विकास परख की है। पंजाब पुलिस ने पंजाब अते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली विच नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले दुबई अदालत एक अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पंजाब समेत देश के बहुत सारे हिस्सों में अत की गर्मी जारी है। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता में मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स नाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के दौरे के पांचवें ते आखिरी पड़ा ते इटली पहुंच गए ने। श्री मोदी ने कहा कि वह इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी नाल अपनी मुलाकात लई उत्सुक ने। उन्होंने उम्मीद प्रगटाई कि दोहां विचकार मुख तौर ते चर्चा भारत इटली संबंधां नूं मजबूत करन ते केंद्रित रहेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचण ते उन्हां नूं प्रधानमंत्री मेलोनी नाल रात दे खाने ते मिलन दा मौका मिलिया, जिस तों बाद उन्हां ने मशहूर कैलोसियम दा दौरा कीता। उन्हां कहा कि दोवां नेतावां ने कई मुद्दयां ते विचार सांझे कीते ने। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा कि उन्हां दे दौरे दा ध्यान भारत ते इटली विचकार सहयोग नूं होर मजबूत करन ते होवेगा। गल्लबात खास तौर ते भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे ते केंद्रित होगी। उन्होंने अगे कहा कि 2025 तों 2029 की म्याद लई संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना की भी समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र के खुराक ते खेतीबाड़ी संगठन के हैडक्वार्टर का भी दौरा करेंगे। इस दौरान एक होर पोस्ट विच प्रधानमंत्री ने इटली विच कल शाम रोम विच होए निघे स्वागत लई भारतीय भाईचारे का धन्नवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत प्रति उन्हां दा डूंघा प्यार ते भारत इटली संबंधां नूं मजबूत करन प्रति उन्हां दी वचनबद्धता सचमुच शलाघायोग है। उन्हां कहा कि भारतीय भाईचारा दुनिया भर विच देश नूं माण दवा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अज सोल विच दक्षणी कोरिया दे रक्षा मंत्री आहन क्यू बाक नाल गलबात कीती। दोहां आगुआं ने खेतरी शांति स्थिरता ते तकनीकी सहयोग प्रति अपनी सांझी वचनबद्धता प्रगट कीती है। उन्हां ने भारत दक्षणी कोरिया रक्षा उद्योग अते रणनीतिक सहयोग नूं होर मजबूत करन बारे चर्चा कीती। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री सिंह ने कहा कि मीटिंग दौरान दोहां देशां ने रक्षा साइबर सहयोग नूं उत्साहित करने लई समझौतियां दा आदान प्रदान कीता। इस समझौते ते भारत के नैशनल डिफेंस कॉलेज अते कोरिया नैशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी अते संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग विचकार दस्तखत किए गए। रक्षा मंत्री ने कहा कि वह दोवां देशों विचकार विशेष रणनीतिक भाईवाली नूं मजबूत करन दी उम्मीद करदे ने। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिचरवार तों भारत के चार दिन दौरे ते होणगे। इह उन्हां दा भारत दा पहला दौरा होगा। अमरीकी विदेश विभाग ने इस दौरे की पुष्टि की है।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत इटली इक्तिसादी इश्तराक को फ़रोग देने के लिए आज रोम में इटली की अपनी हममनसब जॉर्जिया मेलोनी से बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने भारत इटली कलीदी शराकतदारी के लिए आइंदा का लाए अमल नुमाया किया है। एक मुश्तरका मजमून में उन्होंने मुख्तलिफ इक्तिसादी इकदामात को उजागर किया। दिफाई तहकीक की भारतीय तंजीम DRDO ने ठीक निशाने पर वार करने वाले ड्रोन मिसाइल V3 का कामयाब तजुर्बा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जात पर मबनी मर्दुमशुमारी के अमल के सिलसिले में मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। मुल्क के शिमाली और वस्ती हिस्सों में शदीद गर्मी जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर दर्जा हरारत 44 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया। और IPL क्रिकेट में आज ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो आज इटली की अपनी हम मनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत के मुंतजिर हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस मीटिंग में भारत इटली ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने के बाद उन्हें डिनर पर वजीर आजम मेलोनी से मुलाकात करने और तारीखी कोलेजियम जाने का मौका मिला। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मौजूआत पर अपना अपना नुक्ता नजर पेश किया। वजीर आजम ने मजीद कहा कि आज की बातचीत में भारत इटली दोस्ती को फरोग देने पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान वजीर आजम मोदी इटली की अपनी हम मनसब जॉर्जिया मेलोनी और सदर सर्गियो मटरेला के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें भारत और इटली के दरमियान तआवुन को फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम मोदी के दौरे के दौरान भारत और इटली के दरमियान तआवुन को फरोग देने, खास तौर से भारत मगरबी एशिया यूरोप इकतसादी कॉरिडोर पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मुश्तरका कलीदी अमली मंसूबे 2025 से 2029 तक का भी जायजा लिया जाएगा। जनाब मोदी खुराक और ज़राअत की तंजीम के सदर दफ्तर का भी दौरा करेंगे और कसीर जहती निज़ाम और पूरी दुनिया में खुराक की यकीनी फराहमी के भारत के अहद को मजीद मुस्तहकम करेंगे। भारत और इटली के दरमियान ताल्लुकात में गुज़िश्ता बरसों में खातिर ख्वाह पेशरफ्त हुई है और अब ये एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इटली की उनकी हम मनसब जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से तहरीर करदा एक मुश्तरका मजमून में दोनों रहनुमाओं ने इस बात को उजागर किया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते खुशगवार दोस्ती से खुसूसी कलीदी शराकतदारी में तब्दील हो गए हैं, जो जमहूरियत और मुस्तकबिल के मुश्तरका नज़रिए पर मबनी हैं। दोनों रहनुमाओं ने इस बात का जिक्र किया है कि एक ऐसे वक्त में कि जब आलमी निज़ाम में नुमाया तब्दीलियां

0: माँ हो रही हैं। भारत इटली शराकतदारी में आला तरीन सियासी और इदारा जाती सतहों पर मुसलसल राबतों से पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने कहा कि इस शराकतदारी को नई समत मिल रही है, जिसे इक्तिसादी इन्फिरादियत, समाजी इख्तरा और दोनों मुल्कों के दरमियान सदियों पुरानी तहजीब से तहरीक हासिल है। दोनों रहनुमाओं ने इस मजमून में कहा है कि उनके इश्तराक से इस मुश्तरका समझ की अक्कासी होती है कि 21वीं सदी में खुशहाली और सिक्योरिटी का इन्हिसार मुल्कों की इख्तरा, तवानाई के बंदोबस्त, मुंतकली और इक्तदार आला को मुस्कम बनाने की सलाहियत पर होगा। दो कौमी रहनुमाओं में शाये मजमून में दोनों रहनुमाओं ने नए अहदाफ की हुसूलियाबी और अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने और वसत देने के अपने अहद का इरादा किया है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक का मकसद इटली की डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग की महारत और भारत की तेज़ रफ्तार तरक्की, इंजीनियरिंग की सलाहियत, इख्तरा के इको निज़ाम और कारोबारी मजबूती के दरमियान मजीद तालमेल पैदा करना है। भारत ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अंदरून मुल्क अपनी दिफाई सलाहियतों को मुस्तहकम करने की जानिब एक और अहम कदम उठाया है। दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम DRDO ने बिना पायलट वाले एरियल व्हीकल से दागे गए प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल की तैयारी की कामयाब फाइनल आजमाइश की, जो मुल्क के दिफाई शोबे के लिए एक अहम हुसूलियाबी है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: यह आजमाइश आंध्र प्रदेश में कुरनूल के नजदीक DRDO के टेस्ट रेंज में फिजा से जमीन पर और फिजा से फिजा में दोनों तरीकों से की गई। आजमाइश के दौरान मिसाइल निज़ाम को एक जदीद मजबूत ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए अमल में लाया गया। इन आजमाइशों से जंग की मुख्तलिफ सूरतेहाल में मिसाइल के ठीक निशाने पर वार करने की सलाहियत और मोतबरियत का कामयाब मुजाहरा हुआ। इस मिसाइल को रिसर्च सेंटर इमारात हैदराबाद में DRDO की दीगर लेबोरेटरियों के साथ इश्तराक में तैयार किया गया है। मुकम्मल तौर पर अंदरून मुल्क तैयार किए गए इस मिसाइल से भारत के घरेलू दिफाई मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम की बढ़ती हुई ताकत का इजहार होता है। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया है जिसमें आने वाली मर्दमशुमारी के एक हिस्से के तौर पर जात पर मबनी मर्दमशुमारी कराए जाने के मरकज के फैसले को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला सरकार की पॉलिसी के दायरे में आता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली एक बेंच ने कहा कि सरकार ये जानना चाहती है कि पसमांदा तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तादाद कितनी है, ताकि उनके लिए फलाही इकदाम किए जा सकें। बेंच ने कहा कि इस तरह के आदादोशुमार इकट्ठा करना कोई गलत बात नहीं है और उसने इस मामले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज सियोल में जनूबी कोरिया के अपने हम मनसब आन यू बैक्स के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान दिफाई सनद और अहम नौयत के इश्तराक को मजीद मुस्तहकम किए जाने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया गया। दोनों ममालिक इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और टेक्नोलॉजी में इश्तराक के तय अहदबंद हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि ये मीटिंग इंतहाई सूदमंद रही और भारत और जनूबी कोरिया ने दिफाई साइबर इश्तराक को फरोग देने के बारे में समझौतों का तबादला किया। मफाहमत के इकरारनामों का तबादला भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज, कोरिया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और अक्वामे मुत्तहिदा कयामे अमन इश्तराक के दरमियान किया गया। चीन के सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में बातचीत की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और ईरान, यूक्रेन और बैन अल-अक़वामी तिजारत समेत अहम आलमी उमूर पर तवज्जो मरकूज की गई। चीन की वजारत खारजा ने कहा है कि इस बातचीत से चीन और रूस के दरमियान स्ट्रेटेजिक साझेदारी मुस्तहकम होगी और अक़वामे मुत्तहिदा, SCO और ब्रिक्स जैसे फोरमों के जरिए इश्तराक में इजाफा होगा। पंजाब पुलिस ने दुबई में कायम मनुष्यात की स्मगलिंग के एक बैन अल-अक़वामी गिरोह का पता लगाया है, जो अबूजहबी से अपनी कार्रवाइयां अंजाम दे रहा था और साथ ही साथ रियासत पंजाब की सरहदी हिस्से और कौमी राजधानी दिल्ली में मनुष्यात पहुंचा रहा था। पंजाब और हरियाणा में शदीद गर्मी जारी है और दोनों रियासतों में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 40 और 47 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रह रहा है। मौसमियात के महकमे ने पहले ही खित्ते के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चंडीगढ़ में वाकई मौसमियात के महकमे के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि मौसम बदस्तूर खुश्क रहेगा और आइंदा 3 से 4 दिनों में दर्जे हरारत में इजाफा हो सकता है। राजस्थान के ज्यादातर जिले इस वक्त शदीद गर्मी की गिरफ्त में है। महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी के सबब आज 2 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने इस हफ्ते

0: Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to boost economic cooperation. Prime Minister Modi and Giorgia Meloni outlined roadmap for India-Italy strategic partnership, highlight several economic initiatives in a joint article. DRDO completes trials of drone-launched unmanned precision-guided missile. Defence Minister terms it a strategic milestone. Supreme Court rejects petition challenging Centre's decision to undertake caste enumeration. Severe heatwave grips north and central India. Temperature breaches 44-degree mark at several places. And in IPL cricket, hosts Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MP3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति

0: पांच इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। यह समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण

0: अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
3: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 40.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा।

0: मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है दोपहर के 2:30 और 20 सेकंड। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आरती गौर और आप सुन रहे हैं रेडियो इंद्रप्रस्थ। और हमारे आज के जो कलाकार हैं, यानी कार्यक्रम का नाम है एक ही कलाकार, इसमें आज जो कलाकार हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बहुत ही प्रतिभा के धनी हैं। उनकी मुस्कान में पंजाब का भूलापन है, आंखों में अभिनय की गहराई है और रग रग में उनके सिनेमा बसता है। जी हाँ, तो आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं आपको, उस जोश को हाई रखने वाले हमारे चहेते अभिनेता, कुछ समझ में आया? हाउस द जोश? जी हाँ, विकी कौशल की। तो चलिए अपने सीट की पेटी जल्दी से बांध लीजिए, क्योंकि आज विक्की के जीवन के उन पन्नों को पलटेंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो हम उनके बारे में बहुत सारी बातें आपको बताएंगे, साथ ही खूबसूरत सी गीतों के साथ जो उन्हीं के ऊपर फिल्माए गए हैं।

दोस्तों, जब साल 2019 में सिनेमा घरों में ये गूंज सुनाई दी कि हाउस द जोश और सबने बोला हाय सर, तो हर हिंदुस्तानी का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो गया। इस डायलॉग को अपनी आवाज में अमर बनाने वाले और अपनी अदाकारी से हर किरदार में जान फूंकने वाले अभिनेता कोई और नहीं बल्कि हमारे आज के जनरेशन के सबसे टैलेंटेड और सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टार विकी कौशल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलिशान जिंदगी जीने वाले विकी कौशल का जो बचपन है ना, वो मुंबई के एक चौल में गुजरा था। जी हाँ, काफी सारे संघर्ष से उठकर वो पहुंचे थे एक मुकाम पर। और अक्सर हमारे मन में यही बात होती है कि भाई जब कोई नेपो किड है या फिर कोई बॉलीवुड से रिलेटेड व्यक्ति है तो वो तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, उसका क्या है, वो पैदा हुआ है, उसको फिल्में मिल जाएंगी, उसको काम मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है कि विकी कौशल ने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया और उन्होंने ये मुकाम यूं ही हासिल नहीं किया है, उसके लिए बहुत लंबी यात्रा तय की है।

दोस्तों विकी कौशल जो हैं वो एक क्वालिफाइड इंजीनियर हैं। 16 मई यानी कि इसी महीने सन 1988 को मुंबई के चौल में उन्होंने जन्म लिया और उनके पिता का नाम है श्याम कौशल, जो बॉलीवुड के जाने माने एक्शन डायरेक्टर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद विकी कौशल ने अपना जीवन जो है वो चौल से शुरू किया और उनके पिता ने काफ़ी कुछ संघर्ष, काफ़ी कुछ अच्छा बुरा वक्त इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा, जिसकी वजह से उनके पिता खुद ये चाहते थे कि उनका बेटा कभी फिल्मों में नहीं आना चाहिए। इसीलिए वो चाहते थे कि वो उसका करियर सेटल हो और उसकी लाइफ में कोई अच्छी सी नौकरी हो जाए, अच्छा काम रहे जो लगातार चलता रहे, रुके नहीं। क्योंकि आपको पता ही है कि बॉलीवुड में एकदम से इंसान ऊपर चढ़ता है और कब गिर जाता है पता ही नहीं। तो वो बिल्कुल भी अपने बेटे के लिए ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उनको पढ़ाया और एक्टिंग में आने से पहले क्वालिफाइड इंजीनियर बने वो। उन्होंने राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और इसके बाद हम सब की तरह वो भी दर दर भटके जॉब के लिए। और कॉलेज के दिनों में वो एक आईटी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए, जॉब मिल भी रही थी, सोचिए उनको जॉब मिल भी रही थी, लेकिन ऑफिस के केबिन को देखकर विक्की को समझ में आ गया कि ना भाई, 9 से 5 की ये डेस्क जॉब तो मेरे लिए नहीं है, और उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया। लेकिन उस वक्त शायद उनके पिता को ऐसा लगा कि ये मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती की, पर आज उनका सीना फक्र से चौड़ा हो चुका है क्योंकि उन्होंने अपनी किस्मत मोड़ ली थिएटर की ओर, जबकि उनके पिता बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन विकी कौशल ने उन्हें गलत साबित कर दिया।

तो विकी कौशल भी घर से तो निकल गए थे, लेकिन मंजिल कहाँ मिलेगी, कदम कहाँ पड़ेंगे, उन्हें खुद नहीं पता था। वो रोज जाते थे एक तरीके से ऑडिशन देने के लिए, लेकिन आपको पता है वो रोज ही रिजेक्ट होकर आते थे। हम एक रिजेक्शन से घबरा जाते हैं, उन्होंने सैकड़ों रिजेक्शन झेले हैं अपनी लाइफ में, उसके बाद भी उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ। और अगर उनके करियर की बात करें तो विकी ने सीधे कैमरे के सामने कभी कदम नहीं रखा। उन्होंने सबसे पहले सन 2012 में फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अनुराग कश्यप के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, और फिल्मों में वो कभी हीरो बनेंगे ये तो वो सोचते ही नहीं थे। उन्हें लगता था छोटा मोटा रोल भी मिल जाए ना तो बहुत है मेरे लिए, और उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया। लेकिन इसके बाद साल 2015 में आई वो फिल्म जिसने हिंदी सिनेमा को दिया नया हीरा, नाम थी फिल्म का मसान। ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे, ये डायलॉग सुनते हुए बहुत सारे लोगों के दिलों में वो छा गए। आंसुओं ने दर्शकों की आंखों से बहना मंजूर किया, लेकिन विकी कौशल को दिल में रखना मंजूर किया, और यहीं से बस उनकी निकल पड़ी।

दोस्तों विक्की कौशल को मौका तो मिल गया था, लेकिन अभी भी उन्हें बहुत कुछ करना बाकी था। विक्की रुके नहीं, बल्कि इसके बाद उन्होंने राजी फिल्म इकाई, उसमें संवेदनशील एक पाकिस्तानी अफसर का किरदार निभाया और इस मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने प्ले किया कि सच में उन्होंने अपनी जो छाप है वो दर्शकों के दिलों पर छोड़ दी। तो चाहे वो उनका राजी का कैरेक्टर हो या फिर संजू फिल्म, जिसमें वो संजय दत्त के साथ उनके दोस्त के रूप में एक सपोर्टिंग एक्टर के रूप में नजर आए, कमली नाम से कमली का याराना हो, या फिर बात करी जाए उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक पे वो जाबाज मेजर विहान सिंह शेरगिल, जी हाँ इसका कैरेक्टर प्ले किया हो, मतलब कैरेक्टर कोई भी हो वो इस तरीके से घुस जाते थे कि ऐसे लगने लगता था कि ये कोई एक्टर नहीं बल्कि ये तो एक गिरगिट है, जिस जगह पे इसे डाला जाता है ये उस रंग में ढल जाता है। जी हाँ हर तरह का किरदार उन्होंने प्ले किया, वो आर्ट फिल्मों की बात करें या फिर कमर्शियल फिल्मों की बात करें, उन्होंने हर जगह पर अपने आप को साबित कर दिया है। चाहे सैम बहादुर में फील्ड मार्शल सैम, मौनिक शॉ के किरदार की बात की जाए, या सरदार उधम सिंह की बात की जाए, या फिर बात की जाए फिल्म बैड न्यूज़ के कैरेक्टर की, तो हर जगह पर, और उन्होंने इतना बढ़िया डांस किया था इस फिल्म में, बैड न्यूज़ फिल्म में, और ये जो गीत था ये सिर्फ उनके डांस की वजह से ही फेमस हो गया था। तो आप सुनना चाहेंगे वो कौन सा गीत था, चलिए आपको सुनवा।

दोस्तों बात चाहे रोमांस करने की हो या फिर डांस करने की हो या फिर एक्शन करने की हो, विक्की कौशल ने हर जगह पर अपने आप को साबित कर दिया है। और जब काम में इतनी शिद्दत होती है तो अवार्ड्स तो कदम चूमते ही हैं। विक्की कौशल की अलमारी भी अवार्ड से सजी हुई है। फिल्म मसान के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू का आईफा और स्क्रीन अवार्ड मिला था। साल 2019 में उनके करियर का सबसे बड़ा पड़ाव आया जब फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इसके अलावा उन्होंने फिल्म फेयर, स्क्रीन और क्रिटिक्स अवार्ड्स इतने जीते हैं कि उतनी लंबी फहरिस्त है कि मैं बताते बताते ही थक जाऊंगी। तो इससे यही साबित होता है कि आपके काम में अगर बात है तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं।

वैसे बड़ी बड़ी एक्शन फिल्मों में काम करने वाले और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले जो हमारे विकी कौशल हैं, आपको पता है उन्हें डर भी लगता है और उन्हें डर लगता है पानी से। जी हाँ, जबकि बहुत सी फिल्मों में उन्होंने पानी के सीन दिए हैं और ऐसे ऐसे सीन दिए हैं कि मतलब आपका जो रूम रूम है वो कांप जाता है, लेकिन हकीकत में उन्हें एक्वाफोबिया है, पर पर्दे पर वो हर डर को मात दे देते हैं। तो सच में इंसान की शख्सियत होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए कि आपका डर भी ना आपसे डर जाए।

अवार्ड्स सेक्शन से जुड़ी सारी बातें हमने आपको बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब थोड़ी सी बात उनके दिल के मामलों की कर ली जाए। विकी कौशल की पर्सनल लाइफ भी किसी फेरी टेल से कम नहीं है। जी हाँ, हम किसी को चाहते हैं और वो हमें मिल जाए बिना किसी जद्दोजहद, बिना किसी मेहनत के, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये हुआ विकी कौशल के साथ। वो फैन थे कटरीना कैफ के, बहुत बड़े फैन थे, लेकिन उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि कटरीना कैफ, जिनको वो मनी मन इतना पसंद करते हैं, वो कभी उनकी ज़िंदगी में भी आ जाएंगी। और एक टॉक शो में जब कटरीना से पूछा गया था, उस टाइम विकी कौशल भी साथ में बैठे हुए थे, कटरीना से ये बात पूछा गया था कि कटरीना आप बताइए कि पर्दे पर आपकी जोड़ी किसके साथ अच्छी लगेगी, तो कटरीना ने छूटते ही बोला था मेरी जोड़ी तो विकी के साथ बहुत अच्छी लगेगी। उसे सुनकर जो विकी कौशल थे वो खुशी से पागल हो गए थे, बेहोश होने का नाटक तक करने लगे थे। लेकिन देखिए किस्मत का खेल, उन्हें पता ही नहीं था कि जो वो कह रही हैं कि पर्दे पर जोड़ी अच्छी लगेगी, रियल लाइफ में उनकी जोड़ी बन गई। साल 2021 में दिसंबर का वो महीना था, राजस्थान के सिक्स सेंसेस कोर्ट में दोनों ने एक प्राइवेट और रॉयल वेडिंग की। आज दोनों बॉलीवुड के सबसे प्यारे और सक्सेसफुल कपल्स में से एक हैं, साथ ही एक प्यारे से बेटे के माता पिता भी हैं।

तो दोस्तों ये तो थी विक्की कौशल की कहानी, उनके संघर्ष से लेकर यानी कि अर्श से लेके फर्श से लेके अर्श तक पहुंचने की कहानी, ऊंचाई तक पहुंचने की कहानी, अपने मंजिल तक पहुंचने की कहानी। तो उनकी कहानी से बहुत सारे लोग इंस्पायर हो सकते हैं कि आपके पास कुछ ना भी हो लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है, हिम्मत है, जज्बा है, जुनून है, संघर्ष करने की ताकत है तो फिर कोई आपको आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकता। और ये साबित किया है विक्की कौशल ने, जहां उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो एक्टर बने और आज वो बेस्ट पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं। और सिर्फ यही नहीं, वो हर तरीके के रोल में ढलने को तैयार हैं और आगे भी उनकी बहुत सारी फिल्में हम सब के सामने आने वाली हैं। फिलहाल आप सबके जाते जाते मेल ले लेते हैं जो आप कार्यक्रम को सुन रहे थे। ये हमारे साथ नलेश्वर नगर नरवेल से वी एस नभानकर, निर्मला नभानकर, विशाल नभानकर जुड़े हुए हैं, साथी जुड़े हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुलाल सिंह, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, रवि कुमार राहुल जुड़े हैं अम्बाला से। इसके साथ ही हमारे साथ जो कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं साथी वो हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से। उसके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, गांव परासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, ये कलाकार कार्यक्रम सुन रहे हैं और विक्की कौशल की जानकारी इनको अच्छी लगी। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन। बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं लेकिन समय बहुत कम रह गया है, इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस कार्यक्रम को एंजॉय किया, पसंद किया। और मुझे ये उम्मीद है कि विक्की कौशल पर जो भी मैंने आपको जानकारियां दी उसे सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए जाते जाते एक और खूबसूरत सा गीत हो जाएगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब खबरें नशर की जाएंगी।

मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत अभी आपने रूप कुमार राठौर को सुना, फिल्म थी गुमराह। इससे पहले आपने सुना आशा भोसले को, फिल्म थी जिंदगी एक जुआ। इन दोनों नगमों के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। अब सुनिए जनाब जावेद उर्फी का तहरीर करदा ड्रामा, जिसका उन्वान है शादी का इश्तिहार। पेशकश सरफराज अहमद की है और हिस्सा लेने वाले फनकार हैं चांद नारायण सक्सेना, शारदा गुप्ता, मोहम्मद अयूब, पोर्शिया मुखर्जी और कमला कुमारी चोपड़ा।

0: आ कोई साहब है के ब्याह या कोई साहब है? ओफो, लगता है घंटी काम नहीं कर रही। अरे भाई कोई साहब है, मैं कहता हूँ मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, गठिया सा मरीज हूँ, आंखें भी उतर आई है। और मैं कहता हूँ कोई साहब है।
1: कौन है?
0: मैं हूँ रमजान खां, वल्द मुहर्रम खां, वल्द बकरीदी खां, वल्द ईदी खां।
1: अरे अरे बस बस रहने दीजिए मियाँ, आप सिजरा सुना रहे हैं या नाम बता रहे हैं? आज बताइए किससे मिलना है?
0: मकाम आली मिर्जा महमूद खां साहब किबला, क्या इसी दौलत खाने में रहते हैं?
1: जी हाँ मियाँ।
0: किबला महमूद साहब से मिलना है। मोहतरम मुकाम ने कल के खबरनामे में शादी का इश्तहार दिया है, जरूरत है एक खूब रू सेहतमंद पढ़े लिखे कमाते लड़के की।
1: आप अंदर तशरीफ लाइए। मैं मियां को इतना
0: शुक्रिया शुक्रिया आपकी तारीफ।
1: मुझे नसीबन कहते हैं
0: मोहतरमा।
1: बैठ जाइए बैठ जाइए, मैं मियां को भेजती।
2: अरे बेगम बीबी, कोई बुजुर्ग रमजान खान साहब आए हैं। अरे मियां कहाँ हैं?
3: अरे बुआ, मियां तो गुसल कर रहे हैं, अभी तो एक ही घंटा हुआ है, एक घंटे बाद ही निकलेंगे। चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए और उधर की दुनिया इधर हो जाए, नहाते रहेंगे। किस लिए आए हैं?
1: मियाँ ने जकिया बीवी के लिए जो खुशी का इश्तहार दिया है ना खबर के कागज में, उसी सिलसिले में आए हैं।
3: अल्लाह करे रमजान मियाँ कोई अच्छा रिश्ता लेकर आए हूँ रमजान के मुबारक महीने में। ईद के चांद मेरी बेटी का सुहाग आ जाए, अल्लाह करे मेरी बेटी की तरह सोना जैसा बदन हो, लंबा चौड़ा जरा हाथ पैर का अच्छा अच्छा रिश्ता लाए हूँ।
1: अल्लाह करे बेगम बीवी।
3: अरे नसीबन जरा देख तो फ्रिज में क्या क्या पड़ा है, नाश्ता तो ठीक से लगे।
1: अरे बेगम बीवी होश की दवा कीजिए, रमजान में कौन बद नसीब खाएगा। और मियाँ जो आए हैं उनके चेहरे पर तो तीसों रोजा चढ़ा है, जबकि आज पहला रोजा है, बिल्कुल लटके मुरझाए पड़े।
3: अच्छा बुआ अब ज्यादा बातें ना करो, हाँ शाम के लिए दाल भिगोनी है।
1: बेगम बीवी अल्लाह जाने, आई लगता है पोते पर पोते का रिश्ता लेकर आए हैं बड़े मियाँ।
3: अब मैं क्या जानूं बुआ, बात खुलेगी तब तो पता चलेगा कि किसका रिश्ता लेकर आए हैं, कैसा लड़का है, लड़का क्या करता है, बराबर का है भी या नहीं। लड़की तो माशाल्लाह हाथों पली है, हाथों भरी है।
1: हाँ बेगम बी, अब ज्यादा दिन देर ना कीजिए, जितना दिन चढ़ेगा उतना गुनाह बढ़ेगा। फिर माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, बड़े कॉलेज तक पढ़ कर आई है, अल्लाह करे लड़का भी अच्छा हो, बराबर का हो। जिस तरह बिटिया रानी हजारों में बिठाई जाए तो एक है, इसी तरह लड़का भी हजारों में बैठे तो एक हो।
3: अब चलो भी बुआ, बड़ी बात नहीं हूँ।
2: जाती हूँ जाती हूँ। अरे कैसी कैसी बतिया।
3: अरे अब नहा कर आ रहे हो, कब से बाहर लड़के वाले बैठे हैं?
4: है? क्या बात है?
3: अरे जल्दी जाइए, बाहर कोई बुजुर्ग रिश्ता लेकर आए हैं सकिया का, अल्लाह करे हमारे हक में फरिश्ता हो।
4: आमीन। इससे पहले तो बेगम जो रिश्ते आए एक से एक थे, एक भी तो ऐसा ना आया जो जकिया के लिए मुनासिब होता। तालीम है तो सेहत नहीं, सेहत है तो तालीम नहीं, और अगर दोनों है तो कमाई नहीं, और अगर कमाई है तो दोनों नहीं।
3: अब देर ना करिए, जरा जाकर देखिए ना, अल्लाह करे ऐसा रिश्ता लेकर आए हूँ सेहत भी हो, तालीम और कमाई भी हो, और नाम भी, और घर के भी अच्छे हो।
4: अच्छा ठीक है, आप जरा खाने पीने के लिए

0: कुछ माकूल भेजिए।
1: और लो अल्लाह, रमजान का महीना है, बूढ़े आदमी हैं, रमजान में क्या खाए पिएंगे। और मान लो सेहत की वजह से अगर रोजा ना भी हो, फिर भी रमजान के एहतराम में हर चीज ना खाएंगे, और हमारा भेजना भी हराम है।
0: अल्लाह, तौबा तौबा, वो बेगम पहला रोजा है ना, इसलिए कुछ याद ही नहीं रहा।
1: अब जाइए भी, एक तो इतनी देर में नहा कर निकले हैं, अब बातों में उलझ गए, कब से बैठे हैं बड़े मियाँ।
0: अरे हाँ हाँ, वो जाता हूँ। अच्छा वो देखो जरा, मेरे कपड़े तो ठीक ठाक है ना?
1: एकदम ठीक है।
0: अरे लड़की का बाप हूँ आखिर, सर ऊंचा रहना चाहिए। मैं जा रहा हूँ। देखिए आप मुझे बेकार बातों में लगा रहे
1: हैं। मैं कब लगाती हूँ, आप खुद ही लग जाते हैं।
0: अच्छा देखती जाओ, क्या रिश्ता लेकर आए हैं। अरे यूं ही थोड़े ही मैंने अखबार में इश्तहार दिया था, तुम तो बहुत मना करती रही। नहीं नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगता अखबार में लड़की का इश्तहार देना। अब बताओ, अगर ना देता तो इतना अच्छा रिश्ता कहाँ से आता।
1: ओफो, अब जाकर देखिए ना। और हाँ, एकदम हाँ मत करिएगा।
0: ठीक है,
1: पहले लड़के को बुलाइएगा। माशाल्लाह हमारी लड़की हाथ पैर की जैसी है, लड़का भी वैसे ही होना चाहिए। देखो कोठी वोठी मुझे नहीं चाहिए, बस खाता कमाता हो, खिला पिला सके, पहना उड़ा सके, लड़की साथ चले तो चार आदमी कहें जोड़ी अच्छी है। आई बराबर की जोड़ी ना हुई तो बराबर का हीरा भी तोल दें तो मैं मट्टी समझूंगी।
0: मैं नामे खुदा इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि बिना सलाह मशवरा देखभाल के हाँ कर दूं, फिर बगैर लड़के को देख के कौन लड़की दे देगा। अच्छा बेगम मैं चलता हूँ, आप जरा हो रस मलाई, गुलाब का शरबत और कुछ नमकीन भिजवा दीजिएगा।
1: हाय अल्लाह, क्या बड़े मियाँ का रोजा तुड़वाइएगा।
0: लाहौल में लाकुवत, फिर भूल गया, जरा मेरी निगरानी रखिएगा बेगम कि कहीं धोखे में मैं ही कुछ ना खा पी लूं।
1: अब जाइए ना, बड़े मियाँ क्या कहते होंगे, अच्छे घर आए साहिबे खाना का पता ही नहीं।
0: हाँ ठीक है, जाता हूँ बेगम।
1: जरा ठीक से बातचीत करिएगा, होश और होश से।
0: अरे आप इत्मीनान रखिए बेगम, आज पहला रोजा है इसलिए जरा भूल चूक हो रही है।
1: अल्लाह अच्छा करे सब ठीक हो।
0: आमीन।
1: देखभाल में इसी मुबारक महीने में बात तय हो जाए तो अच्छा है। ईद के चांद के शुरू में धूमधाम से बारात चढ़े, जब से एमए पास करके जकिया घर बैठी है, मेरी छाती अल्लाह कसम इसकी उम्र के बोझ से दबी है। तर हलवे का लुकमा पत्थर की तरह गले में अटकता है। सच है, लड़की तो पैदा होते ही जवान हो जाती है।
0: बेगम तौबा है, आपकी तो कभी बात ही नहीं खत्म होती। अरे मुझे इस तरह बता रही हैं जैसे मैं लड़की का बाप नहीं हूँ बल्कि इस घर में कोई नया बावर्ची आया हूँ।
1: अब जाइए ना। अल्लाह आप तो फिर बातों में लग गए।
0: ओफो, खौफे खुदा अल्लाह लगी, सच कहिएगा बेगम, बातों में मैंने आपको लगाया या आपने मुझे बातों में लगाया।
1: अब जाइए ना।
0: अच्छा ठीक है, जाता हूँ। खुद ही बात का लासा फेंक देती हैं और मैं मक्खी की तरह लिपट जाता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ बेगम, बिस्मिल्लाह। तस्लीम अर्ज करता हूँ हुजूर। मैंने कहा आदाब। हाजी किबला। अरे चाचा साहब।
2: ओहो, लगता है तो बेखबर सो रहे हैं। जगाऊं ना जगाऊं, अल्लाह ना करे उम्र सीधा है कि रोजे की ताब ना लाकर कुछ हो जाए, तो अगर झंझोड़ता हूं तो बेअदबी।
3: आदाब
0: आदाब। हाँ तशरीफ लखिए।
3: माफ कीजिएगा, रमजान का महीना है, रोजे की हालत है, जरा आग झपक गई थी, लम्हे भर के लिए ऊँ गया।
0: जी जी, रमजान की वजह से और फिर पहला रोजा है ना, वो झपकी आई जाती है।
3: नहीं, ना चीज को रमजान खां, बल मुहर्रम खां, बल बकर ईदी खां, बल ईदी खां कहते हैं। आबाई कब्रिस्तान नाचीज का बाराबंकी है, मगर 70 बरस से नाचीज कश्मीरी मोहल्ले में मुकीम है।
0: बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर मोहतरम।
3: माफ कीजिए मोहतरम, मैं अभी तक शर्मिंदा हूँ, मैं जरा ऊँग गया था, पलक झपक गई थी।
0: जी जी, जी, जी। कोई बात नहीं मोहतरम। देखिए मुझे खुद अफसोस है, आप मेरे कदम की आहट से जाग उठे, मैं आपके आराम में खलल अंदाज हुआ।
3: अपनी तो साहब नींद ही ऐसी है, जरा मच्छर बोले, जरा मक्खी उड़े, जरा खटमल चले, आँख खुल जाती है, चूंटी का चलना भी गा

0: आरा नहीं जनाब।
1: जी जी, ज़ईफ़ी में ऐसा ही होता है।
0: कोई ऐसी ज़ईफ़ी का आलम हरगिज़ नहीं है साहब। हाँ, और वजूहात से भी नींद नहीं आती।
1: बेशक, बेशक।
0: हाँ, कई बार हकीम नब्बाज मरहूम से नवस दिखा चुका हूँ। आपकी तारीफ बरखुरदार।
1: नाचीज को मिर्जा महमूद बेग कहते हैं।
0: आदाब बजा लाता हूँ, आदाब बजा लाता हूँ। मैं तो समझा था आप मिर्जा महमूद साहब के पोते हैं, इसीलिए गुफ्तगू में तकल्लुफ का लिहाज ना रहा, अनजाने में जबान से बरखुदान निकल गया। आप तो मेरे मखदूम मोहतरम आली हैं।
1: कैसी बातें करते हैं आप है? इरशाद फरमाइए।
0: साहब, इरशाद तो आप फरमाएंगे, मैं तो गुजारिश करूंगा।
1: देखिए, आप शर्मिंदा कर रहे हैं।
0: मैं आपका आदिम हूँ, नाचीज हूँ। गुजारिश है, आपने जो इश्तहार दिया खबरनामे में,
1: जी, जी।
0: जरूरत है रिश्ते की एक खूबरू, सेहतमंद पढ़े लिखे कमाते लड़के की। इसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ।
1: बड़ा करम है आपका।
0: मोहतरम, जरा तफसील से लड़की के बारे में बताइए। इश्तहार बहुत मुख्तसर है। उम्र 21 साल, खूबसूरत और सेहतमंद, तालीम याफ्ता, खानदान। भाई, इससे सब बात समझ में नहीं आती। कहाँ तक लड़की की तालीम है? वैसे तो लोग कुछ भी पढ़ी लिखी लड़की को तालीम याफ्ता कहते हैं।
1: माफ कीजिएगा मोहतरम
0: जी,
1: लड़की एमए पास है।
0: हाँ?
1: आप चाहे तो सनद देख सकते
0: हैं। मैं सनद देख कर क्या करूँगा? तालीम की बात तो बस मैंने यूं ही कह दी। बेहतर होगा अगर आप लड़की को दिखा दें।
1: आप लड़के के बारे में कुछ बताइए।
0: मोहतरम, लड़के के बारे में क्या बताऊं? अरे बताना आसान नहीं। एक खूबी हो तो बताऊं, हजारों खूबियां हैं। अच्छे मोहतरम खानदान का है, खूब रूह है, सेहतमंद है, दुनिया देखे हुए है, तालीम भी है, दौलत भी है, और क्या चाहिए? सारे लखनऊ में इससे अच्छा खानदान ना होगा साहब। जहांगीर समझिए, आपकी लड़की मलका नूर जहां बनकर रहेगी। आप लोग बेटी को देखकर फूले ना समाएंगे, और खुशी में आप साहिबान की उम्र बढ़ेगी।
1: जी हाँ, जी हाँ, शुक्रिया। देखिए, मेरी लड़की इकलौती है, मैं ऐसा ही रिश्ता चाहता हूँ।
0: ऐसा ही रिश्ता आपको मिल रहा है मोहतरम?
1: जनाब शुक्रिया जो आपने तकलीफ की।
0: फिर जरा वो मोहतरम, आप अपनी लड़की को बुलाइए, लड़की पसंद आ जाए तो फिर बात पक्की कर लूंगा।
1: मैं भी यही चाहता हूँ हुजूर मोहतरम, कि माहे मुबारक में बात पक्की हो जाए और ईद में बारात चढ़े।
0: ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। मगर खुदा के वास्ते मोहतरम, आप मुझे हुजूर ना कहिए, मैं शर्म से पानी पानी हो गया, और आप मेरे मोहतरम हैं।
1: क्या फरमाते हैं आप, मैं आपकी बात से खुश शर्मिंदा हुआ।
0: मोहतरम, मैं ठीक अर्ज कर रहा हूँ, वक्त बर्बाद करने से क्या हासिल। लड़की को बुलाइए, जरा देख तो लूं। वैसे तो माशाल्लाह आपका चेहरा भी काफी खिला हुआ है, साफ रंग, बड़ी बड़ी आंखें। लड़की अगर आप पर पड़ी होगी तो अच्छी होगी, और अगर अपनी वालिदा मोहतरमा पर, तो मैंने वालिदा माजिदा साहिबा को तो देखा ही नहीं।
1: इंशाल्लाह लड़की आपको पसंद आएगी, बस जरा नजर करम से देखिएगा। लड़की की शादी में एक हज का सवाब मिलता है।
0: तो बुलाइए ना, आखिर हज ही क्या है जो ताखीर कर रहे हैं साहब। है? उजर की कोई वजह नहीं, इतना अच्छा लड़का आपको नहीं मिलेगा। हाँ, और साहब अगर कुछ पर्दे वर्दे का झगड़ा है तो बालाए ताक रखिए इस फरसूदा रसम को। हाँ हाँ हाँ, आपकी लड़की पढ़ी लिखी है तो भला पर्दा क्या करती होगी, और करती हो तो मुझसे क्या पर्दा। बस आप जल्दी से बुलाइए। और एक गुजारिश और है, जिस हाल में है उसी हाल में देखना चाहता हूँ। मेरा मतलब है रंग रोगन के बाद नहीं। हाँ, रंग और रोगन तो दूसरों के लिए है, फिर साहब हजार की एक बात, शरे में शर्म क्या।
1: आप कहते हैं तो मैं अभी बुला लेता हूँ, आपसे क्या पर्दा।
0: हाँ, मैं यकीन से कह सकता हूँ, लड़के को चाहे लड़की नापसंद आए, मगर अपनी खूबियों की वजह से लड़की को लड़का जरूर पसंद आएगा। आ, आ, आ, आ,
1: अभी लेकर आता हूँ। वैसे जनाब, हमारे यहाँ जो माँ बाप की

0: अपनी तो नींद ही ऐसी है, जरा पतंग हवा में उड़े तो आंख खुल जाती है। ए गुस्ताखी माफ कीजिएगा, शायद आप खड़े हैं मोहतरम और मैं बदतमीज लेटा हुआ हूँ।
1: कैसी बातें करते हैं आप तो बुजुर्ग हैं।
0: यही सवाल मैं आपसे कर सकता हूँ, आप कैसी बातें करते हैं? अरे उम्र से कुछ नहीं होता, आप मेरे बुजुर्ग हैं। जरा लड़की बुलाइए, बात पक्की हो जाए, रसम पूरी कर ली जाए।
1: लड़की तो आपके सामने बैठी है क़िबला।
0: माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आफ्ताब महताब, चेहरा गुल गुलाब, जिस्म सर सब्जो शादाब, चमन चमन गुल गुलिस्ता, आंखें गहरी झील, सुभान अल्लाह और माशाल्लाह माशाल्लाह, तस्लीम तस्लीम।
1: बेटी अभी तक तुमने सलाम नहीं किया।
0: कोई जरूरत नहीं क़िबला, कोई जरूरत नहीं।
2: तस्लीम, आदाब बजा लाती थी।
0: तस्लीम तस्लीम, हजार बार तस्लीम, हजार बार आदाब। माशाल्लाह माशाल्लाह, जरा ऐसे कीजिए, जरा करीब आइए।
1: आ जाओ बेटी,
0: जरा और करीब आइए, जरा करीब से देखू, चश्मा साफ करके देखू, कहीं दाग धब्बे मेकअप में तो नहीं छुपा है। अफो, ये कमबख्त मेकअप बहुत धोखे की चीज चली है। नहीं नहीं, बहुत खूब बहुत खूब, मेकअप बिल्कुल नहीं है साहब। लड़की अभी तक तो पसंद आई, रंग रोगन तो कुदरती है, माशाल्लाह सेहत भी अच्छी है, जिस्म ताकतवर है। वो अब जरा चलकर दिखाइए, मैं जरा चाल देखना चाहता हूँ।
2: जी
1: क़िबला माफ फरमाइएगा, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता।
0: जी आप बीच में मत बोलिए साहब, आदमी एक ढेले की चीज लेता है तो हजार बार परख कर देखता है। हाँ, हाँ। जिंदगी भर का साथ है, शादी बाद मालूम हो लड़की लूली है। चाल में गजाल की मस्ती नहीं, जिसमें जवानी नहीं, शबाब नहीं, तो शादी करने से क्या हासिल, बाद में तल्लाक हो। हाँ, जब क़िबला जवानी का बोझ होता है तो चाल में फर्क आता है, और मैं चलाकर ये भी देखना चाहता हूँ। हाँ,
1: हाँ, हाँ। आप लड़के के बारे में भी तो कुछ बताइए।
0: अरे साहब, आप लड़की को पहले चलाकर दिखाइए, आजकल लड़के ऐसे नहीं, सब कुछ देखते हैं, चलते हुए भी और बैठे हुए भी।
1: बेटी
2: जी,
1: अंदर जाओ तुम।
2: तस्लीम,
1: आपने देख लिया क़िबला, मेरी लड़की लंगड़ी नहीं है।
0: देखिए साहब, एक गुजारिश है, दौराने गुफ्तगु लड़की को रूबरू रहने दीजिए, जिंदगी भर का साथ उसका है, आप तो आज है कल नहीं।
1: बस क़िबला, आप इससे ज्यादा मुमकिन नहीं है।
0: देखे देखे साहब, आप पुराने ख्यालात के हैं, नई रोशनी नई हवा आपको छू भी नहीं गई है। अरे लड़की को अंदर भेज कर बड़ा सितम किया आपने, और देखे साहब बहुत हो चुका, कब से आप इस नाचीज को क़िबला कह रहे हैं। अब बराए करम अपनी जबान पर मेरे लिए क़िबला का लफ्ज हरगिज ना लाइए। हाँ, मुझे शर्मिंदगी होती है, आपका रुतबा और आपका रिश्ता मुझसे बहुत बड़ा है साहब।
1: कैसी बातें कर रहे हैं आप?
0: हाँ? अरे मुबारक हो साहब, आप किस्मत वाले हैं, आपकी लड़की को बहुत अच्छा लड़का मिल रहा है, बहुत बड़ा घर है, दरवाजे से हाथी निकल सकता है।
1: जी शुक्रिया।
0: माशाल्लाह लड़की आपकी बहुत खूबसूरत है, बड़ी सुडोल गुदास दबीज, मगर जरा पुराने ख्याल की मालूम होती है। आजकल की लड़कियां दुपट्टा कहाँ ओढ़ती है, आस्तीन कहाँ लगाती है, और इतना ढीला ढाला कपड़ा कहाँ पहनती है साहब।
1: देखिए क़िबला, शादी के बाद लड़के का जो जी चाहे पहनाए उढ़ाए, जिस कदर जी चाहे फैशन कराए, पढ़ी लिखी लड़की है, तबीयत में जिद बिल्कुल नहीं है, मोम की नाक है, जिधर जी चाहे मोड़ लीजिए।
0: हाँ, वो तो मैंने देख लिया साहब, जिस्म अच्छा है पानी, जिस बर्तन में डालिए वो ही शक्ल बन जाए, साड़ी चूड़ीदार करारा शलवार और हवाई मेजबान का लिबास सब अच्छे लगेंगे। शोहर फैशन परस्त हो तो बीवी में चार चांद लग जाते हैं साहब। बराए करम ये बताइए, आपकी लड़की

0: कि लब लब भी जा सकती है कि नहीं।
1: देखिए मोहतरम, ये चीजें मेरे घर में तो चलती नहीं। वैसे लड़की पढ़ी लिखी है, आदाब व तमीज से वाकिफ है, तहजीब याफ्ता है, बासलीका है, बाशऊर है। शादी के बाद जिस तरह लड़का रखेगा रहेगी।
0: कुछ अंग्रेजी नाच बाज भी जानती है?
1: मैंने अभी अर्ज किया, ये सब चीजें मेरे घर में राज नहीं है।
0: आप बजा फरमाते हैं, आपका कलमा दुरुस्त है, ये सब बाप के लिए जरूरी नहीं, मगर फैशन परस्त शोहर के लिए बेहद जरूरी है साहब। खैर, लड़की अच्छी है, भरपूर जवान है, चाल ढाल से जवान है, रिश्ता मुझे मंजूर है साहब। आप मेरे इजार बंद से अंगूठी खोल लीजिए साहब। मुबारक हो। अरे मंगनी की रस्म पक्की हो गई साहब। शाम को इंशाल्लाह बाद नमाज मगरिब मिठाई आपके यहाँ पहुंच जाएगी। हाँ, फकर के साथ रिश्तेदारों और दोस्तों में तकसीम करिए, और ईद के चांद इंशाल्लाह बड़ी धूमधाम से बारात आएगी और बहुत ही शानदार दावत वलीमा होगा। अब बिस्मिल्लाह, आप देर किस बात की, ऐसा अंगूठी खोलिए, महफूज रहे, इसलिए मैंने कई गांठ लगा लिए हैं। मैं जरा खोलने में कासिर हूँ, आप जरा जहमत फरमाइए साहब।
1: अरे यूं ही कैसे? पहले आप ये तो बताइए साहब कि लड़का कौन है, कैसा है, क्या करता है, हसब नसब क्या है, शिजरा क्या है।
0: आपकी इतनी उम्र हो गई, आप बरखुदा है, आप कमाल करते हैं, कहीं लड़के के बारे में इतने सवाल किए जाते हैं। अरे लड़का रईस इब्ने रईस है, खूबरू तजुर्बेकार, जानदीदा, मुश्ताके नजर, फैशनेबल, और आपको क्या चाहिए? अरे आपका पैसा वसूल हो गया जो आपने इश्तार दिया था, अब खोलिए ना किबला। इतनी देर से इजार बंद आपकी तरफ बढ़ाए हुआ हूँ, खालिस सोने की अंगूठी है, मुझ पर हीरा लगा हुआ है।
1: जिद ना करिए, पहले आप लड़के को दिखाइए। ऐसा करिए, कल शाम को अफ्तार पर लड़के को ले आइए, साथ ही उसका शजरा भी। तालीम याफ्ता तो जरूर होगा, मगर तालीम से ज्यादा जरूरी तरबियत और माहौल है। बात करने से तरबियत और माहौल का पता चल जाएगा।
0: आपकी समझ में कुछ नहीं आया, आप नेक काम में देर कर रहे हैं।
1: तो आप आज ही शाम को लड़के को ले आइए, जो नमक रोटी मैसर हाजिर कर दूंगा।
0: आपने काम में देर कर रहे हैं साहब।
1: आप अगर अपनी सवारी ना लाए हो तो मेरी गाड़ी ले जाइए और लड़के को ले आइए, जब तक मैं अफ्तार के असबाब मैसर कर दूंगा। अगर आप ना जाना चाहें तो टेलीफोन करके बुला लीजिए, कम से कम लड़के के यहाँ टेलीफोन तो होगा।
0: किबला, आप पीरी में बड़ी नादानी कर रहे हैं, ताखिर की नामाकूल वजह मेरी समझ में नहीं आती। हाँ
1: देखिए, जब तक हम लड़के को ना देख लें, उसके हसब नसब के बारे में ना जान लें, तो कैसे यहाँ कर सकते हैं?
0: देखिए देखिए, मैं बड़ी देर से आपकी नामाकूल बातें सुन रहा हूँ, आपकी नादानी देख रहा हूँ। क्या अभी आपने माँ का दूध छोड़ा है? हाँ? आप अपने को लौंडा मुकर्रर किए हैं जो आप कुछ नहीं समझते। ना जाने आप मुझे क्या समझ रहे हैं, मैं नाई हूँ जो रिश्ता लेकर आया हूँ। मैं खुद लड़का हूँ। आप मुझे समझते क्या है? अरे रमजान की वजह से आपको रमजान मियाँ नजर आता हूँ, रमजान ना होता तो मैं मिस्टर रमजान नजर आता। ये तो रमजान की वजह से आप मुझे शेरवानी में देख रहे हैं, वरना आप शार्स्किन के सूट में देखते। हाँ
1: आप तशरीफ ले जाइए, कहीं ऐसा ना हो रमजान मियाँ के रमजान के महीने में आपके मुंह पर इतने घूसे मारूं कि आपका रोजा आपके खून से धुल जाए। और शर्म नहीं आती शादी करना चाहते इस उम्र में? अरे आपका दिमाग चल गया।
0: तो चाचा साहब बेकार नाराज हो रहे हैं। बाखुदा, अभी मैं कुआरा हूँ और 60 बरस से कोई अच्छी लड़की की तलाश है जो मेरे हाथ पैर पर ठीक लगे। आप खुशकिस्मत है, आपकी लड़की मुझे पसंद आई। मैं कोई कम फैशनेबल आदमी नहीं हूँ। हाँ, अंग्रेजी नहीं जानता तो क्या हुआ, अच्छे लोगों में उठने बैठने की वजह से मैं सब मतलब समझता हूँ। किशमिश भी छुरी कांटे से खाता हूँ और पोस्टमैन से फुल ड्रेस होकर लेटर लेता हूँ साहब। हाँ,
1: अब चलते बनिए, आप चलते बनिए, तशरीफ ले जाइए यहाँ से। अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, देखिए कहीं ऐसा ना हो कि आप नीचे और मैं ऊपर नजर आऊं।
0: चाचा साहब आप बेकार नाराज हो रहे हैं, अब मैं क्या जवाब दूं? आप रिश्ते में मेरे बुजुर्ग हैं, बाप के बराबर।

0: अरे तशरीफ ले जाइए यहाँ से।
1: अरे क्या हुआ ज़किया के अब्बू, क्यों चिल्ला रहे हो? रोजा चढ़ा है या मेहर पर झगड़ा हो गया? लड़का तो अभी देखा ही नहीं।
2: अम्मी आदाब, चचा जान तो यूं बिगड़ रहे हैं।
0: सुनती हो, बड़े मियाँ खुद ही लड़का है, अपनी बात लेकर आए हैं।
1: तौबा, अच्छा और दो इश्तहार अखबार में। अरे ओ नसीबन, जरा झाड़ू तो लेकर आना।
2: क्या हुआ बेगम बीबी, क्या कोई जिंदा गंदगी नजर आई है?
1: जरा मार तो दो तीन झाड़ू, जवानी फटी पड़ती है, शादी करने आया है।
3: फटी नहीं तो अभी फावड़े देती हूँ। वो एक ही जवानी नवासी बोती नहीं थी जो यहाँ चला आया हुआ।
1: अरे ज़किया के अब्बू, अखबार में इश्तहार फिर से दे दीजिए, लड़के की जरूरत नहीं है। अल्लाह बचाए इश्तिहारी शादी से। अब जाइए ना, इश्तिहार देकर आइए।

अभी आप सुन रहे थे ड्रामा उनवान था शादी का इश्तहार। तहरीर थी जनाब जावेद उर्फी की, पेशकश सरफराज अहमद की। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुने फिल्मी नगमे।

दो दिलों का संगम, इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे विनोद राठौड़ और अनुराधा पोडवाल की आवाजों में। फिल्मी नगमों की प्रोग्राम की अगली पेशकश अमित कुमार और अलका याग्निक की आवाज में है। फिल्म का नाम है हम।

आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाजों में ये नगमा अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था नसीब अपना अपना। हमारे आज के प्रोग्राम की अगली पेशकश अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में समात फरमाइए। फिल्म का नाम है गुप्त।

अलका याग्निक की आवाज़ में यह नगमा हमने आपको सूर्य फिल्म से सुनवाया। फिल्मी नगमों की प्रोग्राम की अगली पेशकश आप सबकी नजर है। अलका याग्निक और मनहर ओधास की आवाजों में फिल्म का नाम है त्रिदेव।

0: सुरेश वाडकर और अनुराधा पोडवाल की आवाज़ों में ये नगमा आपने सुना शीशनाग फिल्म से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी हैं। फिल्मी नगमे यहीं तक थे, अब वक्त हो गया है खबरों का।
1: अब आप अर्जुमंद अली खान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मिलोनी ने भारत इटली क़लीदी शराकत दारी के लिए आइंदा का लाह अमल नुमाया किया है। एक मुश्तरक मजमून में उन्होंने मुख्तलिफ इक्तसादी इकदामात को उजागर किया। दिफाई तहकीक की भारतीय तंजीम DRDO ने ठीक निशाने

पर वार करने वाले ड्रोन मिसाइल V-3 का कामयाब तजुर्बा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जात पर मबनी मर्दमशुमारी के अमल के सिलसिले में मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। मुल्क के शुमाली और वस्ती हिस्सों में शदीद गर्मी जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर दर्जा हरारत 44 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है और IPL क्रिकेट में आज ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। भारत और इटली के दरमियान ताल्लुकात में गुज़श्ता बरसों में खातिरख्वाह पेशरफ्त हुई है और अब ये एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इटली की उनकी हम मनसब जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से तहरीर करदा एक मुश्तरका मजमून में दोनों रहनुमाओं ने इस बात को उजागर किया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते खुशगवार दोस्ती से खसूसी क्लीदी शराकतदारी में तब्दील हो गए हैं जो जमहूरियत और मुस्तकबिल के मुश्तरका नज़रिए पर मबनी हैं। दोनों रहनुमाओं ने इस बात का जिक्र किया है कि कैसे वक्त में कि जब आलमी निज़ाम में नुमाया तब्दीलियाँ रुनुमा हो रही हैं भारत इटली शराकतदारी में आला तरीन सियासी और इदारा जाती सतहों पर मुसलसल राबतों से पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने कहा है कि इस शराकतदारी को नई समत मिल रही है जिसे इकतसादी इनफरादियत समाजी अख्तरा और दोनों मुल्कों के दरमियान सदियों पुरानी तहजीब से तहरीक हासिल है। दोनों रहनुमाओं ने इस मजमून में कहा है कि उनके इश्तराक से इस मुश्तरका समझ की अक्कासी होती है कि 21वीं सदी में खुशहाली और सिक्योरिटी का इन्हिसार मुल्कों की अख्तरा तवानाई के बंदोबस्त मुंतकली और इख्तदार आला को मुस्तहकम करने की सलाहियत पर होगा। दो कौमी रोजनामों में शाये मजमून में दोनों रहनुमाओं ने नए अहदाफ की हुसूलियाबी और अपनी सलाहियतों को बरूकार लाते हुए बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने और वसत देने के अपने अहद का इदा किया है। उन्होंने कहा है कि दोनों ममालिक का मकसद इटली की डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग की महारत और भारत की तेज़ रफ्तार तरक्की इंजीनियरिंग की सलाहियत इख्तरा के इको निज़ाम और कारोबारी मजबूती के दरमियान मजीद तालमेल पैदा करना है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज सियोल में जनूबी कोरिया के अपने हम मनसब आहान ग्यू बाक के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान दिफाई सनत और अहम नौयत के इश्तराक को मजीद मुस्तहकम किए जाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक इलाकाई अमन इस्तेहकाम और टेक्नोलॉजी में इश्तराक के तई अहदबंद हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि ये मीटिंग इंतहाई सूदबंद रही और भारत और जनूबी कोरिया ने दिफाई साइबर इश्तराक को फरोग देने के बारे में समझौतों का तबादला किया। मुफाहमत के इकरारनामों का तबादला भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज कोरिया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और अख़वाह मुत्तहदा क़याम अमन इश्तराक के दरमियान किया गया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान खसूसी स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मुस्तहकम किए जाने के मुंतजर हैं। भारत ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अंदरून मुल्क अपनी दिफाई सलाहियतों को मुस्तहकम करने की जानिब एक और अहम कदम उठाया है। दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO ने बिना पायलट वाले एरियल व्हीकल से दागे गए प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल की तैयारी की कामयाब फाइनल आजमाइश की जो मुल्क के दिफाई शोबे के लिए एक अहम हुसूलियाबी है। ये आजमाइश आंध्र प्रदेश में कुरनूल के नज़दीक DRDO के टेस्ट रेंज में फिजा से ज़मीन पर और फिजा से फिजा में दोनों तरीकों से की गई। आजमाइश के दौरान मिसाइल निज़ाम को एक जदीद मरबूत ग्राउंडेड कंट्रोल सिस्टम के जरिए अमल में लाया गया। इन आजमाइशों से जंग की मुख्तलिफ सूरतेहाल में मिसाइल के ठीक निशाने पर वार करने की सलाहियत और मुतबरियत का कामयाब मुजाहरा हुआ। इस मिसाइल को रिसर्च सेंटर इमारात हैदराबाद ने DRDO की दीगर लेबोरेटरियों के इश्तराक से तैयार किया है। मुकम्मल तौर पर अंदरून मुल्क तैयार किए गए इस मिसाइल से भारत की घरेलू दिफाई मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम की बढ़ती हुई ताकत का इजहार होता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया है जिसमें आने वाली

सेवण विच लहरावे, याद हुसैनी आवे। सेवण विच लहरावे, याद हुसैनी आवे। पुल दे भाग जगावे, परचम

झल्ला पक्षी पक्षी झल्ला मैं पक्षी, पक्षी झल्ला मैं पक्षी, पक्षी झल्ला मैं पक्षी, झल्ला पक्षी।

एक पल ऐश न पायम घर विच हो, एक पल ऐश न पायम घर विच, गुजरी सारी उम्र सफर विच, पौंदे सौ सौ पौर अंदर विच, यार अब यार

आमिल अॼुकल्ह सोहणा साईं, ना त में मुफ़्ती खून थी साईं। चांडे खां झुंड मीं किन मिन कूं, रोवा कर कर यादि सजन कूं। चांडे खां झुंड मीं किन मिन कूं, रोवा कर कर यादि सजन कूं।

0: मूल न विसरम रे डरिया सावल नाज निगाह।
1: सामीन हुनी तुसी समात फरमारे सी सराई की प्रोग्राम झोक माहिदी। लो हुण वेला हो गया प्रोग्राम देश पंजाब दा।

दोस्तों आज दे देश पंजाब प्रोग्राम दे विच असी सुनांगे शहद दे गुणकारी तत्तां बारे बी डे यानी के मधुमक्खी दिवस। दोस्तों जिया इन प्रोग्राम दे विच आज असी गालबात सुनांगे संतोष शिशी मैडम दी पंजाबी फिल्म म्यूजिक ते नाल ही नाल तुहाडा पसंदीदा गीत तमन्ना प्रोग्राम दे राही सुनवाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ थोड़ी दोस्त मोनिका मेहता ते आज माखियों मिठा अज दी गल दा विशा लैके आए हाँ शहद। दोस्तों असीं सारे जानते हाँ कि जन्म दे नाल ही साडा भारतीयां दा शहद दे नाल एक गूढ़ा रिश्ता हो जांदा है। कहिंदे जदों बच्चे दा जन्म हुंदा है उन्हूं गुड़ती दित्ती जांदी है ते गुड़ती पता किदां दिंदे हैं, जिन्हें भी गुड़ती देनी हुंदी है वह परमात्मा दा नां लैके अरदास करके हथ धो के अपनी उंगली दे नाल बच्चे दी जुबान दे उत्ते शहद लगांदा है, यानी कि बच्चे दी जिंदगी दा आगमन मिठास भरिया होवे ते उहदी जिंदगी दे विच खुशियां ही खुशियां मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट होवे ये आशीर्वाद दिता जांदा है। ते कहिंदे कि जेड़ा गुड़ती दिंदा है उहदे गुण बच्चे दे विच आ जांदे ने, इस करके घर दे सियाणे बंदे नूं ही ये जिम्मेदारी सौंपी जांदी है। दोस्तों अज है मधुमक्खी दिवस यानी कि बी डे। अज आपां शहद दे गुणकारी गुणा की गल करनी है। दोस्तों शहद एक ऐसी शह है जिहड़ी सदियां सदियां दहाकियां दहाकियां तक खराब नहीं हुंदी है। असी मिस्र दियां उन्हां ममीज़ दियां गल्लां करदे हां जिन्हां दी कब्रां दे विच्चों शहद मिलिया है, किड्डियां सदियां पुराना वह शहद, पर अज भी वह खराब नहीं होया। इहदे विच ऐसे मैडिसिनल तत् हुंदे ने जिहदे करके शहद खराब हो ही नहीं सकता। तुहानूं पता है जिहड़ियां मक्खियां हुंदियां ने तरह तरह के फुल्लां दे उत्ते जांदियां ने ते फिर उहदा रस चूसदियां ने ते फिर बनता है शहद। शहद के छत्ते दे उत्ते एक हुंदी है राणी मधुमक्खी ते बाकियां सारी मधुमक्खियां शहद बनाउंदियां ने ते राणी मक्खी का ध्यान रखदियां ने। राणी मक्खी का काम हुंदा है सिर्फ वंश नूं अगे वधाउणा। दोस्तों शहद कदी खराब नहीं हो सकता, शहद बड़ी तरह का मिलता है ते अजकल तो शहद मल्टी फ्लोरल हुंदा है, कई तरह के फुल्लां दे रसां नूं मिला के जिहड़ा शहद मधुमक्खियां बनाउंदियां ने बड़ा ही वधिया हुंदा है, खाण विच भी बड़ा गुणकारी हुंदा है। ते अजकल तो जिहड़े नवें बच्चे है नवी जिहड़ी फौज है वह तो दुध च भी पा के ते अलग अलग चीज़ां दे विच पा के केक दे विच पा के शहद का सेवन करते ने। दोस्तों पुरानियां रसोईयां दे विच आज भी शहद मौजूद है, क्योंकि किसी का खंघ दे नाल गला खराब हो गया है, जुकाम लग गया है ते फिर दवा दव उन्हूं शहद चटाया जांदा है। शहद दे विच मगां पा के या अदरक का रस पा के जदों असी अपनी जुबान ते रखदे हां ते अंदर तक तुर तक शांति मिलती है और शहद दी मेडिसिनल वैल्यू दे करके खंघ जुकाम तो बड़ी जल्दी राहत मिल जाती है। निक्के बच्चे जो नहा के बाहर निकलते ने मामा अपनी गोद दे विच लैंदी है, उन्होंने दुध पिलाने तो बाद थोड़ा जा शहद चटा दिता जाता है, इहदे नाल बच्चों नू बड़ी कूक नींद आती है ते कहिंदे कि शहद उन्हां दी पूरी शरीर की जिहड़ी थकावट है और दूर कर दिंदा है ते नींद बड़ी सोहनी उन्हां नू आती है। फिर चार पांच घंटे आराम नालो टिक्के सुते रहिंदे ने, क्योंकि छोटा बच्चा जिन्ना ज़्यादा सोंदा है उन्ना ही ओदी बढ़ोतरी दे वास्ते ये चंगा हुंदा है। बाकी अजकल लोकी सवेरे उठते ही कोसे पानी दे विच नींबू ते शहद पाके पींदे ने और कहिंदे इहदे नाल साडा जिहड़ा मैटाबोलिज़म है वह बड़े ही तेज़ी दे नाल कार्यरत हो जाता है और उहदे नाल की हुंदा है खाना जल्दी हजम हो जाता है और इहदे नाल साडी जिहड़ी ऊर्जा है शरीर की वह भी बनी रहिंदी है ते इस दे नाल नाल भार घटाने दे विच भी मदद मिलती है। बाकी पाचन शक्ति वास्ते भी, पेट की अगर कोई समस्या है, कोई कब्ज़ है, बदहजमी है, इहदे वास्ते भी साडे सियाणे दादियां सानू शहद खवाया करदे सी। कहिंदे ने कि शहद दे विच एंटी

0: मैं बहुत खुश हाँ कि सारा स्टाफ बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसी तरह ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स तुसी बनाते रहो और लोगों के नाल जुड़े रहो।
1: संतोष मैम, जिवें तुसीं बहुत सारे प्रोग्राम उलीके और कंसर्ट्स विच भी गए, ते मान सम्मान दी गल करिए तां आपां कितें जांदे आं या आकाशवाणी विच वी इन्हां ने काम करदे आ तां सम्मान बहुत मिलदे ने ते बहुत चंगा लगदा है। जदों अवार्ड आउंदे सी तां किस तरह महसूस हुंदा सी?
0: हाँ, ये गल है कि 95-96 दी गल है। उदों एड्स के खिलाफ कंपेन चल रही सी सरकार दी,
1: जी
0: और असी उहदे ते डिफरेंट कैटेगरीज च प्रोग्राम बनाउंदे सी। ते साडे उस टाइम स्टेशन डायरेक्टर आए जैरथ साहब, अशोक जैरथ जी। उन्हां ने कहा कि तुसी भी कोई एंट्री भेजो। मैं उदों नवी नवी पैक सी, 91 जी आई सी और 4-5 साल होए सी, और एक नौटंकी है
1: टाइप दी,
0: फॉर्मेट।
1: जी हाँ
0: और उहदे च ड्रामा म्यूजिक ए मिक्स हुंदा है, और मैं सोचिया कि हाँ, ये नौटंकी नू बेस लै के असी एड्स के खिलाफ एक कंपेन चलानी है, तो वो उपर प्रोग्राम बनाना है। वो प्रोग्राम लिखवाया असी, और फोक दियां ट्यून्स नू लै के उन्हां दे उत्ते सॉन्ग्स एड्स के खिलाफ और अवेयरनेस लई लोगों के वो बनाए, रिकॉर्ड किया मैं काफ़ी आर्टिस्टां नू बुला के। और जदों असी बाद च सुनिया प्रोग्राम, वो बड़ा अच्छा लग्या सानू कि ये एक नवी फॉर्मेट है नौटंकी, और ये बड़ा अच्छा 1 घंटे का प्रोग्राम बनाया सी असी। और फिर कहिंदे कि जेड़ा अवार्ड लई भेजना है वो तो 19 मिनट का
1: हाँ,
0: होना
1: उन्नी
0: चाहिए,
1: मिनट का होना
0: 20 मिनट
1: चाहिए
0: की कैटेगरी होंगी है। हूँ 1 घंटे चो 20 मिनट का क्ढना, जोड़ा वह भी एक आर्ट सी। असी बड़ा बहुत मेहनत की वे, और वह असी 19 मिनट और 40 सैकेंड्स का वह क्ड लिया वो, और वह प्रोग्राम जो असी अपने डायरेक्टर नु सुनाया, और एक मीटिंग होंगी है जिद सिलैक्ट होंगे प्रोग्राम्स, तो उन्होंने वो सिलैक्ट किया भेजन वास्ते, और वह भेजा प्रोग्राम। और 96 च मैनू विमेन कैटेगरी च और ये कंपेन की कैटेगरी मैनू अवार्ड मिले, फर्स्ट प्राइज। मैनू उस टाइम नहीं पता सी कि आकाशवाणी अवार्ड की हुंदा है, क्योंकि नवे नवे सी असी, सानू ये चीज़ पता ही नहीं सी। और डायरेक्टर साहब मैनू कहन कि आपको पता है ये कौन सा प्राइज़ होता है, ये सबसे बड़ा प्राइज़ है। मैं बड़ी खुश कि मैनू अवार्ड मिल गया, और वो 96 जो मैं अवार्ड उत्थे लैन गई, बहुत अच्छा फील होया कि असी अपने स्टेशन लई कोई काम किया, सानू उहदे लई सन्मानित किया जा रहा है। उस तो बाद फिर एक बारी जो मैं पटियाला स्टेशन ते ट्रांसफर हुई, 2006 दी गल है, उदो मैं पटियाला स्टेशन ते ट्रांसफर हुई, ते उत्थे साडे डायरेक्टर सीगे अमृतपाल जी, उन्होंने कहा कि तुसी प्रोग्राम प्रोड्यूस करो किसी टॉपिक नू लैके, और विमेन फोर्टिसाइड ते उस दिन बड़ा प्रोग्राम उन्होंने दिनों चल रहा सी। ते मैं प्रोग्राम एक नाटक लिखवाया स्पेशल उत्थे, असी बलराम जी हैगे उत्थे बहुत अच्छा लिखते हैं, उन्होंने लिख के दिता, और वो नाटक प्रोड्यूस किया असी, वो भी बहुत अच्छा बनिया नाटक। उहदे च यही सी स्कोप के कंजकां करनियां हुंदियां और कंजकां नहीं मिलदियां, है ना,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि असी कंजकां नू तां पहले ही मार रहे हैं,
1: मार रहे हैं।
0: बड़ा अच्छा मैसेज सी उहदे च, वो असी कीता कंजक, वो प्ले सी, वो इन्ना अच्छा प्रोग्राम बनिया कि वो एंट्री भेजी गई और उन्हें भी फर्स्ट प्राइज आया। और मैं एक, क्योंकि मैं दोनों स्टेशन्स ते काम किया, जलंधर और पटियाला, दोनों स्टेशन्स नू एक एक प्राइज जीत के दिता।
1: एक सम्मान यह होंगे कि साढ़े को बहुत सारे पहला खत आते हैं, है ना, चिट्ठिया आदि ने, हूँ भी आते हैं, चिट्ठी मिली भी चलता है प्रोग्राम, तो खतान का सम्मान भी थोड़ा मिले, कहते खतर राय भी आया कि हाँ भी मैडम तुम आप प्रोग्राम बड़ा वधिया बनाया।
0: जो मेरी पटियाला ट्रांसफर हुई तो मैं जाते ही उत्थे अजे बैठी है मीटिंग च, तो मैं डायरेक्टर साहब कहें कि तुम लिसनर ना लैटरस के जवाब दो। मैं चली गई उठ के और लैटर्स दे जवाब दिते, अगले दिन इन्निया चिट्ठियां आई कि मैडम संतोष वापस आ गए, बहुत अच्छा लग्या। वो इन्ना अच्छा लगता तुहानू कि किस तरह तुसी उहनां दे फैमिली मैंबर बन गए हो, है ना,
1: बिल्कुल,
0: वो आवाज़ पहचानते हैं। और इत्थे भी जो असी प्रोग्राम करते सी ते इन्निया चिट्ठियां आउंदियां सी कि हाँ मैडम ने यह क्या है क्या, बड़ा अच्छा लगता है उस टाइम। और क्रिटिसिजम भी हुंदा कई वारी, तो उहनू असी एक्सैप्ट करते हैं, असी अपने आप नू इंप्रूव करते हैं उहदे हिसाब नाल, और जो तारीफ करते हैं उदों भी बहुत अच्छा लगता।
1: बिल्कुल मैम, तुसीं बहुत सारे तजर्बे दसे और प्रोग्रामां बारे जानकारी दित्ती, पर तुहाडे कारज काल दौरान केड़े केड़े स्टेशन एक्सपैंड होए?
0: आकाशवाणी जलंधर नू DTH दे नाल जोड़िया गया उस टाइम च, DTH नू ही अगे कसौली ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਗਈ।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम। लड़ीवार नाटक होया देश पराया।
1: हाँ जी रुलिया राम जी,
0: देखो संधू साहब, जिदा आप सारे जानते हैं भी खेतीबाड़ी दे विच वन सुबनता किते धंदे ये पूरा जिदा आप कहने कि विश्वीकरण दे विच चीज़ों की जरूरत है, क्योंकि अज साडी खेती का धुरा सिर्फ असी नहीं हाँ, पूरा विश्व है जो असी पैदा करना है वो पूरी विश्व के इस लिहाज न पैदा करना कि संसार के संसार के लोगों की लोड़ों की पूर्ति करनी।
1: हाँ कि भेज सकते हुई अपना समान।
0: हाँ क्योंकि जे असी अपने तक ही सीमित रहेंगे तो अपने मुनाफे जोड़े है कितने ना कि पिछे रह जाएंगे। बहुत सारे लोग है जोड़े व्यापारक फसल इदा दैदा करते हैं या व्यापारक काम कार करते हैं जिन्हों के व्यापारक समर्था ज्यादा है, चीज़ा बहरले देशों भी भेज सकते हम शायद है जिदा आप सारे जाने साडे देश दे विच शहद दी उन्नी खपत नहीं जिनी बाहर ने मुल्कां दे विच है।
1: हाँ शहद तो अलावा होर बहुत सारे है जी।
0: हाँ
1: सिरा शहद मेरा शहद ही नहीं।
0: हाँ बिल्कुल
1: बोलन है उदे विच पता नहीं की
0: रॉयल जैली है। हाँ, बड़ा कुछ है जहर
1: बड़ी महत्ता है जी।
0: हाँ महत्ता है। सो इसे करके जिदा कहने के इस शहद दे किते दा तां वैसे भी ज्यादा महत्व है क्योंकि शहद एक संपूर्ण खुराक है। बाहरले देशां ने इहनू समझिया होया अपने लोग हाली खां खांसी वेले लैंदे है पर पैदावारी किते ना किते साडे देश च भी बहुत ज्यादा वधी है। सो इसे करके अज विश्वीकरण दे विच शहद दा दिहाड़ा भी मनाया जांदा है मिट्टी क्रांति दे रूप दे विच।
1: मिट्टी क्रांति बड़ा योगदान जी अपना मक्खियां दिन मना रहे हैं जी।
0: हाँ बिल्कुल इन्हें वर्ल्ड बी डे भी कहते हैं।
1: मधुमक्खी दिवस।
0: मधुमक्खी दिवस ये तो आधारित अपने को एक रूपक है मिट्टी क्रांति ये आप।

0: खूबसूरत फुलां, फलां, फलदार दरख्तां, जड़ियां बूटियां, पशुआं पंछियां ते होर जीवां नाल कुदरत दा वडमुला खजाना भरिया होया। मनुखी सोच तर्क संगत ते विज्ञानिक होन सदका इस खजाने नूं अपनियां लोड़ां दे मुताबिक वरतण लई शुरू तो ही यतनशील रही है, जिस दे नतीजन सफलता भी हासिल कीती है। मनुखी इतिहास दे मुताबिक इस धरती ते मनुख ने जिहड़ी पहली मिठी चीज चखी ओ शायद शहद ही सी, जो कि जिस जीव राही तैयार किया जाता है उसनूं शहद की मक्खी क्या जान लगा। वेदां ग्रंथां दे मुताबिक अजे भी जन्म तो लैके आखरी संस्कार दियां रिवायतां विच शहद नूं पवित्र मन के वरत्या जाता है। बाइबल विच अंकित है कि इस धरती दे जिस हिस्से विच शहद ते दुध प्राप्त है उस हिस्से नूं स्वर्ग दा नाम दिता जा सकता है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने शहद दियां मक्खियां दी मनुखी जीवन विच महत्ता नूं मुख रखदियां इत्थों तक लिखिया है कि जिस दिन इस धरती ते मधुमक्खी खत्म हो जाएगी वो दिन इंसानी जिंदगी दा आखरी दिन होएगा। शहद दियां मक्खियां दा कुटुंब सदा ही मनुख नूं इकट्ठे रहण, मेहनत करन, नेमबद्ध तरीके नाल काम करन ते संकट समय अपने आप नूं कुटुंब दी सुरक्षा लई जान कुर्बान करन दा संदेश दिंदा है, जिस नूं कि सफल जीवन दा ढंग किया जा सकता है। शहद दियां मक्खियां ते इन्हां तों शहद प्राप्त करन दी प्रक्रिया मुड़ कदीम तो ही इंसानी सोच विच शामिल रही है।
1: यह बहुत ही वधिया सहायक धंधा, एक किसी नाल इहदा कोई टकराव नहीं आ बाकी कित्तियां दे नाल, खर्चा भी इस दे विच कोई ज्यादा नहीं आ ते जिहड़ी इहदी आमदन आ ओह बहुत जल्दी आउण लग जांदी आ ते बहुत खेती प्रणाली दे विच इहदा बहुत वड्डा योगदान आ। इह बहुत ही साफ सुथरा ते घट समां लैण वाला कित्ता आ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪਰ ਪਰਾਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

0: ई जोंगचुल से सोल में मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, उत्पादन और निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार तंत्र को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी काइंड एक्स पहल की क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा और उत्पादन भागीदारों तथा उद्योग जगत की सराहना की है। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के शिष्टमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि प्रस्तुति में एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदों के बारे में बताया गया। इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया और समिति के सामने अपनी प्रतिक्रियाएं रखीं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में लू की आशंका व्यक्त की है। अगले चार दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू चल सकती है। असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज बारिश हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों व बहनों को राम राम।
1: राम राम।
0: अरुणेश भाई कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और ये जो कार्यक्रम होता है इसमें हम कृषि से जुड़ी बहुत सारी बातें करते हैं और साथ में हम ये भी अपने साथियों को बताना चाहते हैं कि अपना स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल ही ठीक रखना चाहिए, उसके लिए आपको संतुलित आहार लेना चाहिए और क्योंकि कृषि जगत का कार्यक्रम है तो जो हमारे पशुधन हैं उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो रीढ़ होते हैं कृषि जगत की।
1: बिल्कुल प्रीति, ये आपने सही कहा और दरअसल आजकल बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, खास तौर पर उत्तर भारत के कई राज्यों में तो तापमान 45 डिग्री से ज़्यादा है और ये तापमान लगातार बढ़ने की संभावना है जैसा कि हमारे देश में जो मौसम विभाग है उन्होंने कहा है। इसलिए जैसे ही आपने इस बात का जिक्र किया कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तो आजकल गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के मौसम के अनुसार हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और ख़ासतौर पर ग्रामीण का कार्यक्रम है अपना, किसान भाई हमारे इस कार्यक्रम को बहुत ही चाव के साथ सुनते हैं तो एक सत्तू होता है, उस सत्तू को भी गांव में उसको घोल करके पिया जाता है, वो पेट को काफ़ी ठंडक पहुंचाता है। और स्वास्थ्य की अगर बात हुई है तो जाहिर सी बात है जो हमारा खान पान है यानी

0: ये जो दाल चावल रोटी सब्जी है उनमें से जो दाल होती है ना वो बेहद ही पौष्टिक होती है।
1: बिल्कुल, क्योंकि दालें केवल एक कृषि का उत्पाद नहीं है, बल्कि वे भारत की पोषण, सुरक्षा, मृदा स्वास्थ्य और ग्रामीण आजीविका का आधार हैं। दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक के रूप में भारत की नीतियां लगातार इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने पर केंद्रित रही हैं। बढ़ती आय और संतुलित पोषण के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण दाल की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे कि घरेलू उत्पादन बढ़ाने के अवसर पैदा हो रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी के साथ हम अपने किसान भाई बहनों को ये बताना चाहते हैं कि जो एक हमारी सरकार ने योजना चलाई है राष्ट्रीय दलहन मिशन की, और दाल जैसा कि आपने प्रीति बताया कि इसका केवल आर्थिक और व्यापारिक महत्व तो नहीं है, बल्कि ये हमारे पोषण, हमारे स्वास्थ्य, हमारे सेहत के लिए भी बेहद उपयोगी है। क्योंकि राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार भारतीय आहार में कुल प्रोटीन सेवन में हमारी दालों का योगदान लगभग 20 से 25% है, और इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने राष्ट्रीय दलहन मिशन चलाया है।
1: जी, तो ये तो थी जानकारी राष्ट्रीय दलहन मिशन की, और अब हम कृषि समाचार दर्शन के तहत बातचीत सुनवाते हैं, जिसका विषय है विश्व मधुमक्खी दिवस, गर्मियों में मधुमक्खियों का प्रवासन, ये विषय है। और इस पर जो जानकारी दे रहे हैं वो हैं डॉक्टर SM हल्धर, जो कि वैज्ञानिक हैं NCIPM नई दिल्ली में, और इनसे बातचीत कर रहे हैं शशि कपूर। आइए सुनते हैं ये बातचीत।
2: किसान बहन भाइयों, राम राम। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपसे कहते ही हैं कि भाई आप खेती के साथ साथ अन्य काम भी करिएगा, चाहे आप मछली पालन करें, मधुमक्खी पालन करें, या अपना कोई और स्वरोजगार करें, ताकि जब भी आपको खेती में घाटा हो तो उसकी भरपाई हो जाए और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत बनी रहे। तो आज के कार्यक्रम में हम खासकर बात करने वाले हैं मधुमक्खी पालन की। और जैसा कि आप जानते हैं, गर्मी का मौसम है, ऐसे मौसम में जो हमारे किसान बहन भाई हैं जो मधुमक्खी पालन करते हैं खेती के साथ साथ, जो करना भी चाहते हैं, अभी तक नहीं किया है, तो जो कर रहे हैं वो गर्मी के मौसम में मधुमक्खियों का प्रबंधन कैसे करें, खास करके इसके माइग्रेशन को कैसे रोकें, तो इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रवण M हल्धर जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, सभी किसान बहन भाइयों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार, राम राम जी।
2: डॉक्टर साहब, आज 20 मई है और आज के दिन मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है, कब शुरू हुआ, और हमारे जो किसान बहन भाई हैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण ये दिन है?
3: ये इसलिए मनाया जाता है कि ये 2017 के अंदर इसको विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाए। और ये कि आधुनिक एक वैज्ञानिक थे एंटोन जॉन, जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया मधुमक्खी पालन पे, इसलिए उनके जन्मदिन पे ये स्टार्ट किया गया और ये 20 तारीख को हम मनाते हैं। और ये 2017 में इसका स्टार्ट हुआ। और मधुमक्खी पालन इनका मतलब ये नहीं है कि आपको शहद ही मिलता है, इसके साथ साथ इससे 20 से 30% तक आपका जो अलग अलग टाइप के पौधे होते हैं उनका पोलिनेशन भी करता है, एज ए पोलिनेटर का काम करता है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट है इसके लिए। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे भारत के अंदर, तो हर घर के अंदर एक मधुमक्खी का डिब्बा होता है और सभी इंडियन भी, भारतीय भी को वो रेयर करते हैं।
2: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि विश्व मधुमक्खी दिवस क्यों मनाया जाता है, कितनी इसकी उपयोगिता है, और हमारे किसान बहन भाई हैं जो अब तक खेती कर रहे हैं और उन्होंने सुना भी होगा मधुमक्खी पालन के बारे में, लेकिन वो अब करना चाहते हैं, तो किस तरह से इसकी शुरुआत वो कर सकते हैं, कैसे करें, कहाँ से करें, और कौन कौन सी जो प्रजाति हैं उनके लिए बहुत उपयोगी रहेंगी?
3: भारत के अंदर अपन दो स्पेसीज इतने दिनों तक थी जिसको हम रियर कर सकते थे। एक है एपिस मेलिफेरा, जिसको इटालियन भी बोलते हैं, और अभी भारत के अंदर 80 से 85% जो शहद आ रहा है वो एपिस मेलिफेरा से आ रहा है। बट एक हमारे भारतीय बी भी है एपी सेरेना इंडिका, उसकी 3 सब स्पेसीज है, वो भी नॉर्थ ईस्ट में अगर जाओगे तो उधर एपी सेरेना हिमालयंस मिलेगी, साउथ में जाओगे तो एपी सेरेना इंडिका मिलेगी, और सेंट्रल इंडिया के अंदर एपी सेरेना सेरेना मिलेगी। और दोनों ही प्रकार की जो स्पेसीज है उसको किसान और मधुमक्खी पालक है उसको रियर कर सकते हैं। अब इसके अंदर अंतर क्या है, आपका जो एपिस मेलिफेरा है इटालियन बी जिसको बोलते हैं, इससे जो एक छत्ता या एक जो बॉक्स होता है उससे आप 30 से 35 किलो हनी एक साल में और शहद ले सकते हैं, बट इंडियन बीज जो है उससे 10 से 15 किलो आपको शहद मिलता है। बट उसकी जो

0: क्वालिटी होती है वो अलग होती है, उसकी जो एंटीऑक्सीडेंट और जो प्रोलिन कंटेंट, ये चीज़ें जो होती है वो अच्छी होती है, बट उसको हर जगह रियर नहीं कर सकते, उसमें स्वार्मिंग और माइग्रेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट इटालियन भी है जिसको इजीली किसान भाई ज़्यादातर जगह कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इससे उत्पादन ले सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कोई भी काम करने के लिए ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, और जैसा कि आपने बताया कि भाई पेटियों की भी इसमें आवश्यकता होती है, और जो मधुमक्खी उनकी जो अच्छी जो प्रजाति है उनकी आवश्यकता होती है। तो कितनी पेटियों के साथ कोई भी हमारे जो किसान भाई या युवा साथी हैं इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो शुरुआत कर सकते हैं, और ट्रेनिंग प्रशिक्षण शुरुआत करने से पहले वो कहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं?
0: अगर मधुमक्खी पालन आप करना चाहते हो तो उसकी ट्रेनिंग भारत के अंदर ज़्यादातर जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर एक एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान विभाग होता है, उनके अंदर ज़्यादातर सेंटर है। अगर दिल्ली के आसपास आप देखो तो हिसार हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एक बहुत अच्छा सेंटर है जो 5 दिन की ट्रेनिंग भी देता है, 10 दिन की ट्रेनिंग भी देता है। और उसके अलावा आप दूसरी जगह अगर साउथ में जाओगे तो कर्नाटका के अंदर भी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर भी डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी है, जहाँ पे एक क्रीप ऑन हनीबी एंड पोलिनेटर्स का एक सेंटर चलता है और उसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप पन्नगर जाओगे उत्तराखंड के अंदर, वहाँ पे भी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो तो मणिपुर के अंदर इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, पासीघाट में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, अलग अलग राज्य में जाते हो तो इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और मैं मधुमक्खी पालक को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम पहली बार अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो 100 डिब्बों के साथ आप स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपका डेली का रूटीन जो मनी होता है, इसको कैश मनी बोलते हैं, क्योंकि जो खेती करते हैं उसके अंदर कैश आपको 6 महीने और 1 साल में मिलता है, और इससे आप रोजाना इससे कमा सकते हो और बहुत ही अच्छा आपको इनकम इससे मिल सकती है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं पात्रता की, कि जो भी हमारे युवा साथी हैं या जो मधुमक्खी का पालन करते हैं करना चाहते हैं तो पात्रता मतलब किस बेस पर उनको ट्रेनिंग में आने का मौका दिया जाता है?
0: इसके अंदर ऐसे कोई पात्रता नहीं है, बट 10वीं और 12वीं होती है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है 5 से 7 दिन और 10 दिन का, उसके बाद में जो नेशनल बी बोर्ड है ऑनलाइन पोर्टल है उसके ऊपर जो आपको अनुदान दिया जाएगा उसी सर्टिफिकेट के बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार उसको स्टेट गवर्नमेंट को देती है, स्टेट गवर्नमेंट किसानों को अलग अलग एरिया में जो बी कीपर्स है उनको इसके लिए अनुदान दिया जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने अनुदान की बात की, तो हमारे जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं मधुमक्खी पालन का ट्रेनिंग लेकर के काम करना चाहते हैं तो सरकार की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनका कि ये मधुमक्खी पालक हैं उनका लाभ ले सकते हैं?
0: भारत सरकार ने 2018 के अंदर 500 करोड़ मधुमक्खी के लिए स्पेशल एक पैकेज दिया गया, जिससे कि भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो शहद पैदा किया जाए, उसी के बेसिस पे नेशनल बी बोर्ड है NBB जो है दिल्ली के अंदर है, वो अनुदान अलग अलग स्टेट को देती है, स्टेट अनुदान बी कीपर्स को देते हैं, और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेगा उसी के बेसिस पे आपको 100 बॉक्स के 50 बॉक्स के अलग अलग जो लेना चाहते हैं उसके ऊपर उनका कुछ परसेंट होता है वो अनुदान उनको दिया जाता है। तो इस प्रकार से उसकी कॉलोनी दी जाती है, क्योंकि आप स्टार्टिंग करते हो तो उसके लिए कॉलोनी एक इम्पोर्टेंट होती है और उसको साथ में लेना होता है, तो आपको बॉक्स के साथ आपकी कॉलोनी भी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, अब बात करते हैं जैसे कि शहद तो हमें मिलता ही मिलता है मधुमक्खियों से, इसके अलावा और कौन कौन से उत्पाद मिलते हैं?
0: जो आप एपिकल्चर करते हो, मधुमक्खी पालन करते हो, इसे एक शहद एक पार्ट नहीं है, इसके अलावा आपको वैक्स इससे मिलता है, इससे प्रोपोलिस मिलता है, और इसके अलावा जो स्टिंग्स से जो निकलता है वो भी आपको मिलता है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट इससे निकलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, इसके अंदर जब हनी को, जैसे हनी डेथ पीरियड हम बोलते हैं जिस टाइम पोलिनेशन नहीं होता है, तो उस टाइम उसके रियर के लिए पोलन्स भी हमारे को कलेक्ट करते हैं, तो जब हनी फ्लो पीरियड होता है उस टाइम बीज कलेक्शन बहुत ज़्यादा पोलन का लेके आती है, तो उसको भी आप इकट्ठा करके उससे भी आप मार्केट डेवलप कर सकते हो, और आप उसको मधुमक्खी को भी जब गर्मियों में जब जरूरत पड़ती है उस टाइम आप उनको खिला सकते हो।
1: बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब एक बात सुनने में आती है कि जो भी मधुमक्खियों की पेटियां होती हैं, और अक्सर देखते हैं कि जो कुछ किसान भाई हैं कि अपने खेतों के आसपास नहीं रखने देते, कहते हैं कि भाई हमारी जो फसलें हैं वो कमजोर हो जाएंगी, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है?
0: ये जो किसान भाई अगर कोई खरीदना चाहता है तो ये बहुत ही गलत है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका सरसों का खेत है और सर्दियों के अंदर आपने 20 पेटी 50 पेटी या 100 बॉक्स आपने रख लिए, तो आपका 20 से 30% आपका यील्ड उसका इंक्रीज हो जाता है। और मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी बी कीपर्स है वो फार्मर्स हैं, उसके लिए उनकी डिमांड होती है फार्मर्स की कि हमारे खेत में रखो, जिससे उसको मिनिमम पैसा भी दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उससे, क्योंकि ये पोलिनेशन सबसे ज्यादा जो क्रॉस पोलिनेटेड जितनी भी फसलें हैं उसके अंदर जो पोलिनेशन करती है वो एक बी ऐसा है जिससे सबसे ज्यादा होता है या एपिकल्चर से होता है।
1: तो बिल्कुल ये बात

0: हमारे किसान बहन भाइयों को समझने की है कि जो मधुमक्खियां होती हैं उनसे पॉलिनेशन होता है, पराकरण होता है, जो कि हमारी फसलों के लिए बहुत लाभकारी होता है, जिससे हमारा जो फसल उत्पादन है वो ज्यादा होता है। डॉक्टर साहब, जो भी हमारे मधुमक्खी पालक हैं, मधुमक्खियों को पालन करते चले आ रहे हैं और गर्मी का मौसम है, भीषण गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में वो किस तरह से प्रबंधन करें ताकि उनको अच्छा उत्पाद मिले, शायद अच्छा मिले, और साथ ही साथ इस गर्मी के मौसम में माइग्रेशन को कैसे रोकें?
1: मैं इसके अंदर दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि हनी बी है वो जो एपिकल्चर है वो दो प्रकार से करते हैं। एक भारतीय बी है जिसको आप एक जगह रह करके, जैसे नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहाँ पे एक घर के अंदर, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर 35 से ऊपर जाता नहीं है, तो वो एक जगह ही रह करके उसको पोलन सब्स्टिट्यूट और जो आर्टिफिशियल शहद होता है वो दे करके और शुगर दे करके उसको रियरिंग और एक जगह माइग्रेशन को उसको रोक लेते हैं। बट जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इस एरिया के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा होता है, 40 से ऊपर चला जाता है, जैसे ही 35 और 37, 38 से ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो आपकी जो इटालियन बी जो इस एरिया में 80% रेयर करते हैं वो उस पर सर्वाइव नहीं कर सकती। तो उसके लिए क्या करते हैं किसान भाई, जैसे ही अप्रैल होता है यहां से उसको माइग्रेट करके और उत्तराखंड और हाई अल्टीट्यूड जो एरिया है, जहां पे ठंडा एरिया है, जहां पे उसको पोलन मिल सके और आर्टिफिशियल डाइट भी दे सकते हैं, वहां पे रख सकते हैं। अब ये दूसरी बात आती है कि अगर आपको एक ही जगह रखना है और लिमिटेड एरिया में आपको डेवलप करना है, क्योंकि 40 से ऊपर जाएगा तो इसको बहुत मुश्किल होता है, बट अगर फिर भी आपको, जैसे आपको छाया मिल गई, आपको 10-20 बॉक्स घर के लिए, आपको दो बॉक्स आपको रियर करने हैं, उनको रखने के लिए आपको जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उसके अंदर जो बोरी का टाट जो होता है उसके ऊपर डाल दिया जाए, जैसे दोपहर के टाइम में, जिससे उसको रख सकते हैं। एक जो पेड़ होते हैं या आप ग्रीन नेट या छाया लगा करके उसके नीचे रखा जाए, जिससे कि उनको टेम्परेचर का इफेक्ट कम पड़े। दूसरी, आपको जो बी कीपिंग का जो बॉक्स होता है उसको वहीं पे रखना है जहां पे पानी की सुविधा हो। दूसरी यह है कि गर्मियां होती है उस टाइम आपके पास पोलन फील्ड के अंदर होते नहीं है, तो उस टाइम आपको जैसे शुगर है, आपका हनी है, इनको मिला करके 1:1 रेशियो और अलग अलग टाइप के पोलन सब्स्टिट्यूट आजकल मार्केट में भी आते हैं, प्राकरण को इकट्ठा कर लिया जाता है, जब डेथ पीरियड हम बोलते हैं, जब हनी नहीं निकलता है, जब पोलन होते नहीं है, तो उस टाइम उसको खिलाया जाता है, जिससे कि उसका माइग्रेशन बॉक्स छोड़ के दूसरे में नहीं जाए। तो इस टाइप के अपन कई चीजें होती है, और जैसे गर्मियां होती है इस टाइम माइट की भी थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, वेरो माइट है वो जो मेजर प्रॉब्लम करती है, जैसे गर्मी बढ़ती है तो उसकी प्रॉब्लम आती है, तो उसको भी आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट और टाइमली उसको देखना, और फॉर्मिक एसिड भी एक आता है उसको भी मिनिमम आप यूज करके और उसका कंट्रोल कर सकते हो।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, और चलते चलते हमारे जो मधुमक्खी पालक भाई उनसे क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि एक स्लोगन भी है कि अगर मैं दोबारा अगर कहीं रहूंगा या सर्वाइव करूंगा तो मैं एक मधुमक्खी जैसे, क्योंकि मधुमक्खी को हम सोशल इंसेक्ट बोलते हैं, जो कि सबको साथ लेके, अपनी कॉलोनी को पूरी को साथ लेके मेंटेन रह करके देती देती है, ज्यादा से ज्यादा उसका कितने प्रोडक्ट है, कितना पोलिनेशन, अगर वो नहीं होगा तो आपका जीवन भी मुश्किल हो जाएगा अगर आपका बीज और पोलिनेटर्स नहीं होंगे तो।
0: बिल्कुल डॉक्टर श्रवण एम हल्दर जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों के लिए, मधुमक्खी पालक भाइयों के लिए, और आपकी दी गई बातों का वो जरूर लाभ लेंगे। कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो अभी हमारे किसान भाइयों ने सुना विश्व मधुमक्खी दिवस, जो कि आज है 20 मई को, और इस दिवस के उपलक्ष्य में गर्मियों में मधुमक्खियों का प्रवासन कैसे होता है, और इसके बारे में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर एस एम हल्दर, जो कि वैज्ञानिक हैं NCIPM नई दिल्ली में, और इनसे बातचीत कर रहे थे शशि कपूर। तो अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं प्रीति
3: जी। बिल्कुल, और क्योंकि शाम का समय है और हमारे जो किसान भाई हैं वो अब सुनना चाहते हैं एक भजन, तो सुनवाते हैं सर्वेंद्र कुमार की आवाज़ में ये भजन।

0: तो अभी आपने सुना सर्वेंद्र कुमार की आवाज में ये भजन।
1: और अब आइए अपने किसान भाइयों का और मनोरंजन करते हैं, एक और भजन सुनवाते हैं सर्वेंद्र कुमार की ही आवाज में, और इसके बोल हैं पार लगाओ आके।

0: तो अभी आप सुन रहे थे सर्वेंद्र कुमार की आवाज़ में ये रागनी, और किस्सा था श्रवण कुमार से।
1: और इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो सभी सुनने वाले किसान भाई बहनों को राम राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। आइए अब सुनते हैं गजलों के कार्यक्रम को।

0: अभी आप सुन रहे थे गजलों का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंदु प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए टैलेंट हंट योजना हौसलों की उड़ान का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी पुरानी स्ट्रीट लाइट को हटाकर स्मार्ट एलईडी लाइट लगाने का निर्णय लिया। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा, दिल्ली में 255 लाख मीट्रिक टन से अधिक कचरे का निस्तारण किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक सहायक सतर्कता अधिकारी और एक मल्टीटास्किंग स्टाफ अधिकारी को गिरफ्तार किया। मौसम विभाग ने कल राष्ट्रीय राजधानी में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। और भारतीय तीरंदाजी संघ के महासचिव और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को विश्व तीरंदाजी महासंघ ने राष्ट्रमंडल खेल समिति का सदस्य नामित किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं के लिए टैलेंट हंट योजना हौसलों की उड़ान 2026-27 और इसके डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य युवाओं की छिपी प्रतिभाओं को पहचान देना, उन्हें निखारना और आगे बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
3: मीडिया को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि

0: योजना की शुरुआत दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों से की जा रही है, जिसमें 25,000 से अधिक युवा भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि गायन, नृत्य, रंगमंच, ललित कला, डिजिटल कला, वाद्य संगीत और संगीत संयोजन सहित 7 विधाओं में युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 16 से 35 वर्ष तक के युवा बिना किसी शुल्क के डिजिटल पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर अपनी वीडियो एंट्री भेज सकेंगे।
1: सरकार युवाओं के गली मोहल्लों तक पहुंचेगी और उन तक अपनी इस प्लान को लेके जाएगी, जिसका नाम हौसलों की उड़ान दिया गया है। एक भी रुपए का खर्च नहीं करना है, ना रजिस्ट्रेशन में, ना किसी और चीज में। सरकार अपना पोर्टल लॉन्च करेगी, उसके साथ अपने फोन नंबर देगी। उस पोर्टल पे दिल्ली के 16 साल से लेकर के 35 साल के युवा रजिस्टर करेंगे, अपनी वीडियोस वो शेयर करेंगे। एक ज्यूरीज का पैनल पूरा बैठेगा, वो उनको शॉर्टलिस्ट करेगा। शॉर्टलिस्ट होने पे पूरी दिल्ली में 35 जोन बनाए जाएंगे।
0: इस अवसर पर उपस्थित दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली क्रिएटिव कैपिटल और यूथ कैपिटल के रूप में उभर रही है। श्री मिश्रा ने कहा कि हौसलों की उड़ान युवाओं को अपनी कला और रचनात्मकता को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
2: दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश का पालन करते हुए दिल्ली सरकार में सभी मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी सप्ताह में 2 दिन घर से काम कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ईंधन संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मंत्रालय के सभी लोग कार पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए नागरिकों को प्रेरित कर रहे हैं।
3: वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया गया है हफ्ते में 2 दिन दिल्ली सरकार में, और उसी का सब लोग पालन कर रहे हैं। ज्यादातर मंत्री और अधिकारीगण वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और बाकी दिनों पे भी सार्वजनिक यातायात का उपयोग कर रहे हैं, या ईवी का उपयोग कर रहे हैं, या सिंगल कार में जा रहे हैं। जो लोग पहले बड़े बड़े सुरक्षा के काफिले के साथ भी चलना पड़ता था, तो एक ही गाड़ी में जा रहे हैं। मैं भी अब से घर से ही काम कर रहा हूं और ज्यादातर मीटिंग हमारी ऑनलाइन है। बहुत आवश्यकता पड़ रही है तो अधिकारीगणों को यहीं पर ही बुलाकर इलेक्ट्रिक कार से आए, कार पुलिंग करके आए और महत्वपूर्ण फाइलों को घर से ही निपटाया जाए, इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
2: श्री मिश्रा ने बताया कि मेट्रो मंडे अभियान में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।
4: मेट्रो मंडे में हमने देखा कि जनता की बढ़ चढ़कर भागीदारी थी, इसी कारण मेट्रो को अपने ट्रिप्स भी बढ़ानी पड़ी और डीटीसी को अपनी फीडर सर्विसेज भी बढ़ानी पड़ी, और सड़कों पर ट्रैफिक भी कम दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है धीरे धीरे ये लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनता जा रहा है।
2: दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा आज भारतीय उद्योग परिसंघ CII की दिल्ली राज्य परिषद 2026-27 कार्यकाल के लिए आयोजित दूसरी बैठक में शामिल हुए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: बैठक में मंत्री कपिल मिश्रा ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार 50% उद्योग भागीदारी के साथ दिल्ली पर्यटन बोर्ड गठित करने की दिशा में कार्य कर रही है। श्री मिश्रा ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत आधुनिक मंडियों के विकास, दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल के आयोजन तथा कौशल विकास केंद्र स्थापित करने में CII से सहयोग का आग्रह किया। श्री मिश्रा ने यह भी आश्वासन दिया कि दिल्ली में बड़े आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार हर संभव सहयोग देगी। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी पुरानी स्ट्रीट लाइट हटाकर स्मार्ट LED लाइट लगाने का निर्णय लिया है। लगभग 473 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर इसकी मंजूरी दी गई है। ये निर्णय व्यय वित्त समिति की बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में लिया गया। इन स्ट्रीट लाइट्स की कुल संख्या लगभग 96,000 है। नई स्मार्ट LED लाइट्स लगाने से दिल्ली में बेहतर रोशनी, ऊर्जा बचत और आधुनिक प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित होने की उम्मीद है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय राजधानी का लैंडफिल रेमिडिएशन मॉडल एक मिसाल बनकर उभरा है। विज्ञान भवन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: बैठक के दौरान शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे लैंडफिल रिमेडिएशन कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि ओखला, भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल स्थलों पर अब तक 255 लाख मीट्रिक टन से अधिक पुराने कचरे का बायो माइनिंग के माध्यम से निस्तारण किया जा चुका है। इससे लगभग 75 एकड़ भूमि दोबारा उपयोग योग्य बनी है। श्री सूद ने जानकारी दी कि वर्ष 2025-26 में कचरा प्रसंस्करण क्षमता बढ़कर लगभग 20,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार पुनः प्राप्त भूमि पर 5 नए एकीकृत ताजा अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित कर रही है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
2: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में सभी 12 जोन के अधिकारी और कचरा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियां शामिल हुई। महापौर ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। उन्होंने अतिरिक्त संसाधन तथा मशीनरी तैनात करने के निर्देश दिए। श्री वाही ने कहा कि दिल्ली नगर निगम ने हर वार्ड के लिए एक सफाई योजना बनाई है और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे अपने संसाधनों और मशीनरी को इस योजना के हिसाब से इस्तेमाल करें ताकि सफाई के स्तर पर सुधार देखा जा सके। महापौर प्रवेश वाही ने आज करोलबाग के राजेंद्र नगर क्षेत्र का निरीक्षण कर सिंधी पार्क में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समय सीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। महापौर ने पार्क में विकसित किए जा रहे वॉकिंग ट्रैक को आधुनिक, सुरक्षित और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने पर बल दिया। वहीं मंगल बाजार रोड क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए श्री वाही ने दिल्ली जल बोर्ड की खुदाई के बाद सड़क मरम्मत में देरी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए के एक सहायक सतर्कता अधिकारी और एक मल्टीटास्किंग स्टाफ कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अनुसार आरोपी सहायक सतर्कता अधिकारी पर एक पूर्व उपनिदेशक से सतर्कता मामले में अनुकूल जवाब भेजने के बदले 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप था। बाद में सौदा 3 लाख रुपए में तय हुआ। ब्यूरो ने बताया कि इस महीने की 18 तारीख को इस मामले में कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी एमटीएस कर्मचारी के माध्यम से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। एक रिपोर्ट।
7: इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राष्ट्र की साझा विरासत को पुनर्जीवित करना और उन आदर्शों के साथ एक नया जुड़ाव स्थापित करना है। ये प्रतियोगिता फिल्म निर्माताओं, रचनाकारों और नागरिकों को समकालीन प्रारूपों के माध्यम से वंदे मातरम की भावना को नए सिरे से प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है, जिसमें रील्स, AI आधारित फिल्में और लघु फिल्में शामिल है। विभिन्न श्रेणियों में 50 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। अनुपम की रिपोर्ट साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: भारत के सबसे बड़े वैश्विक वस्त्र मेला भारत टेक्स 2026 का आयोजन इस वर्ष 14 से 17 जुलाई तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने आज आगामी वस्त्र प्रदर्शनी के अनुरूप भारत टेक्स मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री राव ने कहा कि मोबाइल ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित खोज के जरिए प्रासंगिक उत्पादों, आपूर्तिकर्ताओं और स्टॉल के स्थानों को तलाशने में विक्रेताओं और प्रदर्शकों के लिए मददगार होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोला गया। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलोबॉक्स होगा। विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मधुमक्खियों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र का मूक योद्धा बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि मधुमक्खियां पौधों के परागण, जैव विविधता की सुरक्षा और खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि मधुमक्खियों के बिना पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर पड़ सकता है, कृषि उत्पादन प्रभावित हो सकता है और खाद्य सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक आवासों के लगातार नष्ट होने से मधुमक्खियों का अस्तित्व संकट में है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मधुमक्खियां पर्यावरण संरक्षण, कृषि उत्पादकता और जैव विविधता की

महत्वपूर्ण संरक्षक हैं। उन्होंने बताया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वर्ष 2017 में शुरू किए गए हनी मिशन के अंतर्गत वर्ष 2025-26 तक देश भर में 2,46,000 से अधिक मधुमक्खी बक्सों और मधुमक्खी कॉलोनियों का वितरण किया है। राष्ट्रीय राजधानी में 28 मई से 1 जून तक आयोजित होने वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट और भारत अफ्रीका मंच सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने आज पूर्ण अभ्यास आयोजित किया। इसके अंतर्गत आज दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई। यातायात पुलिस के अनुसार रिंग रोड और वंदे मातरम मार्ग दोनों दिशाओं में आवागमन सामान्य रूप से खुले रहे, वहीं SP मार्ग और मथुरा रोड प्रभावित रहे। भारतीय तीरंदाजी संघ के महासचिव और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को विश्व तीरंदाजी महासंघ द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स कमेटी का सदस्य नामित किया गया है। श्री सचदेवा वर्ष 2008 से पहले दिल्ली तीरंदाजी संघ और बाद में भारतीय तीरंदाजी संघ में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सक्रिय रूप से कार्य करते रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में अब गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने कल दिल्ली में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल का अधिकतम तापमान 45-47 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए टैलेंट हंट योजना हौसलों की उड़ान का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी पुरानी स्ट्रीट लाइट को हटाकर स्मार्ट LED लाइट लगाने का निर्णय लिया। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा, दिल्ली में 255 लाख मीट्रिक टन से अधिक कचरे का निस्तारण किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक सहायक सतर्कता अधिकारी और एक मल्टीटास्किंग स्टाफ कर्मचारी को गिरफ्तार किया। मौसम विभाग ने कल दिल्ली में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। और भारतीय तीरंदाजी संघ के महासचिव और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को राष्ट्रमंडल खेल समिति का सदस्य नामित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रसारण है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका।

अब रात का वक्त है तो चंदा तो आ ही जाएगा, अब चंदा आ जाए और चांद दिख रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि बहुत ही खूबसूरत से गीत हैं और आज आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त ज्योति शर्मा।

वैसे कवि की कल्पना भी कितनी अच्छी है ना, वो चांद को नीचे बुलाने की बात कर रहे हैं। वैसे आपको बताएं, नीचे बुलाना तो खैर ये कवि की जो कहते हैं ना कि मन में विचार चल रहे थे वो है, लेकिन हाँ वो जब ऊपर भी है तो उसके बारे में कितनी कहानियाँ कितनी कविताएं बन गई हैं। और हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमने भी खुद ऐसे कोशिश की हो कि जब हम रात में खामोश बैठे हों और चांद की तरफ देख रहे हों तो हम चांद में देखते हैं कि कुछ दाग है, कुछ बात है कि जो चांद की रोशनी चारों तरफ फैल रही है और हमें कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित करता है, और हम घंटों बैठकर उसे देख सकते हैं और उससे बातें सच में कर सकते हैं। फिलहाल बहुत सारी कविताएं हमने सुनी हैं और बहुत सारी कहानियां हमने सुनी हैं, तो चांद है, और चांद से तारीफ भी जुड़ी है। और जब हम किसी की तारीफ करते हैं, वाह चांद समखड़ा है ना, चलिए चांद जो है वो बादलों में भी छुपता है, दिखता भी है, पर चांद चांद है ना। और खूबसूरती की अगर बात करें तो भाई हम भी खूबसूरत हैं, आप भी खूबसूरत हैं, और खूबसूरत से गीत भी हमारे पास। तो चलिए अब अगला गीत भी हम सुन लेते हैं।

जब बादलों में चांद छिप जाता है ना, तो रोशनी जो है वो चांदनी जो है वो कम हो जाती है, या एक कहो कि गायब सी हो जाती है, लेकिन वो जो हल्का हल्का रोशनी के साथ छिपा हुआ चांद होता है ना, वो बहुत खूबसूरत लगता है ना। चलिए, चांद की बात हो रही है, तो चांद जो है ना वो, अब मैं ये कहूँ कि कई बार ऐसा होता है ना कि मन करता है कि जो चांद है ना उसको देखते रहें, उससे बात करें और बस घंटों बस उसे निहारते रहें, है ना। कभी ऐसा होता है ना, तो अगर आपका मन ऐसा कर रहा है तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो जो पल होता है ना वो सुकून का पल भी होता है, क्योंकि हम तब इधर उधर की परेशानियों में ना उलझ कर उसकी तरफ देख रहे होते हैं, उसे निहार रहे होते हैं, है ना। और वैसे कि शाम का वक्त जो होता है ना, वो होता ही इसलिए कि आप थोड़ा ठहर जाएं, जो दिन भर भाग दौड़ जो आप कर रहे हैं और इधर उधर की बातें जो आपको परेशान कर रही हैं, तो कुछ वक्त जो है वो आपको मिले कि ताकि आप आराम करें और अपने शरीर के साथ साथ अपने दिमाग को भी आराम दें। फिलहाल प्यारे प्यारे गीत हैं, तो गीतों के साथ इस कार्यक्रम को सुनते रहिए आप, तो आपको और मज़ा आता रहेगा।

रात वैसे और सुकून वाली हो जाती है अगर हम काम से थक कर आए और रात से पहले यानी कि थोड़ा शाम को जो लोग चाय पीना पसंद करते हैं उन्हें अच्छी सी चाय मिल जाए, और जो कुछ चाय के साथ खाना कुछ पसंद करते हैं या कुछ भी हल्का स्नैक्स लेना पसंद करते हैं उन्हें वो मिल जाए अपनी पसंद के, तो फिर शाम तो होती है और रात भी थोड़ा सुकून देने लगती है कि रात में बढ़िया सा खाना मिल जाए। ओहो, और हाँ कि जब घर में सब मिलकर बैठे हों तो कुछ अच्छी बातें भी करें, ये नहीं कि हाँ थकान थकान की बातें या फिर गुस्सा करें, नहीं कुछ ऐसी बातें करें कि एक दूसरे की थकान उतर सके और कुछ सुकून मिल सके, है ना। और साथ ही अच्छा संगीत हो तो फिर तो क्या ही बात है, और अगर रात की बात चल रही है और ये वाला गाना ना प्ले हो तो कैसे हो सकता है।

आए तुम आया मुझे याद गली में आज चांद निकला। वाह क्या बात है, तारीफ़ में ऐसे शब्द अगर मिल जाएं तो कितना अच्छा लगता है ना। वैसे किसी की तारीफ़ करना ना कोई गलत बात नहीं होती है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है, किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आपको तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सामने वाले का दिल भी खुश हो जाता है और आप जो आपके मन में विचार उमड़ रहे होते हैं ना कि हाँ ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो आप जब तारीफ़ कर देते हैं ना तो आपके दिल को और ज़्यादा खुशी मिलती है। और हाँ, लेकिन झूठी तारीफ़ है ना वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि झूठी तारीफ़ जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ना एक गलत विचार लाती है। लेकिन हाँ, सच्ची तारीफ़ ना करने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि आप खुश होते हैं और आप सामने वाले को छोटी सी खुशी दे पाते हैं ना तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है।

फूलों को पसीना आ गया। और फिलहाल अगर हम बात करें तो गर्मी इतनी है ना कि हमें पसीना आ जाता है, और ऐसे दिल चाहता है कि बस कहीं बाहर ना निकलें और घर पर ही रहें और घर पर भी पानी पीते रहें, है ना। पर गर्मी बहुत है, तो इस गर्मी में अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। अपने पानी पीने का जो एक क्रम है ना, उसे बनाए रखिए, पानी पीते रहिएगा। क्योंकि पानी अगर आप कम पिएंगे ना, तो फिर बहुत सारी दिक्कतें जो है वो आपके साथ शुरू हो जाएंगी। और वैसे भी अपना ख्याल जो है ना, वो खुद

रखना चाहिए। और हाँ, ये कोशिश करनी चाहिए कि जब हम सभी का ख्याल रख रहे होते हैं तो अपने बारे में हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, है ना। और वैसे ये भी होता है ना कि कई बार हम कुछ ज़्यादा ख्याल रख लेते हैं तो किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। हाँ, अपना ख्याल रखना चाहिए। और हाँ, साथ ही साथ ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जैसे मैंने पहले कहा था ना कि तारीफ़ करना जो है ना वो गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ, झूठी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। और ये बात सच और झूठ पर भी लागू होती है कि आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप सच बोलें और सामने वाले को भी ना सच स्वीकारने की एक कहते हैं ना हैबिट होनी चाहिए और आदत होनी चाहिए। क्योंकि सच जो है ना वो तो सच होता है और झूठ झूठ होता है, लेकिन हाँ, कभी कभी हमें किसी कारण थोड़ा छोटा मोटा झूठ जो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा जाता है ना, वो अगर हम बोलते हैं तो चल जाता है, लेकिन हाँ, सच तो सच होता है। और फिलहाल सच बताओ ना तो बहुत प्यारे प्यारे गीत हैं और हम आपसे बातें भी करते रहेंगे, लेकिन उन गीतों को भी आपको सुनवाते रहेंगे।

ख्वाब छोटा हो या बड़ा, भाई उसे पूरा करने के लिए पूरी की पूरी कोशिश हमें करनी चाहिए। और आपको बता दें कि ये जो आपने देखा भी होगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, आपके दोस्त बनते हैं, ख़ास दोस्त बनते हैं, और कुछ जो ये कहें कि उतने ख़ास नहीं बनते हैं जितने कुछ लोग ख़ास बनते हैं। लेकिन हाँ, उसमें आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि कौन आपके लिए आपको कुछ अच्छी राय दे रहा है, कौन आपके लिए आपको अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको अपने सपनों में, सपनों को पूरा करने में मदद कर रहा है। तो ये ख्याल आप रखते हैं ना, और लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए, उन लोगों की, तो खासकर जो आपको एक तरह से डीमोटिवेट करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, और जो कहते हैं ना कि ये तेरे से नहीं होगा, ये तुम नहीं कर पाओगे, तो उन लोगों से तो जितना दूर हो सके आपको दूर रहना चाहिए। और फिलहाल अगर वो आपके साथ बने रहते हैं और आपकी मजबूरी होती है, तो एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। और हाँ, आलोचक जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको हिम्मत भी देते हैं, वो आपको एक तरह से चैलेंज कर रहे होते हैं कि ये आपसे नहीं हो सकता और आप ये नहीं कर सकते, तो आपको ना वो एक चैलेंज की तरह उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि नहीं, ये काम बहुत अच्छा है और इस काम से मुझे सुकून मिलेगा या मेरी तरक्की होगी, तो मुझे उसके लिए ना पूरी की पूरी कोशिश करनी है और अपना जो ख्वाब है वो पूरा करना है, अपनी जो मंजिल है उसे पाना है। तो ये कोशिश आप करते रहिए और जीवन में हंसते मुस्कुराते रहिए। और एक हाँ जो मैं कहती हूँ हमेशा, कि छोटी सी कोशिश कीजिए कि आप अपने अपनों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ला सके, उन्हें भी छोटी सी खुशी दे सके। तो फिलहाल एक और गीत जो कर रहा है हमारा इंतज़ार, उसे भी सुन लेते हैं।

इसी खूबसूरत से गीत के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं संपन्न करेंगे, लेकिन आप कहीं जाइए नहीं, जुड़े रहिए हमारे साथ यानी आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसके ठीक बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी और उर्दू में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और IPL क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र

0: स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने

0: इसे नए तरीके को पहचानो, हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
1: हमने आज जेपीसी को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
0: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की सीबीआई हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के

0: अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-29 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center

0: बांसुरी से सितार पर बजाया राग दरबारी। सदाबहार फिल्म नगर में आप सुन सकते हैं रात 12:30 बजे आखिर एशिया प्रोग्राम के तहत। ये प्रोग्राम जारी रहेगा 12:50 तक। 12:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 1 बजे हमारी आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों को जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1371 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फिर डिश पर। पेश खिदमत है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार। आज के इस प्रोग्राम में समाज फरमाइए आशा भोसले की गाई गैर फिल्मी गजलें। आगाज कर रहे हैं गुलजार के इस कलाम के साथ।
1: हिंदुस्तान की दो मुमताज आवाजें लता मंगेशकर और आशा भोसले, एक ही कॉइन की दो साइड्स कहने के बजाय उन्हें एक रिकॉर्ड के दो रुख कहिए। गायकी के दो खूबसूरत मुमताज चेहरे। 80s में आशा जी ने दिल पड़ोसी है के नाम से एक एल्बम आर डी बर्मन की म्यूजिक डायरेक्शन में तैयार की थी। गजल पेश है

0: सिर्फ ब्लीडिंग हो रहा है लेकिन पायल गुदा के रास्ते बाहर नहीं निकल रहे, उनको हम ग्रेड वन पायल्स बोलते हैं। ग्रेड टू पायल्स होते हैं जबकि ब्लीडिंग के साथ साथ पायल गुदा के रास्ते के बाहर भी आ जाते हैं लेकिन ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही रिड्यूस हो जाते हैं। जब आप लैब पखाना कर रहे हैं तो उसके बाद वो अपने आप रिड्यूस हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड ग्रेड टू पायल्स। ग्रेड थ्री में और फर्दर डेवलपमेंट है कि पायल्स बाहर निकल के आते हैं लेकिन वो अपने आप नहीं जाते, पेशेंट को अपने हाथ से उनको रिड्यूस करना पड़ता है। और फर्दर ग्रेड फोर में वो बाहर ही निकले रहते हैं, फिर अंदर नहीं जा पाते,
1: उसके लिए ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है।
0: हाँ, ऑपरेशन ग्रेड थ्री और फोर के केसेस में नॉर्मली ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। देखिए, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि पायल्स का इलाज नहीं है। मेरे ख्याल से ज्यादातर प्रॉब्लम आती है कि पेशेंट्स एक क्वालिफाइड डॉक्टर को जाके दिखाते नहीं है। भारत जैसे देश में हर आदमी एक डॉक्टर बना हुआ है, तो जिस तरह की वो ओपिनियन देता है वो लोग फॉलो करते हैं और समझते हैं कि पायल्स इलाना इलाज। लेकिन अगर प्रॉपर डॉक्टर पर जाके दिखाएं और इलाज कराएं तो और सभी केसेस में इसका इलाज संभव है और अच्छे तरह संभव है।
1: तो जो एक पेशेंट होता है पायल्स का, इसको खेल कूद में हिस्सा लेना चाहिए या बचना चाहिए?
0: नहीं, 100% खेल कूद में हिस्सा लेना चाहिए। हम नहीं कहते कि उसको किसी भी चीज को अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीनी चाहिए और अपना ट्रीटमेंट एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कराना चाहिए। और जाते जाते मैं इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ब्लीडिंग जब भी किसी पेशेंट को हो, रेक्टम से ब्लीडिंग होता है, एक क्वालिफाइड डॉक्टर दिखाना बहुत जरूरी है। उससे पहले किसी और तरह का इलाज नहीं कराना चाहिए क्योंकि जैसे मैंने कहा, इट कैन बी सिम्टम ऑफ कैंसर, कैंसर भी हो सकता है। तो इलाज करा के, डायग्नोस करा के और प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं तो इसका इलाज पूरी तरह संभव है।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता साहब।
2: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत है अदबी नशिस्त।
3: आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है उर्दू गीतों की लिसानी अहमियत। जाहिर है कि ये मौजू इन मानों में बड़ी अहमियत रखता है कि इसका ताल्लुक हमारे उस तहजीबी विरसे से है कि जो हमारे लाशऊर का हिस्सा है। इस गुफ्तगू में जो हजरात शामिल हुए हैं उनमें प्रोफेसर शाफे खिदवाई साहब जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं आप हैं, और प्रोफेसर खलील बेग साहब जिनका ताल्लुक इस लिसानियात से है और आप भी अलीगढ़ से तशरीफ लाए हैं। आज की इस गुफ्तगू में आप दोनों हजरात का खैर मकदम है। जैसा कि डॉक्टर साहब जानते ही हैं कि लोक विरसे की हर तहजीबी कुरे में एक खास अहमियत है, और बिलखसूस वो हिंदुस्तान जो कि कई तहजीबों का और कई लिसानी वहदतों का मरकज़ है और कई जबानें और कई बोलियां जहां इस्तेमाल की जाती हैं, इसका लोक विरसा अपनी जगह बड़ी अहमियत का हामिल है। इसके बहुत से शेड्स हैं, इसके बहुत से डायमेंशंस हैं, नसर में और ख़ुद शायरी में। एक वो गीतों का असासा है जो कि तहरीरी शक्ल में मौजूद है और हम जिसे लोक गीत करार देते हैं। दूसरा वो है जो जबानी तौर पर मुंतकिल होता हुआ चला आ रहा है। चूंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा एक वसी व अरीज मुल्क है कि जहां कई बोलियां मुख्तलिफ खित्तों में, इलाकों में बोली जाती हैं, और इसी तरह उर्दू भी चूंकि एक हमागीर जबान है और जिसने मुख्तलिफ बोलियों से भी असरात कबूल किए हैं और मुख्तलिफ बोलियों पर भी अपने असरात कायम किए हैं। अगर आप अवधी या ब्रज के गीत या बुंदेलखंडी के गीत या फिर बिहार के दूसरे छोटे मोटे जो गढ़ हैं उन गीतों को देखें, या हरियाणा के गीतों को देखें, हत्ता के ग्वालियर के आसपास के जो इलाके हैं उनको, या मालवी गीतों को देखें, और दकनी तो खैर है ही, इन तमाम गीतों में ऐसे अल्फाज जो कि सूफिया इकराम ने इस्तेमाल किए थे उस जमाने में, उनके वो अल्फाज भी शामिल हैं। और बाज़ गीत तो वो हैं कि जिसमें उस अहद के बादशाहों के भी हवाले हैं, जहाँ जब मसलन दिल्ली में जो लोग गीत हैं, यहाँ निज़ामुद्दीन औलिया वगैरह का भी हवाला पाया जाता है, और दक्कन में वहाँ के जो बादशाह थे, वहाँ के जो नवाब थे, उनके भी हवाले हैं। तो इस एतबार से उर्दू के असरात इन तमाम लोकगीतों पर, मुख्तलिफ इलाके के लोकगीतों पर कायम रहे। आज जैसा कि हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं और हमारी खास बहस का मौजू यही लोग

0: उससे उठाए। तो इस लिहाज से ये कहना कि ये तो जरूरी है कि उर्दू ने, उर्दू अदब की जब तारीख लिखी गई तो इस तरह के जो लोकगीत थे या लोक शोरा थे उनको हम लोगों ने ज्यादा अहमियत नहीं दी। वो चूंकि उर्दू अदब पे शुरू से एक तरह का अशराफिया या आप कह सकते हैं अरबलाइजेशन का बोलबाला रहा, इस वजह से हमने उसको अहमियत नहीं दी। लेकिन जो जबान का जो खमीर उठा, जिस पे हम लोग यहाँ पे भी प्रोफेसर खलील बेग साहब और आप लोग बैठे हुए हैं, इस पे गुफ्तगू करेंगे कि ये जो लोकगीत थे, अगरचे इनको हमने अदब का हिस्सा नहीं बनाया, लेकिन इसके हवाले से जो जबान एक तरह की नमो पजीर हुई उसने जरूर उर्दू को सर्वतमंद बनाया। और देखिए जो उर्दू का जो जाहिर है उर्दू लश्करी जबान कही जाती है, जिसका मतलब ये था कि बरारास्त तरसील होनी चाहिए। तो बरारास्त तरसील का जो बुनियादी हवाला है, जिस तरह जज्बात का वाशगाफ इजहार लोकगीतों के जरिए होता है और जज्बात का इजहार होता है और इंसानी जज्बात जिस तरह से जाहिर होते हैं, उसका और कोई हवाला इससे ज्यादा बेहतर नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है जी कि और ये जाहिर है हम लोग सब जानते हैं कि लोक अदीब किसी भी माशरे की एक तरह के इज्तिमाई तख्लीकी एहसास का मजहर होते हैं। ये इंडिविजुअल या इंफरादी फीलिंग्स का जिक्र कम होता है बल्कि इज्तिमाई चीजों का जिक्र होता है। इस वजह से मुझे लगता है कि उर्दू का भी ताल्लुक, उर्दू में जो मुरवजा अगर आप कह सकते हैं लोकगीत है, तो उसका बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है जबान के सामने आने से, जबान के नमो पजीर होने में।
1: जी सही, बेशक डॉक्टर साहब, एक बार बार ये सवाल भी सामने आता रहा है कि हमारी जबान का, जैसे डॉक्टर ने फरमाया कि जो एक खास कल्चर है, जो अर्बनाइज्ड कल्चर है, तो क्या आप ये समझते हैं कि लिसानी सतह पर ये जो लोकगीत हमारे यहाँ मुस्तमल हैं और जो अभी भी ढोलक वगैरह पर गाए जाते हैं, खास रसूमात के वक्त सामने आते हैं, जब बिस्मिल्लाह खानी हो या घर भरावनी हो या शहाने हो या झूमर गीत हो, या तो मैं अर्ज कर रहा था कि क्या
0: सावन के गीत है,
1: सावन के गीत हैं, झूले के गीत, जो झूले गीत हैं, लोरियां हैं, ये बहुत से हैं। तो हम तो मुख्तलिफ औकात में ऐसे रसूमात के वक्त, मेरा ताल्लुक किसी ना किसी तरह दक्कन में औरंगाबाद से भी रहा है, तो वहाँ भी जो गीत गाए जाते हैं तो वो गीत उनसे मैंने ये महसूस किया है कि जबान की सतह पर, लिसानी सतह पर वही अदब जो दक्कनी अदब है, वजही वगैरह का या निशाती वगैरह की मसवियाँ हैं, उसमें और उन लोग गीतों में जो कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि लिसानी सतह पर आप इसकी अहमियत के बारे में जरा इजहार ख्याल फरमाएं।
2: जी,
1: इनकी इसकी लिसानी अहमियत क्या है?
2: डॉक्टर साहब, जैसा कि उर्दू के तारीख नवीस ये महसूस करते हैं और उन्होंने लिखा भी है कि उर्दू लश्कर की जबान रही है, उर्दू दरबार की जबान रही है, फिर उसके बाद जब उर्दू एक तरक्की याफ्ता जबान बन गई, उर्दू जब एक मियारी जबान बन गई, तो ये कहा गया कि उर्दू शहरी अशराफिया की जबान है और आवाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ कि उर्दू वो जबान है जिसका आवाम से बहुत गहरा रिश्ता है और उर्दू के अवामी रिश्ते बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। इसलिए कि जिन लोगों ने उर्दू जबान की तारीख का मतलब किया है वो ये बखूबी जानते हैं कि उर्दू की खमीर में कोई ना कोई बोली जरूर शामिल है और वो बोली खड़ी बोली है जो नवाए दिल्ली के इलाके की बोली थी और नवाए दिल्ली की दूसरी बोलियां जैसे हरियाणवी, ब्रज भाषा, इन तमाम बोलियों के असरात शुरू से ही उर्दू में नफूज करते रहे हैं। और जब उर्दू तरक्की याफ्ता जबान बन गई तब इसका मियारी अदब पैदा हुआ। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस जबान का इर्तका बोलियों से शुरू हुआ है और जिस जबान ने बोलियों से सर उठाया है, वो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उसका रिश्ता आवाम से ना हो? और बोलियां जो है वो इलाकाई सतह पर बोली जाती हैं, बोलियां जो है वो उनका इलाका एक मखसूस इलाका होता है और उन इलाके के जो भी रहने वाले हैं वो अपने जज्बात की अक्कासी, अपने ख्यालात का इजहार अपनी बोली की शक्ल में करते हैं। जो वो बोली मियारी न सही लेकिन वो उनके जज्बात की पूरी तरह से अक्कासी करती है। तो गीतों का जो रवाज हुआ या लोक अदब का जो रवाज हुआ वो शुरू में उन्हीं बोलियों की शक्ल में हुआ और वो तमाम रवायात, अदबी रवायात जो बोलियों की शक्ल में पैदा हुई वो सीना बसीना चली आ रही हैं। उर्दू के कई मरकज रहे हैं। उर्दू का मरकज पहले दिल्ली था, फिर उर्दू का मरकज अवध के इलाके में मुंतकिल हुआ, लखनऊ का उसका मरकज हुआ, फिर अजीमाबाद और मुर्शिदाबाद इसके मराकज हुए, फिर उर्दू का सबसे बड़ा मरकज दक्कन रहा है। उर्दू गुजरात होते हुए दक्कन पहुंची, वहां बीजापुर, हैदराबाद और जो दूसरे शहर हैं वो उर्दू का मरकज बने। तो वहां की अवामी सतह पर जो बोलियां राइज थीं उन्हीं बोलियों में उन गीतों का रवाज पैदा हुआ और उनसे हमें ये पता चलता है कि इब्तदाई जमाने में हमारी जबान की क्या शक्ल थी। उन बोलियों की बहुत अहमियत है और हम सिर्फ उन गीतों के, उन लोक गीतों के जरिए से हम उर्दू की इब्तदाई शक्ल का अंदाजा लगा सकते हैं।
0: लेकिन डॉक्टर साहब, कलाम होता है आपका, ये बताइए जो बात आप

0: रहे हैं, लेकिन ऐसा उर्दू के जो मौर्रख हैं उन्होंने जैसे रसखान है या इस तरह के जो
1: मलिक
0: जायसी हैं, इन सबको उर्दू अदब की तारीख में जगह नहीं दी गई, इनको हम ये क्यों नहीं है
2: जी, जी वो बुनियादी गलती है
0: जी जी,
2: इसलिए कि उर्दू चूंकि उसकी असास खड़ी बोली पे कायम है तो इसलिए इस पूरे शुमाली हिंद में जो सरमाया अदबी सरमाया खड़ी बोली की शक्ल में दस्तियाब हुआ है उसी को उर्दू कहा गया है। मैं इस नजरिए से इत्तेफाक नहीं करता हूँ, बल्कि शुमाली हिंद में जो उर्दू का इलाका है वो किसी मजहब या किसी खास फिरके से मुताल्लिक नहीं होता है, बल्कि जबान का ताल्लुक इलाके से होता है। तो जब खड़ी बोली को उर्दू की बुनियाद माना गया तो शुमाली हिंदुस्तान के दूसरे खित्तों में, जैसा कि शाफी कतवाई साहब ने बताया कि ब्रज भाषा में शायरी हो रही थी, अवधि में शायरी हो रही थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत उसी अवधि बोली में लिखी, तो कहने का मकसद यह है कि इन तमाम बोलियों के अदबी सरमाए को उर्दू में यकजा करना चाहिए था, लेकिन ये काम नहीं हुआ। अब जरूरत इस बात की है कि उन बोलियों में जो लोक अदब है, जो गीत लिखे गए हैं और गीत की जो मुख्तलिफ असनाफ हैं, उनमें जो अदबी सरमाया है उनको उर्दू में शामिल किया जाए और उनको उर्दू लोक अदब कहा जाए, उनको उर्दू लोक गीत कहा जाए, इसलिए कि उन बोलियों के तजिए से हमें ये पता चलता है कि उर्दू जबान की इब्तदाई शक्ल क्या थी। उर्दू का ये उर्दू का कदीम सरमाया है, इससे हमें दस्तबरदार नहीं होने चाहिए। मैं चंद मिसालें आपको दूंगा जिससे आपको अंदाजा होगा कि दक्कन में जो कदीम शक्ल थी उर्दू की, जैसे कि को के लिए कू और सो के से के लिए सू, ये तमाम चीजें आज भी वहाँ वहाँ के लोकगीतों में पाई जाती हैं। और दक्कन में एक खास सिंफ है दुखड़ा, दुखड़े और जारियां, अगर इनका आप लिसानी तजिया करें तो आपको अंदाजा होगा कि दक्कन की वही कदीम शक्ल, वही सौती शक्लें, वही लफ्जियात, वो सब सारी इन गीतों
1: में। बल्कि मैंने तो ये देखा है कि ड्रामे की शक्ल होती है, वो लोकगीत जो है ड्रामे की शक्ल में है कि आपस में, जैसे कि वो तो है ही कि समधी और समझने वगैरह आपस में जो बहस करते हैं, तो ये बहस श्रीमान में भी है लेकिन जुदूब में बिलखसूस आज भी जो लोकगीत हैं उनमें बाकायदा एक ग्रुप होता है, मंजूर मकाल में होते हैं। अब एक बात और सवाल दरअसल ये बार बार आपकी गुफ्तगू से भी ये पैदा होता है कि हमने जो सब ये तस्लीम कर लिया कि उर्दू एक ऑर्गेनाइज जबान होकर रह गई है, लेकिन और ये दरअसल एक भ्रम है कि बड़ी अहम और फलसफियाना किस्म की ये बातें एक ऐसी जबान में नहीं आ सकती कि जो कि बोलियों से ताल्लुक है, जिसका जो कि हम जिसको कहें कि जिसके हमारी खास मिट्टी से है, पैरों तले की भरभरी मिट्टी से जिसका ताल्लुक है, तो दाते की जो तरबियत खुदाबंदी है सब वहां की, देखिए इटली की लोक जबान में है,
0: तुलसीदास है, सूरदास
1: है, गोल्डन बो है, सूरदास हैं या कबीर हैं, इन लोगों की जो शायरी है वो अपनी उनकी जो अजमतें हैं वो अजमतें उनकी तमाम आज भी ये समझा जाता है कि तमाम कायनात का तमाम फिक्र का निचोड़ उसमें पेश कर दिया गया है इन किताबों में और कबीर के यहाँ भी। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि सब ये जो कल्चर है, हम ये उर्दू मराकिस में जो शायरी हुई थी और उसके पहलू ब पहलू ये लोक अदब भी लिखा जा रहा था, तो शाफी साहब मैं आपसे ये एक तरसील का के पहलू पर भी गुफ्तगू हुई, तो ये अवामी जबान किस हद तक और किस तौर पर हमारे यहाँ काम तो करती रही लेकिन एक मुनकता किस तरह से ये सिलसिला हो गया
0: जी जी,
1: एक इनकदा की सूरत कैसे पैदा हो गई
0: जी जी
1: जी
0: जी जी जी। अभी जैसा आपने फरमाया, जरूर ये उर्दू का खमीर, लिसानी खमीर है, जैसे प्रोफेसर खलील बेग साहब ने बताया, जरूर खड़ी बोलियों से उठा था और उससे उर्दू को फायदा भी हुआ, लेकिन उर्दू के जो मौर्रख थे शुरू से आब हयात से और बल्कि उससे पहले से भी लोगों ने जो तारीख लिखी उसमें इन लोगों को शामिल नहीं किया, लेकिन जबान जो है वो किसी मौर्रख की या माहिर लिसानियात की रही ने मिन्नत नहीं होती बल्कि अपने तौर पर वो सफर करती है। तो लोकगीतों में जो जिस तरह की जबान का इस्तेमाल हुआ था, अगर नासिक के जेर असर जबान जो इस्लाह की गई उसके बाद से वो तमाम चीजें उसमें जबान की मेयार बंदी की गई, वो तमाम चीजें निकाली गई, लेकिन आप उसकी शायरी को आप खुसरो का कलाम देखें या उसके बाद आप नज़ीर अकबर आबादी का कलाम देखें, नज़ीर अकबर आबादी को अभी आप गुफ्तगू भी कर रहे थे, तो इन तमाम लोगों के अगर आप कलाम देखें तो आपको जो लोकगीतों की जो रवायत है, एक सकाफती विरसा जो जिसको आपने भी पहले कहा था, उसका इजहार जरूर होता है। और ये सिलसिला मुनक़ता होने की मेरे ख्याल में सूरत इसी वजह से हुई कि ये जो हमारी बहुत सी असनाफ جو مقبول صنف تھی غزل یا قصیدہ, اس کی جو ہمارے خیال میں بالادستی حاصل ہوئی تو گیت کو ہم نے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی, اور ایک طرح کی نیٹیوٹی جس کو مقامیت آواز ماں باد جدید تنقید کا بنیادی حوالہ ہے, تو اس سے ہم نے اپنے ادب کو ایک طرح سے کاٹا, ثقافتی تشخص کی جگہ ہم نے کچھ دوسرے معیار اپنے سامنے رکھے, جس کی وجہ سے ہمارے خیال میں یہ سلسلہ

0: कि पाकिस्तान में बलूची गीत और पश्तो गीत ये वहाँ मुख्तदरा ने भी काम किया है और वहाँ जो शोबा तहजीब है उसने भी काम किया है। तो डॉक्टर साहब आज की ये बहस बड़ी मुफीद मतलब थी और आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अतीकुल्लाह कहते हैं, आप हजरात ने जो जहमत की इसके लिए हम आपके बहुत ममनून हैं।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सामिन भी आप सुन रहे थे अदबी नशिस्त। आज का मौजू था लोक गीतों की लसानी अहमियत। शुरका थे प्रोफेसर अतीकुल्ला ताबिश, जनाब मिर्जा खलील बेग और प्रोफेसर शाफिकी दुबाई। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब।

मन्ना डे और साथियों को आप सुन रहे थे, फिल्म थी सीमा, मौसीकार थे शंकर जयकिशन। सुनने के ख्वाहिशमंद थे पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन और टीलू नायक, केथल हरियाणा से मधु नायक, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत और किसुतासु, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी और राकेश कुमार, सहरसा बिहार से राधे कुमार, सविता राधे और बुल्की वाली फलना झा, सलाही सोकनहा नेपाल से अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा और राहुल कुमार शर्मा, बाबाकुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान और उत्कर्ष चौहान, अनारकली बाजार जगनाव से कमल पाठक और सुनील पाठक और दीपिका मल्होत्रा, भटापारा छत्तीसगढ़ से हरमिंदर चावला, सोहन जोशी और शिव कुमार शर्मा, उज भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी और आशी गोस्वामी, शराफ रोड राजकोट से नूर मोहम्मद लखानी, विहान लखानी और जुबैदा लखानी, लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू, कलकत्ता से सुब्रत राय चौधरी, मंजू कटीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा, कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, राजू मिगलानी और बब्बू डब्बू, बुल्लाडा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमित कुमार दामोदर, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रही मुन्ना, आसेगांव बाजार से करण रंजीत पुनकर, ग्राम व पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शारुनूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी और मोइन अंसारी, हुडा कॉलोनी केथल से विनोद चोपड़ा और पंकज गुप्ता, मेहनगर उमरखेड़ से अभिजीत गवानकर, सरिता गवानकर और अर्जुन गवानकर, करनाल से बलविंदर सिंह सोडी। और सामने लीजिए, अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में रोशन की मौसीकी सजा साहिर का लिखाएगी, जिसे फिल्म है ताजमहल। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन, और जनाब सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा, हिमुडा शोगी शिमला से सुनील खेड़ा, नितिन और दिव्यांशु, आष्टी जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नमार और तनवीर मसरत, और जनाब गंडुंडवाड़ा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी और मोहम्मद अयान अंसारी, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर और जयपाल यादव, लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, और ये हैं जनाब यावतवाल से अनिल, उषा बरांडे, अनुश्री, धनश्री बरांडे, काशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से भारती प्रकाश अम्बाडे, वैष्णवी हर्षल अम्बाडे और जानवी अम्बाडे, गन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली और मुजफ्फर अली, पटेल नगर मालोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया। आप सबकी पसंद आपकी नज़र है।

0: और आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आइंदा 2 से 3 दिनों में शदीद गर्मी की लहर की सूरत हाल का रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत हैं तामिल इरशाद प्रोग्राम की कुछ और नगमें।

मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ों में आप सुन रहे थे कोहिनूर फिल्म का नगमा। नगमा निगार थे शकील बदायूनी, मौसीकार नौशाद। सुना चाहती थी छिपा कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री और मोहम्मद अयूब खत्री। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा और राहुल कुमार वर्मा। गिरडीह झारखंड से हिना साबरी, आयजल इमाम और मोहम्मद हसन इमाम। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से स्वीटी छाबड़ा, रविंदर सिंह छाबड़ा और इंद्रजीत छाबड़ा। साईनगर आरबी इमारत से नरेंद्र मिर्गे, प्रियादर्शनी मिर्गे और डॉक्टर प्रियंका काल पांडे। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परियार। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सुपन ताइडे, वसंतराय भोजनी और निर्वृत्ति आडोकार। गाडगे नगर यावतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मणराव लोखंडे,

कल्पनाताई लोखंडे और शिलेश लोखंडे, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन और आशीष राजा, बांदा उत्तर प्रदेश से फहीम मंसूरी और फातिमा मंसूरी, रघुनाथपुरा जिला गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता और हिना, बरावकी नगर श्रीरामपुर से मनोज जेठवा, हर्षा जेठवा और बेबी अवीरा, और यही जनाब कहाँ से, अच्छा मुक्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत और निशु, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी और मीनाक्षी गोस्वामी, सहारनपुर से सैयद मसरूर, गांव कुमारजेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन और नाजिया आफिया, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज कोलवार और भानु प्रकाश, फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा और विशाल खेड़ा, और आसूपुरा जिला मऊ से मदरअली अंसारी, रैदिया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी, टिम्बर मार्केट कीर्तिनगर नई दिल्ली से सुशांत प्रिय झा, निवेश कुमार और लड्डू कुमारी, फरुखाबाद मोहल्ला साहिबगंज चौराहा उत्तर प्रदेश से श्रीमती सरोज चौरसिया, सुरेश चौरसिया और बाबू शिवा चौरसिया, और ये जनाब दामनगांव महाराज से भगवत देठे पाटिल, लक्ष्मी देठे पाटिल और कुमारी सानिका देठे पाटिल। अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में फागुन फिल्म का नगमा, नगमा निगार कमर जलालाबादी, मौसीकार ओपी नैयर। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, बलाटशाह से प्राची, सूरज लोंडे और एकलव्य लोंडे, लुमड़ी नगर अकोला महाराज से समायक बंसोड़, शरण बंसोड़ और मीरा बंसोड़, और जनाब ये हैं खान मंजिल गंजुंडवार से आगा खान आगा, बेगम निदा खान और बेबी अमल खान, शेरवानी स्कूल गंडूनवारा से आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी और अनवर मास्टर, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी चुग और गोविंद चुग, चिरमिरी कुरासिया कालदी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह और ऋषभ सिंह, और ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, अहमदपुर खेगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली और वैदिका फूलमाली, ग्राम पहाड़ा दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण मंचोर, चंद्रकिरण मंचोर और छाया मंचोर, वरुण जोलका से महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे और मिलिंद सरकटे, शेरवानी स्कूल वालों आपने कितने 61 डाल रखे मेल के, हदे भाई कितनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है आप लोगों से कि एक एक ही मेल डालें, दो डाल दें एक साथ, आपके 7 मेल स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। अमीर खुसरो गंडुनवार से डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार और भुवन प्रकाश गौतम, जिला हिंगोली महाराज से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे, फिर देखिए आपका दिखाई दे गया, एक तो आप और एक ही फूल वाले जो हैं करजत से, इन लोगों ने बहुत सारे मेल एक साथ डाल दिए हैं। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव और समर्थ नामदेव, और रघुवीर नगर दिल्ली से जफर मौजम शेख, फलक तबस्सुम शेख और बेबी अलसिबा शेख, आप सबकी पसंद आपकी नज़र है प्रोग्राम की अगली पेशकश।

0: मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना।
1: आज की तमिल इरशाद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश गीता दत्त की आवाज में साहेब बीबी और गुलाम का ये नगमा, जिसे मौसीकी सजाया हेमंत कुमार ने, सुनना चाहते हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी और शाहनवाज सरफराज अब्बासी, गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद और राहत अली, आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा और निवान शर्मा, जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल और दीपक जायसवाल, नागपुर महाराष्ट्र से कमल सानी, मिसिस पिंकी सानी और डॉक्टर अफजल मलिक, नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई और शेख चांद फारूक, रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा नायाब, और खांजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, नजीब खान और अशरफ खान, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इस्सा, खतीजा बेगम और मोहम्मद अशफाक, और ये जनाब ये कहां से हैं, गांव उंगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर और आरती रानी, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, मीनाक्षी तिवारी और सुनीता शर्मा जी, गांव कल्याण मलका जिला भटिंडा से अमृतपाल सिंह रामगढ़िया, परमिंदर और सचनूर और

0: آپ سن رہے تھے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد، یہ آکاشوانی کی اردو سروس سے پیش خدمت پروگرام سرخیوں میں۔
1: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी और आज हमारी चर्चा का फोकस है प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा, भारत इटली के द्विपक्षीय संबंधों को नया विस्तार। इस विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा। अम्बेसडर वाधवा, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: अम्बेसडर वाधवा, प्रधानमंत्री मोदी का इटली दौरा उनके 5 देशों के दौरे का आखिरी पड़ाव है। आप इटली में हमारे पूर्व राजदूत रह चुके हैं, तो आपने न केवल भारत इटली के संबंधों की प्रगति देखी है बल्कि इसे आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज इस यात्रा में अपने मीडिया ब्रीफिंग दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश अब अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं, तो सबसे पहले चलिए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
3: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की।
1: अम्बेसडर वाधवा, प्रधानमंत्री का ये जो इटली दौरा है, ये दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत कैसे बनाएगा, और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि दोनों देशों ने अपने संबंधों को अपग्रेड करके एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया है, तो इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं और कितना महत्वपूर्ण है ये बदलाव?
2: देखिए, भारत और इटली के जो संबंध हैं पिछले कुछ सालों में हमने देखा है इसमें लगातार प्रगति हुई है। और 2015 के पहले भारत और इटली के संबंधों में एक नीचाई देखी गई थी, जो क्योंकि मरीन्स का इशू हमारे सामने आया था और उसके साथ साथ भारत और इटली के संबंध काफ़ी नीचे चले गए थे। इटली की जो इन्वेस्टमेंट थी भारत में वो यूरोपियन देशों की तरफ से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा थी एक समय पर। उसके बाद इटली दूसरे नंबर पर था, लेकिन जो मरीन्स इशू था उसके चलते इन संबंधों में एक गिरावट आई। 2014-15 के बाद हमने देखा जब भारत और इटली ने इस इशू को ब्लैक बर्नर पर रखा और दोनों ने डिसाइड ये किया कि इसकी मध्यस्थता की जाए, तो जो स्पेशल कोर्ट है उसके तहत इस केस को ले गए दोनों देश आपसी सहमति के साथ में। और उसके बाद से हमने देखा है कि जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और दूसरे सेक्टर्स हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। तो इस बार जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इटली गए हैं ये उनकी पहली बायलैटरल विजिट है, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री मोदी कई बार इटली जा चुके हैं लेकिन किसी और संदर्भ में गए थे। और इस बार इंडिया इटली की जो स्ट्रेटेजिक

0: पार्टनरशिप पार्टनरशिप थी, उसको उन्होंने स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का रूप दिया है। इस बार जो द्विपक्षीय बातचीत हुई है उसमें जो व्यापार है और इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके साथ साथ रक्षा और क्लीन
1: जी
0: एनर्जी
1: बिल्कुल
0: टेक्नोलॉजी,
1: बिल्कुल
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, एजुकेशन और काउंटर टेररिज्म के ऊपर, फाइनेंसिंग के ऊपर, कोऑपरेशन के ऊपर भी बात हुई है। तो
1: जी
0: बहुत सारे मुद्दे इस विजिट में उठे हैं।
1: अम्बेसडर वाधवा, आपने भी कहा कि इस दौरे के दौरान बहुत चीज़ों पे दोनों देशों के बीच में बात हुई, और आपने जैसा कहा कि आर्थिक उसमें जो एक सहयोग है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो नई दिल्ली और रोम के बीच 2025 में 16.77 बिलियन डॉलर्स तक का व्यापार हुआ था, और प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच में 2029 तक ट्रेड जो है, व्यापार है, उसको 23.2 बिलियन डॉलर्स यानी कि लगभग 20 बिलियन यूरो से ज्यादा पहुंचाने का एक लक्ष्य तय किया गया है। तो पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 to 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही हैं।
1: अम्बेसडर वाधवा, भी आपने सुना जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश बहुत मजबूती से अपने लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो भारत और जो इटली है, दोनों देश अपनी अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, भारत की अपनी स्ट्रेंथ है, हमारे पास एक बहुत ही बहुत बेहद गुणकारी लोग हैं, बहुत स्पेशल हमारा टैलेंट पूल है, हमारी एक बहुत बड़ी डोमेस्टिक मार्केट है, और वहीं जो इटली है उसके पास अपनी वो एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस है। तो दोनों देश अपनी अपनी जो उनकी विशेषता है उनको कैसे अपने दोनों के व्यापार को और दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: देखिए, भारत और इटली की जो इकोनॉमीज हैं काफ़ी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज हैं दोनों के बीच में, और जब जॉइंट एक्शन स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान निर्धारित किया गया था 2025-2029 का, तो उसमें ये तय हुआ था कि ये जो रोड मैप है बायलैटरल कोऑपरेशन का, उसमें व्यापार और इन्वेस्टमेंट एक अहम उसका स्तंभ रहेंगे। और उसके चलते दोनों देशों ने काफ़ी कोशिश करी है कि जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें जो प्रायोरिटी एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। तो इटली की तरफ से जो इनोवेशन है और फैशन है और लग्जरी है जिनके लिए इटालियन कंपनीज जानी जाती हैं, एक बहुत ही वाइब्रेंट एसएमई सेक्टर है जिसके चलते इंडस्ट्रियलाइजेशन में इटली यूरोप में पहले नंबर पर एक समय पर पहुंच गया था। तो मशीनरी के तौर पर देखें तो इटली दुनिया भर को अपनी मशीनरी सप्लाई करता है। तो इसके चलते जो जो क्षेत्र आइडेंटिफाई किए गए हैं उसमें हमने देखा है कि भारत के साथ इटली की काफ़ी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज हैं। इसी के चलते जो 800 और जो जो कंपनियां इटली की भारत में अब आजकल सक्रिय हैं उसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे खाद्य पदार्थ हुए, जिसमें कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक बहुत ही अहम सेक्टर है। भारत में हमने देखा है कि ट्रांसपोर्टेशन और रेफ्रिजरेशन और फूड सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी चर्चा काफ़ी सालों से हो रही है, किस तरह से जो फूड प्रोडक्शन है उसको बचाया जा सके और जो वेस्टेज है उसको कम किया जा सके, तो उसमें इटालियन कंपनीज काफ़ी सक्रिय हैं। क्लीन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के जो क्षेत्र हैं उसमें इटालियन कंपनीज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो भारत ने देखा है कि जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं उसकी जो डिमांड है इटली में वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो 5-6 ऐसे सेक्टर्स भारत के हैं जो कि लेबर इंटेंसिव हैं, लेदर आप देख लें, और उसके साथ साथ टेक्सटाइल्स वगैरह, तो ये सभी सेक्टर्स इटली में इनकी काफ़ी डिमांड बढ़ी है। तो ये जाहिर है कि जो टारगेट इन्होंने सेट किया है 20 बिलियन यूरो का एनुअल ट्रेड बाय

0: 2029,
1: जी
0: मुझे लगता है उससे पहले ही ये पार हो जाएगा।
1: जी अभी आपने भी कहा और अब प्रधानमंत्री ने भी आज अपनी मीडिया ब्रीफिंग में ये जो इटली की हम बात कर रहे थे कि उसकी जो एक विशेषता है उसकी की डिजाइनिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में जो गुणवत्ता में उसकी उसके लिए जाना जाता है, प्रधानमंत्री ने अपने मीडिया कॉन्फ्रेंस में इस पर भी एक टिप्पणी की थी, चलिए सुनते हैं।
2: इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसिशन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है। इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे।
1: अम्बेसडर वाधवा भी जैसे प्रधानमंत्री कह रहे थे कि दोनों देशों की उन्होंने जो हमारी विशेषताएं हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ्स उनकी बात की, फिर उन्होंने कहा डिजाइन एंड मेक इन इटली एंड इंडिया एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सरकार पिछले इतने दो दश पिछले 11 साल से जो भारत में सरकार है, पूरा फोकस जो रहा है मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड की रहा है, और अब इसमें हम दूसरे देशों के साथ भी जो साझेदारी कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: तो हमने जैसे देखा है कि जैसे कि आपने कहा, भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर काफी जोर दिया जा रहा
1: जी
0: है और उसके चलते काफी सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, जैसे कि पीएलआई स्कीम है, जिसका मकसद यही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है भारत में उसको 15% से लेकर जीडीपी की 15% से लेकर 24% 25% तक ले जाया जा सके। उसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स के लिए भी काफी जोर दिया जा रहा है, लेकिन वो तभी संभव होगा जबकि भारत में जो एक्सपोर्ट रिलेटेड वस्तुएं हैं
1: जी
0: उनका उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो, और इसके लिए एक इनपुट चाहिए, जो फॉरेन पार्टनर्स हैं उनके साथ काम करना जरूरी हो जाता है। तो इटली का जो डिजाइन और जो प्रिसिशन प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, जिसका उसके चलते भारत में ये जो स्केल है उसको आगे कर कर और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिल सकता है। इसी तरह जो इटली के जो फिनटेक और फैशन की जो एरियाज
1: जी
0: हैं, भारत में जो मोबिलिटी, प्रधानमंत्री मोदी ने बात करी,
1: जी
0: इटली और इंडिया के बीच में मोबिलिटी एग्रीमेंट भी साइन हुई है,
1: जी
0: और इसके चलते जो एक्सपोर्ट्स हैं और जो टैलेंट है भारत का वो इटली में यूटिलाइज किया जा सकता है। तो यही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अपने स्पीच में आज उसका जिक्र किया।
1: प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के दौरान एक और फोकस एरिया था जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि आईमैक। इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने कल रोम पहुंचने के बाद इसके बारे में ट्वीट भी किया था। पिछले कुछ सालों में जब दुनिया ने किसी न किसी वजह से सप्लाई चेन में रुकावट देखी है, तो आईमैक में को बढ़ावा देना और इसमें सहयोग कितना जरूरी है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि इटली के लिए भी, जो कि कुछ साल पहले तक चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा था लेकिन उसके बाद बाहर हो गया था।
0: हाँ बिल्कुल, आपने जैसे सही कहा, क्योंकि भारत और इटली आईएमएफ के प्राथमिक पोल्स हैं। भारत एक तरफ है और इटली दूसरे एंड पर है। बीच में दूसरे जितने भी पार्टनर्स हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, यूएई है और ग्रीस है, इस तरह के कंट्रीज, और इसराइल को मिला लें उसमें, ये सभी कंट्रीज आईएमएफ के प्रमुख पात्र हैं। आईएमएफ का क्या मतलब है? आईएमएफ का मतलब यह है कि जो सप्लाई चेन्स इस एरिया में डेवलप हो सकती हैं
1: जी
0: इस कनेक्टिविटी के थ्रू, उसके साथ साथ जो गैस की पाइपलाइंस हैं और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैं, वो सभी इसी कॉरिडोर के थ्रू डेवलप हो सकती हैं, और रेल रोड्स का जो एम्फेसिस है आईएमएक का, उससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और जो पोर्ट्स हैं
1: जी
0: दोनों एंड्स पर भारत में और इटली में, उनके चलते जो व्यापार है उसको भी बढ़ोतरी मिलेगी।
1: जी
0: तो ये सभी 5 या 6 सेक्टर्स हैं जो आईएमएक के थ्रू डेवलप हो सकते हैं, और इटली और भारत दोनों आईएमएक के डेवलपमेंट में इक्वल साझेदार हैं। उनको उनकी बहुत चाहत है कि आईएमएक सक्सीड करे, ताकि ये इन सभी क्षेत्रों में भारत आगे बढ़े। और आपने जैसे कहा कि
1: जी
0: इटली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव।

0: से बाहर हो गया था, उसने यही देखा है कि BRI जो जो है वो ओपेक है और उससे कई सारे प्रॉब्लम्स उपस्थित हुए हैं दूसरे देशों में, और इटली नहीं चाहेगा कि उसकी उसको रेप्लिकेट किया जाए
1: जी
0: इस कॉरिडोर में।
1: अम्बेसडर अनिल वाधवा, आपने हमारे साथ इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ शामिल हुए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने आपने वक्तव्य और अपने विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, सुर्खियों के आज के अंक को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: समय आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। कव्वालियों के आज के प्रोग्राम में समाप्त फरमाइए राजा बाबू कव्वाल और साथियों की गाय।

0: यार और डीडी फ्रिडिश पर। शब के 12 बजे हैं, अब आलमी खबर नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप तनवीर से आलमी खबरें सुनिए। पहले खबरों की सुर्खियां। भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करके खसूसी जाम शराकत दारी में बदलने से इत्तेफाक किया है। फरीकैन ने हसास मादनियात, दिफा और ज़राअत समेत कलीदी शोबों में बाहमी ताउन को फ़रोग देने की गरज से 15 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को FAO के आला तरीन बावकार एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया है। वज़ीर आज़म ने इस अवार्ड को भारत के किसानों को मंसूब किया है। अक़वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी एशिया जंग के बावजूद इस साल भी भारत 6.4% की पेशरफ्त के साथ दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत बना रहेगा। और भारत और UAE ने साल 2032 तक बाहमी तजारत का 200 अरब अमेरिकी डॉलर का हदफ मुकर्रर किया है। अब खबरें तफसील से। भारत और इटली ने मुख्तलिफ शोबों में 15 मुआहदे को हतमी शक्ल दी। इन मुआहदों पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इटली की उनकी हम मनसब जॉर्जिया मेलोनी के दरमियान वफ्द की सतह की बातचीत के बाद रोम में दस्तखत किए गए। ये मुआहदे दो तरफा ताल्लुकात के खसूसी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में बदलने की निशानदेही करते हैं। दोनों फरीकों ने अहम मादनियात, दिफा, ज़राअत, आयुर्वेद, साइंस व टेक्नोलॉजी, बहरी ट्रांसपोर्ट और बंदरगाहों जैसे अहम शोबों में कद्दारी को वसत देने की खातिर कई मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं। भारत और इटली टैक्स, जराम, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मावनत के खिलाफ तालमेल मजबूत करने पर भी रजामंद हो गए हैं। बातचीत के बाद सहाफती बयान में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि फरीकैन ने दोतरफा ताल्लुकात को तकवियत देने के लिए काफ़ी गौर खौज किया है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत इटली मुश्तरका स्ट्रेटेजिक कार्रवाई जाति मंसूबा 2025-29 दोतरफा ताल्लुकात के लिए अमली और मुस्तकबिल पर मबनी फ्रेमवर्क फराहम करेगा। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों फरीक भारत इटली अख्तराई मरकज के क़याम की जानिब काम कर रहे हैं और भारत इटली दिफाई सनती रोड मैप ने दिफाई शोबे में मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका तरक्की के नए इम्कानात रोशन किए हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि भारत और इटली बहरी ताकतों के दौर पर जहाज़रानी, बंदरगाहों की जदीदकारी, लॉजिस्टिक और नीलगू मईशत के शोबों में ताउन को वसत देंगे। जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इटली यूक्रेन, मगरबी एशिया और आलमी कशीदगी के दीगर मामले पर लगातार रबते में रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आगे का रास्ता मुजाकरात और सिफारतकारी ही है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दी को इंसानियत के लिए संगीन खतरे के तौर पर देखने के मामले में भारत और इटली मुत्तहिद हैं और दहशतगर्दी नेटवर्क्स की माली मुआवनत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कल इटली के रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के सदर दफ्तर में बावकार एग्रीकोला एजाज से नवाजा गया। एजाज हासिल करने पर वज़ीर आज़म ने इस इनाम को भारत के लाखों किसानों, मवेशी पालने वालों, माहीगीर किसानों, ज़री साइंसदानों और कारकुनों को मंसूब किया। ये इनाम FAO के डायरेक्टर जनरल क्यू डोंगयू की जानिब से पेश किया गया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये एजाज खुराक की यकीनी फराहमी, पायदावार तरक्की और इंसानी फलाह बहबूद के तई भारत के गैर मुतजलजल अज़्म की अक्कासी करता है। उन्होंने जोर दिया कि खुराक की यकीनी फराहमी महज पॉलिसी का मामला नहीं है बल्कि इंसानियत के तई जिम्मेदारी भी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत पायदार मौसम के मुताबिक लचकदार और मुस्तकबिल के लिए तैयार ज़रई इको निज़ाम तश्कील दे रहा है, जबकि मुल्क भर में साइंसी ज़राअत को मिशन मोड पर फ़रोग दिया जा रहा है। उन्होंने वाज़े किया कि टेक्नोलॉजी भारतीय ज़राअत की बड़ी ताकत बन रही है और ज़राअत का मुस्तकबिल सिर्फ ज़्यादा पैदावार में नहीं बल्कि बेहतर पैदावार में है। एग्रीकोला एजाज FAO के डायरेक्टर जनरल की जानिब से दिया गया आला तरीन एजाज है। ये एजाज दुनिया में खुराक की यकीनी फराहमी, पायदार ज़राअत, गरीबी कम करने के और गजाइयत की बेहतरी के ज़िम्न में गैर मामूली और तवील मुद्दती ताउन करने वाले सरकर्दा आलमी रहनुमाओं और अफराद को दिया जाता है। وزیر دفاع

0: प्रणब सिंह ने जनूबी कोरिया के अपने हम मनसब आन ग्यू बैक के साथ सियूल में मीटिंग की। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासत को खुराक के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए पेशगी तौर पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले सालों में एल नीनो के असर के बाद फसलें मुतासिर हो सकती हैं। एक जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने मंडी टैक्स और मंडी फीस निज़ाम में इस्लाहात के लिए जोर दिया। मगरबी बंगाल में वजीर आला सुवेंदु अधिकारी ने तरमीम शुदा शहरीत के कानून या CAA के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों को मुल्क से बाहर निकालने की कार्रवाइयों को फौरी तौर से शुरू करने का ऐलान किया। सरहद पर तार बाड़ लगाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जमीन सौंपने की एक तकरीब के दौरान नाबन्ना के मकाम पर खिताब करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि अब दरअंदाजों को बराह रास्त BSF के हवाले किया जाएगा। यहां से उन्हें मुल्क बदर करने की गरज से BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इस नई कार्रवाई को पता लगाना, हजफ करना और मुल्क बदर करना करार दिया। वजीर आला ने कहा कि मरकजी वजारत दाखला ने पिछले साल 14 मई को रहनुमा खतूत जारी किए हैं, जिनमें रियासतों को हिदायत दी गई है कि वो दरअंदाजों की शिनाख्त करें और उन्हें BSF के हवाले करें। 8 अहम सनतों के मुश्तरका इशारिये में सालाना बुनियाद पर इस साल अप्रैल में 1.7% का इजाफा दर्ज किया गया, जो मार्च के 1.2% से ज़्यादा है। कॉमर्स और सनतों की वजारत की जानिब से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक पिछले महीने सीमेंट की पैदावार में 9.4%, स्टील में 6.2% और बिजली पैदा करने में 4.1% का सालाना इजाफा हुआ है। मगरबी एशिया के तनाज़े की वजह से गैर यकीनी की आलमी सूरत हाल के बावजूद अक़वामे मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा साल के लिए भारत की शरह तरक्की का अंदाज़ा 6.4% लगाया है, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी मईशत बना रहेगा। अक़वामे मुत्तहिदा के सीनियर माहिर मईशियात इंगो पीटरले ने आलमी माशी सूरत हाल और इम्कानात से मुतालिक वस्त साला रिपोर्ट से मुतालिक कुल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत की मजबूत घरेलू मांग अवामी सरमायाकारी और बरामदाती खिदमात में इजाफे की बदौलत मईशत को मदद मिलती रहेगी। अक़वामे मुत्तहिदा के इक्तसादी जायज़ा और पॉलिसी डिवीज़न के डायरेक्टर शांतनु मुखर्जी ने मुतनव्वे मईशत ढांचा जाती इस्लाहात और बेहतर टैक्स महसूल को भारत की अहम ताकत करार दिया। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारत जामे इक्तसादी शराकतदारी के मुआहदे की मदद के साथ 100 अरब अमेरिकी डॉलर से तजावुज़ कर गई है। नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान भारत में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर अब्दुल नसर अल शाली ने कहा कि दोनों ममालिक ने साल 2032 तक बाहमी तजारत का 200 अरब अमेरिकी डॉलर का हदफ मुकर्रर किया है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों में गर्म लहर से शदीद गर्म लहर जारी रहने के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तवक्को है कि इसी तरह की सूरत हाल कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी जारी रहेगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करके खसूसी जाम शराकतदारी में बदलने से इत्तेफाक किया है। फरीकैन ने हसास मादनियात, दिफा और ज़राअत समेत कलीदी शोबों में बाहमी ताउन को फ़रोग देने की गरज से 15 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को FAO के आला तरीन बावकार एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया है। अक़वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी एशिया जंग के बावजूद इस साल भी भारत 6.4% की पेशरफ्त के साथ दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत बना रहेगा, और भारत और UAE ने साल 2032 तक बाहमी तजारत का 200 अरब अमेरिकी डॉलर का हदफ मुकर्रर किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। क्लासिकी मौसीकी के प्रोग्राम में सामीना सुनिए पंडित दीबू चौधरी से सितार पर बजाया राग दरबारी।

शकील बदायूनी का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे जोराबाई अम्बाले वाली की आवाज़ में, जिसे मौसीकी सजायता नौशाद ने, फिल्म थी मेला। और अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश आखिर शब प्रोग्राम में, शमशाद बेगम की आवाज़ में दर्द फिल्म पर नगमा, नगमा निकार शकील बदायूनी, मौसीकार नौशाद।

0: किया है। फरीकैन ने हसास मादनियात, दिफा और ज़राअत समेत कलीदी शोबों में बाहमी ताउन को फ़रोग देने की गरज से 15 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को FAO के आला तरीन बावकार एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अवार्ड को भारत के किसानों को मंसूब किया है। अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी एशिया जंग के बावजूद इस साल भी भारत 6.4% की पेशरफ्त के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत बना रहेगा। और भारत और UAE ने साल 2032 तक बाहमी तजारत का 200 अरब अमेरिकी डॉलर का हदफ मुकर्रर किया है। अब खबरें तफसील से। भारत और इटली ने मुख्तलिफ शोबों में 15 मुआहदों को हतमी शक्ल दी। इन मुआहदों पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इटली की उनकी हम मनसब जॉर्जिया मेलोनी के दरमियान वफद की सतह की बातचीत के बाद कल रोम में दस्तखत किए गए। ये मुआहदे दो तरफा ताल्लुकात के खुसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलने की निशानदेही करते हैं। दोनों फरीकों ने अहम मादनियात, दिफा, ज़राअत, आयुर्वेद, साइंस व टेक्नोलॉजी, बहरी ट्रांसपोर्ट और बंदरगाहों जैसे अहम शोबों में इश्तराक को वसत देने की खातिर कई मुफाहमत नामों पर भी दस्तखत किए। भारत और इटली टैक्स जरायम, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ तालमेल मजबूत करने पर भी रजामंद हो गए हैं। बातचीत के बाद सहाफती बयान में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि फरीकैन ने दोतरफा ताल्लुकात को तकवियत देने के लिए काफ़ी गौरवखौज किया है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत इटली मुश्तरका स्ट्रेटेजिक कार्रवाई जाति मंसूबा 2025-29 दो तरफा ताल्लुकात के लिए अमली और मुस्तकबिल पर मबनी फ्रेमवर्क फराहम करेगा। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों फरीक भारत इटली इख्तराई मरकज के कयाम की जानिब काम कर रहे हैं और भारत इटली दिफाई सनती रोड मैप ने दिफाई शोबे में मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका तरक्की के नए इम्कान रोशन किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि भारत और इटली बहरी ताकतों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों की जदीदकारी, लॉजिस्टिक और नीलगू मईशत के शोबों में ताउन को वसत देंगे। जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इटली यूक्रेन, मगरबी एशिया और आलमी कशीदगी के दिगर मामलों पर लगातार रबते में रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आगे का रास्ता मुजाकरात और सिफारतकारी ही है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दी को इंसानियत के लिए संगीन खतरे के तौर पर देखने के मामले में भारत और इटली मुत्तहिद हैं और दहशतगर्दी नेटवर्क्स की माली मुआवनत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कल इटली के रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के सदर दफ्तर में बावकार एग्रीकोला एजाज़ से नवाजा गया। एजाज़ हासिल करने पर वज़ीर-ए-आज़म ने इस इनाम को भारत के लाखों किसानों, मवेशी पालने वाले माहीगीर किसानों, ज़री साइंसदानों और कारकुनों को मंसूब किया। ये इनाम FAO के डायरेक्टर जनरल क्यू डोंगयू की जानिब से पेश किया गया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये एजाज़ खुराक की यकीनी फराहमी, पायदार तरक्की और इंसानी फलाह बहबूद के तई भारत के गैर मुतजलजल अज़्म की अक्कासी करता है। उन्होंने जोर दिया कि खुराक की यकीनी फराहमी महज पॉलिसी का मामला नहीं है बल्कि इंसानियत के तई जिम्मेदारी भी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत पायदार मौसम के मुताबिक लचकदार और मुस्तकबिल के लिए तैयार ज़रई इको निज़ाम तश्कील दे रहा है, जबकि मुल्क भर में साइंसी ज़राअत को मिशन मोड पर फ़रोग दिया जा रहा है। उन्होंने वाज़े किया कि टेक्नोलॉजी भारत ज़राअत की बड़ी ताकत बन रही है और ज़राअत का मुस्तकबिल सिर्फ ज़्यादा पैदावार में नहीं बल्कि बेहतर पैदावार में है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल सियोल में जनूबी कोरिया के दिफाई हुसूलियाबी के प्रोग्राम के इंतज़ामिया के वज़ीर ली योंग चूल से मुलाकात की। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि मीटिंग के दौरान फरीकैन ने मुश्तरका फरोग, मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका बरामदात के लिए बार आवर कोशिशों को तेज़ करने से इत्तेफाक किया। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों के इख्तराई इको निज़ाम में ताउन करने के काइंड एक्स पहल के इम्कानात को तलाश करने के लिए लाहे अमल वजा करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। इससे कबल जनाब सिंह ने जनूबी कोरिया के अपने हमनसब आन ग्यू बैक के साथ सियोल में मीटिंग की। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्य सिंह ने कल कहा है कि रियासत को खुराक के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए पेशगी तौर पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले सालों में एलनीनो के असर के बायस फसलें मुतासिर हो सकती हैं। एक जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने मंडी टैक्स और मंडी फीस निज़ाम में इस्लाहात के लिए जोर दिया। मगरबी बंगाल में वजीर आला सुवेंदु अधिकारी ने तरमीम शुदा शहरीत के कानून या CAA के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों को मुल्क से बाहर निकालने की कार्रवाइयों को फौरी तौर से शुरू करने का ऐलान किया। सरहद पर तार बाड़ लगाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जमीन सौंपने की एक तकरीब के दौरान नाबन्ना के मुकाम पर भार खिताब करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि अब दरअंदाजों को बराह रास्त BSF के हवाले किया जाएगा, यहां से उन्हें मुल्क बदर करने की गरज से BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। 8 अहम सनतों के मुश्तरका आशारिये के सालाना बुनियाद पर इस साल अप्रैल में 1.7% का इजाफा दर्ज किया गया, जो मार्च के 1.2% से ज्यादा है। कॉमर्स और सनतों की वजारत की जानिब से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक पिछले महीने सीमेंट की पैदावार में 9.4%, स्टील में 6.2% और बिजली पैदा करने में 4.1% का सालाना इजाफा हुआ। मगरबी एशिया के तनाज़े की वजह से गैर यकीनी की आलमी सूरत हाल के बावजूद अक़वामे मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा साल के लिए भारत की शरह तरक्की का अंदाज़ा 6.4% लगाया है, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी मईशत बना रहेगा। अक़वामे मुत्तहिदा के सीनियर माहिरे माशियात इंगो पिटरले ने आलमी माशी सूरत हाल और इम्कानात से मुतालिक वस्त साला रिपोर्ट से मुतालिक कुल सहाफ़ियों से गुफ्तगु करते हुए कहा कि भारत की मजबूत घरेलू मांग, अवामी सरमायाकारी और बरामदाती खिदमात में इजाफे की बदौलत मईशत को मदद मिलती रहेगी। अक़वामे मुत्तहिदा के इक्तसादी जायजा और पॉलिसी डिवीज़न के डायरेक्टर शांतनु मुखर्जी ने मुतनव्वो मईशत, ढांचा जाती इस्लाहात और बेहतर टैक्स महसूल को भारत की अहम ताकत करार दिया। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारत जामे इक्तिसादी शराकत दारी के मुआहदे की मदद के साथ 100 अरब अमेरिकी डॉलर से तजावुज़ कर गई। नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान भारत में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर अब्दुल नसर अल शाली ने कहा कि दोनों ममालिक ने साल 2032 तक बाहमी तिजारत का 200 अरब अमेरिकी डॉलर का हदफ मुकर्रर किया है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों में गर्म लहर से शदीद गर्म लहर जारी रहने के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तवक्को है कि इसी तरह की सूरत हाल कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी जारी रहेगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करके खसूसी जामे शराकत दारी में बदलने से इत्तेफाक किया है। फरीकैन ने हसास मादनियात, दिफा और ज़राअत समेत कलीदी शोबों में बाहमी ताउन को फ़रोग देने की गरज से 15 समझौतों पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को FAO के आला तरीन बावकार एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया है। अक़वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी एशिया जंग के बावजूद इस साल भी भारत 6.4% की पेशरफ्त के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत बना रहेगा, और भारत और UAE ने साल 2032 तक बाहमी तजारत का 200 अरब अमेरिकी डॉलर का हदफ मुकर्रर किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1000 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन IR और DD फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शब का एक बजे चाहता है, यहां हमारी आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होती हैं। सुबह 9:30 पर अपनी पहली मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, शब खैर, जय हिंद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और

0: दरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े कर्मियों के योगदान की पहचान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आयोग के संचालन के लिए 5 सदस्यीय पैनल को मंजूरी दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए उचित कानूनी ढांचे का अध्ययन, मूल्यांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। अमरीकी सेना ने कहा कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्य तेल टैंकर पर चढ़कर उसकी जांच की। इस जहाज पर अमरीकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का संदेह था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि एमटी सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई और उसका मार्ग बदल दिया गया। ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरानी जहाज पर नाकेबंदी शुरू किए जाने के बाद ये लगभग 5वां पोत है जिस पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 147 रन बनाए। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. India and Italy have finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation

आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। लीजिए अब प्रस्तुत है गीत। गीत सुहाने कार्यक्रम। और लीजिए कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

भोसले की आवाज़ में ये गीत आपने सुना फिल्म साहब बीबी और गुलाम से। और लीजिए अब आपके लिए लेकर आए हैं मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे की आवाज़ में फिल्म सच्चाई का ये गीत।

0: बच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए।
1: ऐ दोस्त, ऐ दोस्त,
0: ऐ दोस्त मेरे, मैंने

पढ़कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हाथ दिया। ए दोस्त, ए दोस्त, ए दोस्त।

0: पराई आग में जलकर इसका मजा कुछ और ही है।
1: ऐ दोस्त ऐ दोस्त
0: ऐ दोस्त मेरे, मैंने दुनिया देखी है, अच्छी

0: इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम गीत सुनहरे यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 2 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, मछली पालकों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य के योगदान की पहचान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आयोग के संचालन के लिए 5 सदस्यीय पैनल को मंजूरी दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए उचित कानूनी ढांचे का अध्ययन और मूल्यांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। अमेरिका की सेना ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर पर चढ़कर उसकी जांच की। इस जहाज पर अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का संदेह था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि MT सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई और उसका मार्ग बदल दिया गया। ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरानी जहाज पर नाकेबंदी शुरू किए जाने के बाद ये लगभग 5वां पोत है जिस पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 147 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 19वें ओवर में जीत हासिल कर ली। मनीष पांडे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. India and Italy have finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between PM Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome yesterday. The outcomes marked the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, PM Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan to

0: ये क्या शेखर, वो दोनों तो ऐसे ही चले गए, उन्हें जलाने का मौका ही नहीं मिला।
1: आज के लिए इतना काफी है संजना, आगे आगे देखो होता है क्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास केंद्र पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला लिया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा

आपकी और हमारी दोस्ती तो बरकरार है, और गजलों के थ्रू, गीतों के जरिए हम आपके साथ हैं। अगली गजल पेश है जगजीत सिंह व चित्रा सिंह की आवाज़ों में।

बारिशें भले ही आज भी होती हैं और आने वाले समय में होती रहेंगी, लेकिन वो कश्ती हम फिर नहीं बना पाएंगे, वो बचपन हम फिर नहीं ला पाएंगे। आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में ये खूबसूरत व बेहतरीन गज़ल। अब चलिए अगली आवाज़ की ओर रुख करते हैं और सुनते हैं हरिहरन को।

0: इसी आवाज के साथ गीत व गजल का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। सुबह के 4 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में हिंदी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया है। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने

0: कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज पुनः मतदान होगा। दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने मंगलवार को घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार तिबांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रज्जाक मोल्ला को मैदान में उतारा है, जबकि CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। अमरीका और ईरान के बीच तनाव के बीच अमरीकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर को रोककर उसका मार्ग बदल दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार MT सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई। इस पर ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का संदेह था। अमरीका ने इस साल अप्रैल में ईरानी जहाज़ों पर नाकाबंदी लागू की थी। इसके बाद से अब तक 91 वाणिज्यिक जहाज़ों का मार्ग बदला जा चुका है, जबकि 4 जहाज़ों को रोका गया है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 147 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 19वें ओवर में जीत हासिल कर ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के AR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। सुबह के 4:05 हुए हैं।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। यह आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब समय है कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म का। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे सीरगाजी एस गोविंदराजन का गायन, राग ललित में, वायलिन पर संगत की है थिरुपक्कर कदल एस वीरा रागरावन ने।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर आज बृहस्पतिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 मई 2026। सुबह के 4:58 हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

तगना हथी तगना जेहवा तगना खी वे तगाया पे वते वड़ता गए अवरा कते ले पहाड़ करी भी आहो कट कागल दसे राहो सुन वेखो लोका एहो विडान मन अंदा नाओ सुजान।

राहो पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंदान सो क्यों मंदया की है जित जम है राजान पंडो ही पांडू।